दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

काल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा विसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए।

0: स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: ये है कैसा जादू मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

एक राजकुमारी जिसने अपना महल छोड़ दिया और पूरे देश की सेहत का सपना देख लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूं। अगर आप एक राजकुमारी होते, आपके पास महल होता, नौकर चाकर होते, शोहरत होती, दौलत होती और जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ही नहीं होती, तो आप क्या करते? शायद आराम से जिंदगी जीते, दुनिया घूमते, अपने सपने पूरे करते और शायद कभी ये सोचते भी नहीं कि एक दिन आपको पूरे देश की सेहत की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसने महल छोड़ दिया, राजसी जिंदगी छोड़ दी और अपनी पूरी जिंदगी भारत के नाम कर दी। एक ऐसी महिला जिसका नाम हमारी हिस्ट्री की किताबों में उतना बड़ा नहीं लिखा गया जितना लिखा जाना चाहिए था, लेकिन जिसका असर आज भी हर उस इंसान की जिंदगी में है जो कभी एम्स के दरवाजे तक पहुंचा है। ये कहानी है राजकुमारी अमृत कौर जी की। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पंजाब के कपूरथला राज घराने से। अमीर परिवार, राजसी परिवार और घर में जन्मी एक बेटी अमृत कौर। उस दौर में राजकुमारियों की जिंदगी आम लोगों से बहुत अलग होती थी, लेकिन अमृत कौर का सपना थोड़ा अलग था। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षा ली, दुनिया देखी, नए विचार देखे। लेकिन जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुन लिया। सोचिए, एक तरफ महल, दूसरी तरफ संघर्ष ही संघर्ष, एक तरफ सुविधाएं और दूसरी तरफ त्याग। अमृत कौर ने संघर्ष को चुना। वो महात्मा गांधी के साथ जुड़ गईं, सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए भी नहीं, पूरे 16 साल के लिए। जी हाँ, पूरे 16 साल तक वो गांधी जी की पर्सनल सेक्रेटरी रही। दोस्तों, अक्सर हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में कम बात करते हैं जो उन महान नेताओं के साथ खड़े रहे, जो स्पॉटलाइट में नहीं आए, लेकिन जिनके बिना कहानी अधूरी है। अमृत कौर उन्हीं लोगों में से एक थी। आजादी की लड़ाई में उन्होंने जेल भी देखी, संघर्ष भी देखा, त्याग भी देखा और धीरे धीरे उनकी पहचान राजकुमारी से बढ़कर एक देशभक्त के रूप में होने लगी। 1947, भारत आजाद हुआ, पूरे देश में उत्सव का माहौल था, नया भारत जन्म ले रहा था और उस नए भारत को नए सपने देखने वाले लोग चाहिए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमृत कौर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें बनाया गया भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर। दोस्तों, आज हम हेल्थ मिनिस्ट्री को एक सामान्य चीज समझते हैं, लेकिन उस वक्त भारत की हालत बहुत अलग थी। हॉस्पिटल्स की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, मेडिकल एजुकेशन की कमी थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थी और साधन बहुत कम। और उस वक्त एक महिला ने सपना देखा कि भारत को दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से एक मिलना चाहिए। आज हम उस इंस्टीट्यूशन को एम्स के नाम से जानते हैं, लेकिन एम्स बनाना आसान नहीं था। बहुत लोगों को लगता था कि ये सपना बहुत बड़ा है, बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है,
कहते हैं खुद नेहरू जी को भी शुरुआत में यही लगा था कि इतना बड़ा

आज हर दिन कितने लोग एम्स जाते हैं, कितने डॉक्टर्स वहां से निकलते हैं, कितनी जिंदगियां बचती हैं, कितनी रिसर्च होती है, और उस सब के पीछे एक महिला का सपना। लेकिन अमृत कौर की कहानी सिर्फ एम्स तक सीमित नहीं है, वो महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ी। उस दौर में जब लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में की जाती थी, उन्होंने आवाज उठाई। जब पर्दा प्रथा को सामाजिक परंपरा माना जाता था, उन्होंने सवाल पूछा। जब देवदासी प्रथा जैसी व्यवस्थाओं ने महिलाओं की जिंदगी को बांध कर रखा था, उन्होंने उसके खिलाफ भी संघर्ष किया। दोस्तों, बदलाव लाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब समाज आपसे सहमत ही नहीं हो। लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो मुश्किल सवाल पूछने का साहस रखते हैं। 1950 में अमृत कौर एक और इतिहास रचती हैं। वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनती हैं। सोचिए, नया नया आजाद हुआ भारत और भारत की एक बेटी दुनिया की हेल्थ प्लेटफॉर्म का नेतृत्व कर रही हैं। कितनी गौरव की बात है ये। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने कभी शादी नहीं करी। इसीलिए नहीं क्योंकि वो कर नहीं सकती थी, इसलिए भी नहीं क्योंकि उनके पास मौके नहीं थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े उद्देश्य को दे दी। अपनी संपत्ति, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन, सब कुछ देश के नाम। कहते हैं उन्होंने शिमला में अपनी हवेली तक नर्सेस के लिए डोनेट कर दी। सोचिए कितने लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए जिंदगियां बिता देते हैं और कुछ लोग उसे बांट कर अमर हो जाते हैं। 1964 में 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती पर अमृत कौर जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जैसे जिंदगी भर गांधी जी के विचारों के साथ चली थी, वैसे ही गांधी जी के जन्मदिन पर उनकी यात्रा भी पूरी हुई। दोस्तों, आज अगर आप एम्स का नाम सुनते हैं, अगर आप किसी महिला को पढ़ते

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एयर होस्टेस ने कहा, उम्मीद है आपको फ्लाइट में घर जैसा ही माहौल मिला होगा। यात्री ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, घर पे तो मेरी कोई सुनता ही नहीं, यहाँ तो एक बटन दबाओ चार पांच लोग आ जाते हैं।

75 years के बाद जब एक बेटी अपने घर लौटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बार फिर एक सवाल पूछती हूं, आपका घर क्या है? सिर्फ ईंट और सीमेंट, एक एड्रेस, एक लोकेशन, गूगल मैप्स पर एक पिन या कुछ और? क्योंकि सच कहूं, घर सिर्फ दीवारें नहीं होता, घर वो जगह होती है जहां पहली बार आपने चलना सीखा, जहां किसी ने आपका नाम प्यार से पुकारा, जहां पहली बार आप रोए, पहली बार हंसे, पहली बार सपना देखा। और शायद इसीलिए हम तो घर छोड़ देते हैं, लेकिन घर हमें कभी नहीं छोड़ता। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपना घर छोड़कर चली तो गई, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। और फिर 75 years बाद वो वापस घर आई।

उसका नाम तोशी। रावलपिंडी की तंग गलियों में लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे। एक चुलबुली सी लड़की, एक सपने देखने वाली लड़की, एक ऐसी लड़की जो शादियों में बजने वाले ढोल की आवाज सुनते ही गली में भाग जाती थी, जो शाम को अपनी बालकनी में खड़ी होकर गाने गुनगुनाती थी, जो अपनी किताबें घर के दूसरे माले पर रखे एक छोटे से कबर्ड में संभाल कर रखती थी। उसकी गली का नाम था प्रेम गली। कितना खूबसूरत नाम है ना, प्रेम गली, मोहब्बत की गली, प्यार की गली और यादों की गली। लेकिन फिर आया 1947, एक ऐसा साल जिसने लाखों लोगों की तकदीरें बदल दी। एक लकीर खींची गई और उस लकीर ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उसने यादें बांटी, रिश्ते बांटे, मोहल्ले बांटे, दिल बांटे। तोशी सिर्फ 15 साल की थी, उस उम्र में जब बच्चे कॉलेज के सपने देखते हैं, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पहले बच्चों को भेजा गया, फिर माँ बाप आए, और देखते ही देखते प्रेम गली पीछे छूट गई। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग घर छोड़ देते हैं और कुछ लोग घर को अपने अंदर लेकर जाते हैं। तोशी की माँ उनमें से ही एक थी। उन्होंने कभी नहीं माना कि वो हमेशा के लिए घर छोड़ के गई हैं। वो कहती थी, हम वापस आएंगे, ये हमारा घर है, हम लौट कर जरूर आएंगे। हर साल, हर मौके पर, हर बात में एक ही सपना, घर लौटना है। लेकिन जिंदगी के पास कुछ और ही प्लान्स थे। पैसे खत्म हो गए, बैंक अकाउंट्स डूब गए, हालात बदल गए, और वापस जाना एक सपना बनकर रह गया। सरकार ने एक नया घर दिया, मुआवजे दिए, लेकिन तोशी की मां ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था, अगर मैंने ये घर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं मान लूंगी कि मेरा असली घर छूट गया, और वो ये मानना चाहती ही नहीं थी। समय बीतता गया, मां चली गई, पिता भी चले गए, भाई भी चले गए।

वही बालकनी, वही यादें, और वो गीत दोबारा जिंदा हो गया। जाते वक्त प्रेम गली के लोगों ने एक और काम किया, एक बहुत खूबसूरत काम। उन्होंने उस गली का नाम बदल दिया। अब उसका नाम था रीना वर्मा गली। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को अपना घर दोबारा देखना नसीब नहीं होता, हर इंतजार भी पूरा नहीं होता, हर कहानी की हैप्पी एंडिंग भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी किस्मत 75 इयर्स देर से ही सही लेकिन जवाब जरूर देती है। और शायद इसीलिए हम सब कहते हैं, घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, घर एक एहसास होता है, एक याद, एक खुशबू, एक आवाज, एक गीत, जो चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, दिल के किसी कोने में जिंदा रहता है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर आपसे एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: दरोगा ने पूछा, इतनी शराब क्यों पी रखी है? शराबी ने कहा, मजबूरी है साहब। दरोगा ने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी है बे? शराबी ने कहा, वो बोतल का ढक्कन खो गया।

दरार वाला कप और एक ऐसा सबक जो जिंदगी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। आपने आखिरी बार अपने आप को किस बात के लिए जज किया था? शायद किसी गलती के लिए, शायद किसी फेलियर के लिए, शायद किसी ऐसी बात के लिए जो आपको लगता था कि आप में कम है। हम सब करते हैं, कोई अपनी हाइट को लेकर परेशान है, कोई अपने वेट को लेकर परेशान है, कोई अपने रंग को लेकर परेशान है, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर, कोई उम्र को लेकर, कोई अपने टूटे हुए रिश्ते को लेकर, और कोई अपने गुजरे हुए फैसलों को लेकर। हम सबके पास ना एक क्रैक होता है, एक छोटी सी दरार जिसे हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं। आज की कहानी एक कप की है, लेकिन यकीन मानिए, कहानी कप की कम और हम सबकी ज्यादा है। एक बहुत सफल बिजनेसमैन थे, उनके घर में एक बहुत सुंदर सा पोर्सलिन कप का कलेक्शन था। बहुत महंगा, बहुत खूबसूरत, हर कप बिल्कुल परफेक्ट, चमकीला, नया, नजाकत से बना हुआ। लेकिन उन सब कप्स के बीच में एक ऐसा भी कप था जिसमें एक छोटी सी दरार थी, एक हल्का सा क्रैक। कप अब भी काम करता था, उसमें चाय भी रखी जा सकती थी, लेकिन बिजनेसमैन को लगता था कि वो अब परफेक्ट नहीं रहा। और दोस्तों, हम भी तो यही करते हैं। जब तक सब कुछ ठीक हो, हम खुद को पसंद करते हैं, लेकिन एक गलती, एक नाकामी, एक हार्ट ब्रेक, और हम सब सोचने लगते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। उस बिजनेसमैन ने भी यही किया, उसने उस कप को शेल्फ के पीछे रख दिया, सबसे पीछे, जहां किसी की नजर ना पड़े। आई एम श्योर आप इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में हम सब ने ये किया है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, और वो कप चुपचाप वहीं पड़ा रहा। एक दिन बिजनेसमैन का एक पुराना सा दोस्त उससे मिलने आया। दोनों गार्डन में बैठकर चाय पीने वाले थे। बिजनेसमैन अंदर गया और अपने कलेक्शन में से सबसे सुंदर कप्स निकाल लाया, लेकिन उस दरार वाले कप को फिर पीछे ही छोड़ दिया। चाय सर्व हुई, बातें शुरू हुई, पुरानी यादें ताजा हुई, और तभी उस दोस्त की नजर शेल्फ पर पड़ी। उसने पूछा, ये पीछे वाला कप क्यों रखा है? बिजनेसमैन थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, उसमें क्रैक है, वो बाकी कप्स जैसा परफेक्ट नहीं है, इसीलिए यूज नहीं करता। दोस्त कुछ देर चुप रहा और फिर बोल उठा, मेरी चाय उसी कप में लाओ। बिजनेसमैन हैरान हुआ, उसने कहा, अरे उसमें क्या खास है, दरार है उसमें। दोस्त मुस्कुराया और बोला, फिर भी लाओ। चाय उसी कप में आई। दोनों गार्डन में बैठ गए। शाम ढल रही थी, सूरज की रोशनी धीरे धीरे पेड़ों के बीच से गुजरती हुई टेबल तक आ रही थी, और फिर कुछ खूबसूरत हुआ, बहुत खूबसूरत। सूरज की एक किरण उस कप की दरार से गुजरी और टेबल पर एक छोटा सा रेनबो बन गया, एक नन्हा सा इंद्रधनुष। बिजनेसमैन चुप हो गया, उसने कभी ये देखा ही नहीं था। दोस्त ने कप की तरफ देखा और कहा, परफेक्ट कप्स चाय रखते हैं, लेकिन ये क्रैक्ड कप चाय भी रखता है और खूबसूरती भी पैदा करता है।
दोस्तों कितनी गहरी बात है ना। कभी कभी हम अपनी दरारों को इतना बुरा समझ लेते हैं कि उनमें से आती हुई रोशनी देखना ही भूल जाते हैं। सोचिए, अगर आप कभी फेल नहीं हुए होते तो शायद आप इतने समझदार नहीं होते। अगर आपका दिल कभी नहीं टूटा होता तो शायद आप दूसरों के दर्द को समझ ही नहीं पाते। और कभी संघर्ष देखा ही ना होता तो शायद आप इतने मजबूत नहीं बनते। हम अक्सर अपने जख्मों को कमजोरी समझते हैं, लेकिन कई बार वही जख्म हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में पूछा, सबसे अच्छा डॉक्टर कौन बनता है? बच्चों ने कहा, जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। टीचर बोली, नहीं, जो दर्द को समझता है। और दर्द को कौन समझता है? वही जिसने खुद दर्द देखा हो। एक बार सोचिए, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलें आईं, जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जो सपने टूट गए, जो रास्ते बंद हो गए, शायद वही आपकी दरारें थीं। लेकिन शायद वही उन्हीं क्रैक से रोशनी भी अंदर आई। आज आप ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा दयालु हैं, ज्यादा मजबूत हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जिंदगी ने आपको तोड़ कर नहीं, तराश कर बनाया है। हम सब किसी ना किसी तरह से क्रैक्ड कप्स जैसे हैं। किसी के दिल में दरार है, किसी के विश्वास में, किसी के सपनों में, किसी के रिश्ते में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम कीमती हो गए। जापनीज कल्चर में एक कला होती है, किंत्सुकी। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों को सोने से भरा जाता है ताकि वो और भी खूबसूरत लगे। क्या बात है ना? वहां लोग टूटने को छुपाते नहीं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। और शायद जिंदगी भी हमें यही सिखाना चाहती है। परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप, ना मैं, ना दुनिया का कोई भी इंसान। और सच कहूं, अगर सब परफेक्ट होते तो कहानियां कहां से आती, गीत कहां से आते, शायरी कहां से आती और मोहब्बत कहां से आती? हमारी सबसे खूबसूरत बातें, हमारी सबसे गहरी समझ और हमारी सबसे प्यारी इंसानियत अक्सर हमारी दरारों से आती है। तो दोस्तों, आज अगर आप अपने किसी क्रैक को छुपा रहे हैं ना, किसी पुरानी गलती को लेकर खुद को माफ नहीं कर पा रहे, किसी नाकामी को अपनी पहचान बनाकर बैठ गए हैं किसी कोने में, तो एक बार उस क्रैक कप को याद कीजिए। हो सकता है आपकी दरार भी आपकी पहचान हो। हो सकता है वहीं से आपकी रोशनी बाहर आ रही हो। और हो सकता है जिसे आप कमी समझ रहे हैं, दुनिया उसी में आपकी खूबसूरती देख रही हो। मैं हूं आरजे तनुषा, फिर मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: इंसान बुखार आने पर इतनी जल्दी दवाई नहीं ढूंढता जितनी जल्दी वो फोन की बैटरी कम हो जाने पर चार्जर ढूंढता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस।

0: अब वो बुआ नहीं रह गई थी। लेकिन एक दिन गजब हो गया, बुआ की कौड़ियां ही कोई चुरा कर ले गया। इन्हीं कौड़ियों में ही तो बुआ के प्राण बसते थे। कौड़ियां नहीं रही तो बुआ जी कैसे रहती। लेकिन जाते जाते वे इतना कह गई कि जिसने भी कौड़ियां चुराई हैं वो खुद कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। शायद ऐसा ही हुआ भी होगा, क्योंकि उनका कहा कभी गलत तो होता नहीं था ना।
1: मैंने

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी।

अर्जुन के सच्चे सपूतों उठो, और कलयुग में सतयुग के दूतों उठो, कंस का

मनुष्यों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती है, स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक विदेशी मित्र ने जब उनके गुरु से मिलने की इच्छा जताई तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो मित्र उनके पहनावे पर कमेंट करने लगा और कहा कि आप जैसे व्यक्तित्व का चरित्र निर्माण करने वाले ये कैसे गुरु हैं जिन्हें कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, आपके देश में चरित्र का निर्माण दर्जी करता होगा, लेकिन हमारे भारत में चरित्र का निर्माण आचार विचार से होता है।

क्या आपको पता है बैंगनी रंग किसी भी राष्ट्र के ध्वज में इस्तेमाल नहीं होता। अब यह है ना बड़ी रोचक बात, क्या वजह है? क्या आपको पता है किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग उसकी आन बान शान होता है। देश का हर नागरिक, सेना और उसकी सरकारें झंडे के मान सम्मान के लिए हर कदम उठाती हैं। झंडों पर नजर आने वाले रंग के मायने होते हैं। जैसे भारत के तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता की निशानी है। इसी तरह अलग अलग देशों के झंडों का मतलब भी अलग अलग होता है। मगर क्या आपने कभी किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज में पर्पल कलर, बैंगनी कलर देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि झंडों में बैंगनी रंग बेहद दुर्लभ है। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक वजह है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वर्ल्ड मीटर्स वेबसाइट के अनुसार दुनिया में 195 देश हैं। इनमें से सिर्फ 2 देश ही ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वज पर बैंगनी रंग दिखाई देगा। बाकी दुनिया के किसी भी देश के झंडे पर पर्पल रंग नहीं है। इसके पीछे की वजह भी काफी रोचक है। दरअसल 1800 के वक्त तक बैंगनी रंग को बनाना बहुत ही कठिन और महंगा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ ने तो यह घोषणा कर दी थी कि रॉयल फैमिली के अलावा कोई भी बैंगनी रंग नहीं पहनेगा। इस वजह से बैंगनी रंग को हासिल करना आम लोगों की बस की बात नहीं थी। बैंगनी रंग को हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। दरअसल उन दिनों बैंगनी रंग लेबनान के छोटे समुद्री घोंगे में पाया जाता था, जिसे जुटाना बहुत मुश्किल था। 1 ग्राम बैंगनी रंग बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंगे मार दिए जाते थे जिनमें वो रंग निकलता था। इसके बाद डाई बनाने के लिए भी उसमें बहुत मेहनत लगती थी और डाई का खर्च भी बहुत ज्यादा था। उन दिनों 1 पाउंड बैंगनी डाई खरीदने का खर्च 41 लाख रुपए से भी ज्यादा था। इस कारण से देशों ने अपने झंडों में बैंगनी रंग रखना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि 1856 में विलियम हेनरी परकिन सिंथेटिक बैंगनी डाई बनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद इसकी कीमतें कम होने लगी। मगर देशों ने फिर भी बैंगनी रंग को त्याग ही दिया। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो 2 देश कौन हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग है? अब आपको हम उन देशों के बारे में बताते हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग दिखाई देता है। पहला देश है डोमिनिका, जिसके ध्वज को साल 1978 में अपनाया गया था। दूसरा देश है निकारागुआ, जिसके ध्वज को 1908 में अपनाया गया था और इसे आधिकारिक मान्यता 1971 में मिली। स्पेन के राष्ट्रीय ध्वज में भी कुछ वक्त तक बैंगनी रंग देखने को मिला था, उसके बाद हट गया। क्या वजह रही जो नैनो कार फेल हो गई? 2009 में टाटा की नैनो कार के लॉन्च होने से पहले इसको लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। लोग इस कार को लेकर तरह तरह के सपने देख रहे थे, लेकिन लॉन्च के पहले टाटा नैनो को जो शोहरत हासिल हुई थी, मार्केट में आने के बाद उस हिसाब से उसकी बिक्री नहीं हुई, या यूं कहा जाए कि टाटा की नैनो मार्केट में धड़ाम से गिर पड़ी। आखिर टाटा की नैनो का यह दुर्भाग्य क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की सबसे पसंदीदा किताब जॉन ब्रुक्स द्वारा लिखी गई इट इज बिजनेस एडवेंचर से मदद मिल सकती है। इस पुस्तक के एक अध्ययन में एडसल कार का जो दुर्भाग्य हुआ था, उसी पर विस्तृत चर्चा की गई है। 1955 में फोर्ड मोटर कंपनी ने $2,400 से $4,000, मतलब 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की कीमत की एक कार मैन्युफैक्चर करने की घोषणा की। इस कार को लेकर भी उस समय बहुत शोर था, जैसा टाटा नैनो को लेकर हुआ। कार का नाम फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बेटे एडसल फोर्ड के नाम पर एडसल रखने का फैसला लिया गया था। एडसल के हवुए ने लोगों के मन में कार को लेकर कल्पनाओं और सपनों की झड़ियां लगा दी। इसके इर्द गिर्द जो हवा खड़ा किया गया, उससे सब सोचने लगे थे कि यह आम कारों से कुछ हटकर होगी। जब 1957 में इसे मार्केट में उतारा गया तो लोगों ने देखा कि यह तो कार आम कारों की ही तरह है, इसमें भी 4 पहिए लगे हैं और 1 इंजन है, तो उनका कार से मोह भंग हो गया।
नतीजा यह हुआ कि कार बाजार में औंधे मुंह गिरी। फोर्ड को इस कार पर 20 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। बस यही कुछ कारण टाटा की नैनो के भी फेल होने पर रहा। 2009 में लॉन्च की गई नैनो की सेल्स 2010-11 में और 12-13 में टाटा मोटर्स की कुल सेल्स का 23-24% थी, लेकिन 2011-12 में 74,527 तक इसकी सेल्स पहुंचने के बाद अचानक इसकी मांग में बहुत जोरदार गिरावट आई। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसकी सेल्स में 70% की गिरावट आई और इसकी सेल्स 2013-14 में 21,129 पर सिमट के रह गई। जबकि टाटा मोटर्स ने गुजरात के सदानंद में 2,50,000 नैनो प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए फैक्ट्री भी बनाई थी। आमतौर पर यह होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा हवा खड़ा कर दिया जाए तो लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं और कुछ अलग होने का सपना देखने लगते हैं। जब हकीकत कुछ और होती है तो वो खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है।

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए। सारे घर वालों और मोहल्ले वालों को बड़ा अजीब सा लगा था जब राघव ने अपने जन्मदिन पर घोड़े के बच्चे की मांग रख दी और पिता ने उसे पूरा भी कर दिया। शायद राघव ने अपने पिता से इंद्र के घोड़े, उच्चेश्वा की या महाराणा प्रताप के चेतक की कहानियां सुनी होंगी। अब राघव की उम्र उस समय कुल 12 वर्ष ही तो थी। वो अपने अनोखे उपहार को पाकर खुशी से झूम उठा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल वस्तु पा ली थी। अब उसकी सुबह, दोपहर और शाम बस उसी के नाम होती थी। आपस में दोनों इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें किसी अन्य दोस्त या दुनिया की परवाह ही नहीं थी। पढ़ाई में भी उसका मन जरा अब कम लगने लगा। वक्त बीत गया। राघव अब 20 साल का होने को आया था। उसका घोड़ा, जिसका नाम उसने बहादुर रखा था, वो भी अब मजबूत कदकाठी का जवान घोड़ा हो गया था। राघव की पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। खर्चा चलाने के लिए उसने निर्णय लिया कि अपने घोड़े बहादुर से तांगा चलवाया जाए। उसने बहुत प्यार से अपने घोड़े को तांगे में जोतने का काम किया और तांगा स्टैंड में लेकर आया। हमेशा की तरह उसका ध्यान यही रहता कि कहीं उसके बहादुर को कोई पीड़ा ना हो। कुछ ही देर में एक दरोगा ने आकर उसे अपने गांव चलने के लिए कहा। सौदा 100 रुपए में तय हुआ। उसने बड़े प्यार से पुचकार कर अपने बहादुर को चलने के लिए तैयार कर लिया। बहादुर भी अपने राघव की हर बात मानने को तैयार ही रहता था। करीब 10 किलोमीटर का लंबा सफर था। दरोगा घोड़े की धीमी चाल से खींच रहा था और बार बार राघव को घोड़ा तेज चलाने के लिए ताकीद कर रहा था। राघव का दिल बैठा जा रहा था। वो पहली बार बहादुर को तांगे में जोत कर जो लाया था, अब ये बात वो 2-3 बार दरोगा से कह भी चुका था, लेकिन दरोगा बात को अनसुनी कर रहा था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि बहादुर को तांगे में जोतने का उसका निर्णय सही है या गलत। वो कभी अपनी गरीबी को कोसता तो कभी अपनी सोच को कि क्या कर बैठा मैं। तांगे के धीरे चलने से अचानक दरोगा का गुस्सा तेज हो गया और उसने वहां पर पड़ी हुई चाबुक उठाकर 2-3 वार घोड़े पर कर दिए। राघव एकदम दर्द से कराह उठा, जैसे वो चाबुक घोड़े पर नहीं उसी पर पड़ी हो। एक बार तो उसे ऐसा लगा कि इसी चाबुक से दरोगा की पिटाई कर डाले, लेकिन किसी तरह वो अपने गुस्से को बस पी गया। सारे रास्ते वो अपने घोड़े बहादुर के बारे में ही सोचता रह गया। दरोगा के आगे वो बेबस था, वरना कोई और होता तो उसे वहीं उतार फेंकता। वो घर आकर उसने घोड़े को तांगे से अलग किया और उसके स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि घोड़ा कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखे जा रहा है। तुरंत वो जाने क्या सोचकर घोड़े से लिपट गया और बड़ी देर तक बस वैसे ही बना रहा। थोड़ी देर बाद उसकी मां ने जब उसे इस हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया। चलकर वो उसके पास आई और सांत्वना के लिए जैसे ही उसने राघव की पीठ पर हाथ फेरा, वो दर्द से चीख पड़ा। क्या हुआ? उसकी मां ने पूछा। कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। कुछ नहीं कैसे? कहकर उसकी मां ने उसकी पीठ को उघाड़ दिया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी पीठ पर चाबुक मारने के ताजे निशान बने हुए थे और उनमें से खून छलक रहा था।

0: wonderful phrase. Hakuna Matata ain't no peasant craze.
1: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
2: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
6: हर घर

0: से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
4: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, हमारा यह हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है उसकी आजीविका सशक्त हो, हमारा किसान खेती में नई से नई तकनीकों को सीखे, साथ ही उन्नत कृषि कैसे कर सके आदि जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी यह पहल कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आजीविका को सशक्त बनाने की एक पहल है। किसान साथियों, हमारे पूर्वज पहले से ही कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कृषि को पुनः एक नवीनतम उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो बदलती जा रही है, प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं और हमारा जो किसान है उन्होंने रासायनिकों का हमने अंधाधुन प्रयोग के माध्यम से कहीं कहीं पर इसके काफी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर जरूरत है हमें एक बदलाव की और परिवर्तन के साथ प्रकृति के साथ मिलकर हमें कृषि करने की आवश्यकता है। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान साथियों, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो आजीविका के स्रोत हैं, जो हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं और सोच और देखते हैं कैसे मधुपालन, मधुमक्खी पालन के माध्यम से, मछली पालन के माध्यम से, फूलों की खेती करके, वनस्पति की खेती करके और अन्य खेती के माध्यम से भी हम कितने अच्छे मुनाफे ले सकते हैं, जो हमारा पूर्वज था वह सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों की ही खेती करता था, लेकिन आज का किसान औषधीय पौधों की हम खेती करना शुरू कर दिए हैं, साथ ही हमने मत्स्य पालन शुरू किया है, कुक्कुट पालन शुरू किया है और भी अन्य खेती के बहुत सारे ऐसे साधन है जिनके मदद से हमने हमारी खेती में एक नए बदलाव को महसूस किया है। तो किसान साथियों, हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान है वो भिन्न भिन्न और उन्नत कृषि करे और हमारी अपनी कृषि में नए बदलावों को करे, नए बदलावों को देखे, सीखे और अपने साथी किसान साथियों को भी बताए और हम हमारे एक्सपर्ट की राय से भी हमारी कृषि में एक उन्नति ला सके, एक नवीनता ला सके।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन को लेकर और देसी गाय की किस्मों को लेकर, हमें कैसे इनका रखरखाव करना है, क्या इनके लिए कैसा प्रबंधन करना है, साथ ही हमें किन किन बातों में इनका ध्यान रखना है और कैसे हम इसमें इनका ख्याल रख के हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। तो आइए शुरू करते हैं,
5: जिसे बात करते हैं अधिराज जी। अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है?
6: देखिए, ये हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है। इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज्यादा हमें फायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, 2014 से चल रही है, जिसको

0: है महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है, और उनकी मदद से हम कैसे हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी कृषि को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
1: पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। व्यवसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है।
2: लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन। डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन दो सालों में कोरोना काल में काफी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को। अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
3: जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है, और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था। सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा। और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ी। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेजी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे, जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पर भी विचार किया गया, और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख में हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें
2: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी

0: में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की जरूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसा कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे हैं कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
1: अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर दो दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
2: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी को लिया है, कैसे हमें मुर्गी पालन के जो मुर्गी पालन करना चाहता है जो किसान, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा खुले में उन्हें रखना चाहिए, साथ ही उनके लिए जो रात में बल्ब की सुविधा होना चाहिए, उनके लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई और गाय से जुड़ी हुई।
0: अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरीके से लाभ भी होगा, ये भी बताएं।
3: देखिए, ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे, अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस भी ये है, जो कि उनके कम उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जातीय हैं या विदेशी नस्ल के हैं। तो से क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं, जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टडीज में
0: और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए, इसका बाजार भी काफी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है। तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
3: जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाई गई है 2019 से शुरू गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के, जहां पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सीमेन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भधान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि हमारे एआई टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम
0: जी। लेकिन डॉक्टर अधिराज, इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहां से जो देसी बछड़े का हो, तो इसके लिए कहां संपर्क करें। कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं, जो करना चाह रहे वही है।
3: देखिए, सारे राज्यों में ये हमारे जो सिमेन स्टेशन हैं, सिमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सिमेन बनते हैं, तो वो सिमेन सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहां से संपर्क कीजिए और जो एआई टेक्नीशियन है जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है उस हिसाब से किया गया है।
2: जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप में से कोई किसान साथी देसी गायों का पालन करना चाहता है कि वो गर्भाशय कराए तो अपने पास के केवी की केंद्र में हम संपर्क कर सकते हैं और ये भी अभी हमें मिल सकता है। अभी इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। हमारे देसी गाय का जो दूध हो सकता है कि थोड़ा कम जरूर देती है लेकिन उसमें जो गुण है वो काफी उच्च गुण है उनमें। तो किसान साथियों, हमारे में से काफी किसान साथी देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, उसकी महत्वता को जानते हैं, समझते हैं और इसे पालते भी है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी देसी गाय का घी तुलनात्मक बाकी घीओं की तुलना में काफी महंगा मिलता है और अधिकतर तो ये मिलना अभी दुर्लभ हो चुका है क्योंकि अधिकतर लोग जर्सी गाय ही रखते हैं, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है काफी गुणकारी होता है, ये बात हमारा किसान अच्छे से जानता है और ये काफी दुर्लभ है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे देसी मुर्गियों की तो देसी मुर्गी का अंडा भी काफी गुणकारी माना जाता है और यह भी काफी दुर्लभ होता जा रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर हम आइए लेते हैं एक्सपर्ट से राय कि अगर कोई देसी मुर्गी का पालन करना चाहता है कोई किसान साथी तो कैसे कर सकता है। हाँ, हमें हमारे पास के किसान साथियों से ये मिल जाता है लेकिन क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या अन्य संस्थाओं पर क्या इसकी उपलब्धता है या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
4: मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है, एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है, तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है, उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की यह सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं, तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहां तक आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है ब्रॉयलर उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं, पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है, और उसके साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें।
0: जी।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही हमारी देसी गायों की नस्ल है उसके गुणों को। तो किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
1: कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हमारे कुछ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो सूरतगढ़ में हैं, जहां पे थारपारकर ब्रीड आपको अवेलेबल हो सकता है, वहां से आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप निकटतम जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, जहां पे अच्छे किसान होते हैं जो ये फार्म अच्छा खोलते हैं, वहां से भी आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत और एक योजना भी चल रहा है जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अभी ये प्रावधान किया गया है कि जो 200 गाय या भैंस रख के, मिनिमम 200 रख के अपना फार्म खोलना चाहते हैं, उधर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ की सब्सिडी है, वो भी फार्म्स जहां पे एस्टेब्लिश हो गए हैं वहां से आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो अभी आप समझ चुके हैं कि कहां से आप देसी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं, साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उसको भी, उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है उसके जो आहार में प्रोटीन का मात्रा सही है उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये पहली बार आपको इसके लिए कर रहे हैं तो इसके इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कुछ कमियां रहते हैं जैसे ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ होगा, उसको दिखाने के लिए एक बार आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए, वो एक बार आपके पशु का जांच करवा लें और जांच करने के बाद वो कुछ उपाय बता सकते हैं जो कि मेडिसिन मिलते हैं जो कि प्रॉपर उसका गर्भधारण करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से कुछ भी चीजें होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी आप एक बार उसका फीकल सैंपल जांच करवा लें और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है भी वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं, तो क्या ग्रोथ ज्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी? तो शांत जी, मेरा एक आपको मशविरा है कि जो ये पक्षी है, जो ब्रॉयलर है, वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था, अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है, 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है। और खासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है। जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाजार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे खासकर जो नए नीति बन रही हैं, जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं ताकि मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की, तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं। इस स्तर पर इसको समझना बूझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज्यादा आवश्यक है और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है।
2: जी जी।
4: और दूसरा, अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सामान्य तरीके से आप पाल सकते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव जो उसका जर्मप्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और संतुलित हो।
2: जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज की, जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: जरूर उपयुक्त रहेगा। देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे एरिया के ही हैं, तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और जरूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गई हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो या जो भी आप भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जहां भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं तो आपने ज्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें, मुख्य बातें कौन कौन सी होती जिसका ध्यान रखना चाहिए।
4: देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पर हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है उसकी भी विपणन व्यवस्था आप बहुत आराम से अपने स्तर पे कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश का जो उत्पादन का स्थिति है वो काफी वृहद स्तर पे हो रहा है और पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा कर ली है कि भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, मुर्गी और मुर्गी के उत्पाद की दृष्टि से वैश्विक स्थान भी बना लिया है और इन सारे उत्पादों का लगभग 20-27% हमारा इस बैकयार्ड से आता है, जो हमारे घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन होता है उससे आता है। और इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती यह होती है कि जब ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान भाई इसको घर के पिछवाड़े पे एक सहयोगी धंधे के रूप में अपनाते हैं, अपने कृषि कार्यों के साथ साथ 50 या 100 मुर्गियों को पीछे रख करके उनसे इस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है उसके जो अंडे प्राप्त होते हैं वो आपके परिवार के लिए, परिवार के इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं, आपको एक संतुलित प्रोटीन और संतुलित आहार की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होती है। उसके साथ साथ कभी जब आवश्यकता पड़े तो ये मुर्गी आपके लिए एक एटीएम का कार्य भी करती है, आप उसको रूरल मार्केट में 100-200-250 रुपए में बेच भी सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक इन दो उद्देश्यों के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप रखते हैं तो आपको फायदा भी होता है और धीरे धीरे जब आप इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में परिपक्व होते जाते हैं तो इस व्यवसाय को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में विपणन की व्यवस्था बहुत ज्यादा हमें करनी नहीं होती है। पर हाँ, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो वो है मुर्गी की एक विपणन व्यवस्था, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हमारे भारत में नहीं है। यद्यपि अब हम लोग औद्योगिक स्तर पे पहुंच गए हैं और अब बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी हमारी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो विपणन की व्यवस्था है, बहुत ही प्राथमिक टाइप की है।
2: सप्लाई चेन जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तभी और बेहतर हमारे जो मुर्गी पालक है उन्हें लाभ होगा।
4: एग्जैक्टली, और उसके साथ साथ अब तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। सो जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनने भी काम किया है। आपने कोरोना के समय पे देखा कि अगर आपको मुर्गी की या मुर्गी के मांस की या मुर्गी के अंडे की आवश्यकता थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीजें उपलब्ध थी, आप चाहते जिस समय आप चाहें उस समय पे इन उत्पादों को अपने घर पे बैठे हुए प्रोसेस्ड हो या रॉ हो आप बुलवा सकते थे। तो धीरे धीरे इसकी विपणन व्यवस्था ने एक नया आयाम लेना शुरू किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुआ है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है। उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी भी शुरू की है, तो जिनको अगर बड़े लार्ज स्केल में मुर्गी के उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे चिकन की आवश्यकता होती है या अंडों की आवश्यकता होती है, तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस अपने डेवलप करते हैं, कुछ फार्म्स और फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनके जो जितने भी उत्पाद होता है वो डायरेक्ट लेते हैं और अपने अनुरूप उनको पैदा करवाते हैं, इससे वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, यानी धीरे धीरे जैसा कि आप बता रहे हैं कि और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है ये सेक्टर।
0: किसान साथियों, मुर्गी का व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है, यह बात हमारे झाबुआ का किसान बहुत ही अच्छे से जानता है। जब भी हमारा जो किसान है, जब भी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, वे हाट का जो हमारा दिन होता है, हाट बाजार के दिन में आते हैं और जो मुर्गी है वो अभी 300 से 400 रुपए के बीच में बिक रही है। साथ ही अगर हम मुर्गे की बात करें तो मुर्गा 700 से 1000 के बीच में ही बिकता है, और अगर हम देसी मुर्गा और कड़कनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा दाम मिलता है। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। साथ ही जैसे कि हम प्रारंभ में हम चर्चा कर रहे थे कि जो देसी अंडे हैं, देसी अंडे का जो अभी मिलना काफी मुश्किल हो चुका है, हमें बाजार में अंडे जरूर मिल सकते हैं लेकिन जो देसी अंडा है जिसका स्वाद अलग होता है और वो गुणकारी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा किसान भाई इसमें थोड़ा सा और ध्यान लगा दे और जो हमारे घर के पीछे हम पालते हैं, हमारे घर पे ही हमारे पेड़ों पे जो मुर्गियां होती है, उकेड़ा है, उकेड़े में से वो काफी अपने जरूरतमंद जरूरी कीड़ों को वो खाती है और इस तरीके से हमें इसके लिए कुछ ज्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये कम लागत पर होने वाली कृषि है। तो किसान साथियों, आप इसमें भी अपना रुख कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा और ज्यादा मुनाफा इसके माध्यम से भी हम कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: साहिवाल भी बहुत अच्छा है। थारपारकर, देखिए थारपारकर साहिवाल अगर देखेंगे सिर्फ दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो साहिवाल बहुत ही अच्छा है, और थारपारकर अगर देखेंगे ये डुअल पर्पस है, मतलब इससे दूध का लाभ भी ले सकते हैं और अगर मतलब मेल काफ हो गया तो उसको आप मतलब खेती में भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे हैं आपके राजस्थान के लिए। और हमारा एक जो मैंने पहले भी बताया था एक कि राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ में एक सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहां पे थारपारकर की उपलब्धि भी हो सकती है, वहां से आप पूछताछ कर सकते हैं और कहां अवेलेबल है बता सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं इसकी फायदा।
2: जी बिल्कुल। साथ ही अधिराज जी बताया कि जैसे कि आपने हमें ई गोपाला ऐप के बारे में भी बताया था कार्यक्रम से पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधा

0: है तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और किस किस तरह की जानकारी या फिर सर्विसेज इस ऐप पर उपलब्ध हैं?
1: जैसे कि अभी सर ने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब सारी चीजें अवेलेबल हो रहे हैं, तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए और किसानों को सुविधा मिलने के लिए ये ई गोपाला ऐप का भी लॉन्च जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था, तो ये जो हुआ था तो इसमें क्या है, आप अगर कोई अच्छे नस्ल के पशु चाहते हैं, जो गाय है या भैंस है वो भी चाहते हैं, वो वहां पे रजिस्टर्ड है, तो उसको आप खरीदारी कर सकते हैं और उसके जो किसान है उससे बात करके ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सिमेन जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए चाहिए उस वो भी वहां अवेलेबल है, और कहां से आप ले सकते हैं वो भी सारा, और उसके पर्टिकुलर प्राइस के साथ कितना मूल्य है वो भी अवेलेबल है, किस सांड का है वो भी सारा चीज अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो अगर चाहते हैं, अगर कोई IVF करना चाहता है तो उसके लिए एम्ब्रियो अवेलेबिलिटी भी वहीं दिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ छोटे छोटे चीजें दिए गए हैं कि कोई अगर रोग आ जाता है, मतलब छोटा कंडीशन आ जाता है, उसका कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको लगा के हम, जैसे कोई पत्ता हो या कोई फूल हो उसको लेके हम कोई एक छोटा सा अगर बुखार आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। वहां पे इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का भी वीडियोज दिए गए हैं जो जिसका फायदा कोई किसान ले सकते हैं। उसके अलावा पोषण का भी वहां पे प्रावधान रखा गया, अगर कोई किसान उसमें रजिस्टर्ड करते हैं अपने पशु को दूध दे रहा है, 5 लीटर दूध दे रहा है या 10 लीटर दूध दे रहा है, उसके हिसाब से उसको जितना पोषण चाहिए उसका भी कैलकुलेशन वो करवा के अपने हिसाब से वो ले सकता है।
0: जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं, और खासतौर पर ये ई गोपाला ऐप है जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और इससे बहुत तरह की सुविधाएं आपके बिल्कुल डोर स्टेप पर भी मिलेगी।
2: किसान साथियों, अभी आपने ई गोपाला ऐप के बारे में सुना, क्या है ई गोपाला है किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक मौका है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें वहां पर मिल सकती है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी हमें चाहिए हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही पहले हमें इन सारी चीजों को ढूंढने की काफी दिक्कत होती थी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके पास मिलेगा आदि चीजों की हमें दिक्कत होती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसके माध्यम से हम अच्छे से अच्छी किस्म की वीर्य प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को इस ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: देखिए इसका कारण है ये फैट नहीं आ रही है जिसके वे आप जो दूध बेच रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो रहा होगा। आप जो आहार देते हैं उसको संतुलित आहार दीजिए, जो कॉमर्शियल फीड मिलता है वो कॉमर्शियल फीड बाहर से खरीद के दीजिए, और उसके साथ आप उसको हरा चारा का भी सफिशिएंट हरा चारा दीजिए। मिनिमम उसको ये 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो मिनिमम 25 किलो हरा चारा उसको रेगुलर चाहिए, ये देखिए। दूसरा चीज़ है, आप कॉमर्शियल फीड जो मिल रहा है बाहर गाय के लिए मिल रहा है उसका अवेलेबिलिटी करवाइए। अगर हम देखते हैं कि जो पोषण हम देते हैं तो अगर वो हर 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो कॉमर्शियल फीड हमें उसको देना चाहिए तो इसका एक बार देखिए। दूसरा चीज आपको देखना होगा कि अगर कुछ मिनरल मिक्सचर उसके फीड में डाल सकते हैं वो डालने से भी, अगर डेली 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर जो मिल रहा है बाहर कॉमर्शियली अवेलेबल है, फीड सप्लीमेंट की तरह अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल के उसके आहार में डालिए तो इसके हिसाब से आपका जो गाढ़ापन आ जाएगा दूध में।
0: जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कौन कौन से नस्लें हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अलग अलग जो उद्देश्य है हमारे मुर्गी पालकों के उसके अनुसार जिसका चुनाव कर सकते हैं।
4: देखिए नस्लों के मामले में भारत इस समय मैं अगर कहूं कि सबसे सर्वप्रथम है और सबसे उच्च स्थान पर है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से विभिन्न जो हमारे इको क्लाइमेटिक जोन हैं उनके हिसाब से और उत्पादन की दृष्टि से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास अगर घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली मुर्गियों की करीब करीब 13 से 17 नस्लें हमारे पास उपलब्ध हैं। अलग अलग इलाकों में ये विकसित की गई हैं और उन इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर विकसित उत्पादन वाली मुर्गियों को अगर हम देखें तो अंडा देने वाली हो या ब्रॉयलर हो, उस पर भी उत्पादन की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और हमारे पास वो सारी नस्लें जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो भारत में मौजूद हैं। और इनकी विपणन व्यवस्था भी देखें, इनकी उपलब्धता भी देखें, तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारी हैचरीज भी हैं, उसमें इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जितना भी आवश्यकता है उस स्तर पर किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि हम थोड़े ही समय में अंडा उत्पादन करने वाले दूसरे देश बन जाएं वैश्विक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें इन बातों पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास चूजों की उपलब्धता है कि नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप चूजे की मांग बढ़ती और घटती रहती है। क्योंकि आपने देखा है कि भारत हमारा जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण के मास में मुर्गी के खपत पे कमी आ जाती है, गर्मी के दिनों में कमी आ जाती है और जाड़ों में ये अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। तो इसकी मांग के अनुरूप इसका उत्पादन हमारे यहाँ किया जा सकता है और जो कंपनियां हैं वो आपके घर तक आपको ये चूजे उपलब्ध करा सकती हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: आपकी हो सकती हैं परंतु इसका चिकित्सीय परीक्षण और इसका शव परीक्षण आवश्यक रूप से करा लें और चिकित्सक की सलाह लें। क्योंकि नॉर्मल आप जो बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं, दो समस्याओं के कारण यह हो सकता है। एक कि आपने मुर्गी को प्रथम दिवस पे जो टीका लगाना होता है, जो हैचरी के स्तर पे टीका लगाना होता है, वो होता है मैरेक्स डिसीज का, जिसके कारण दोनों टांगों में पैरालिसिस होता है। उस कारण में अगर प्राथमिक स्तर पर आप देखें और एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर ये बीमारी हो रही है तो वो उस कारण से हो सकती है। और अगर 3 से 4 सप्ताह के अंतर पे ये बीमारी हो रही है तो वो सामान्यतया जो हमारा B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2। तो बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग करें उसके लिए। अगर उससे करेक्ट हो जाता है तो ये मानिए कि वो विटामिन के कारण है। परंतु अगर जब इसमें मृत्यु दर हो रही है या ये पक्षी अपंग हो रहा है तो इसका चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी के कारण हो रहा है या ये किसी डेफिशिएंसी के कारण।
0: मैरेक्स के बारे में जैसे आपने बताया रूप साहब, तो उसमें भी बताते हैं कि बहुत एकदम शुरुआत में ही चूजों को टीका लगा देना चाहिए। तो अगर आप टीका नहीं लगवाया तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं ये चूक तो आपसे नहीं हो गई है। अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे?
1: ये हम बताना चाहते हैं कि हमने भी बहुत सारे देशी नस्ल के बारे में भी बात की और एक भारत सरकार का ये भी जैसे प्रोत्साहित किया जाए जो कि अच्छी देसी नस्ल पाल रहे हैं भारत में, उस तरीके के जो पशुपालक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। उसमें भी एक चीज़ है गोपाल रत्न अवार्ड, जो कि पुरस्कार राशि दी जाती है, फर्स्ट को 5 लाख की और सेकंड को 3 लाख की और थर्ड को 2 लाख की राशि दी जाती है। तो ये भारतवर्ष में एक बार किया जाता है, तो इसमें भी भाग लें और देसी नस्ल के लिए सुधार के लिए जो हमारे पशुपालक हैं।
2: किसान भाइयों, हमारे किसान साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ अवार्ड रिवॉर्ड के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह खेती करे, उन्नत अच्छी से अच्छी खेती करे, अच्छी पैदावार ले, जिससे हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि हमारा किसान जो है हमारे पूरे देश के सभी लोगों का पेट भरता है, तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दी जा रही है। आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग लें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम, जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो का एक बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ प्रोग्राम जिंदगी के रंग पेट्स के संग। आज हमारे साथ हैं मेघा चंद्रन जी, जो फाउंडर हैं #AdoptDon'tShop की, और उन्होंने अपना पूरा जीवन बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए समर्पित किया है। कभी जो डॉग्स को पसंद नहीं करती थी, मेघा जी आज सैकड़ों अनंत पपीज की माँ है और 500 से ज्यादा पप्स को प्यार भरा घर दिलाने में अपना योगदान दे चुकी हैं। उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है क्रिश, जिससे एक मुलाकात ने उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बदल दिया। तो आइए स्वागत करते हैं मेघा जी का और सुनते हैं प्यार, करुणा और इंसानियत से भरी उनकी दिल को छू लेने वाली कहानी।

0: हैश अडॉप्ट डोंट शॉप, जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में जाना, तो आप मुझे सबसे पहले आपकी जो पेट लाने की, घर में आपके पेट आने की जो जर्नी थी, आपका वो डिसीजन क्या था, किस तरह से आपने वो डिसाइड किया, आपका पहला पेट कौन था, कैसा था, कैसे उसका नाम रखा गया, उसकी अगर कोई बैक स्टोरी हो तो हमारे साथ साझा करें।
1: एक डिकेड 10 साल पहले आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते तो मैं बोलती मुझे डॉग्स से एलर्जी है, या फिर मुझे डॉग्स इतने अच्छे नहीं लगते, या उनसे डर लगता है। सो क्योंकि तब तक मैं बोलूंगी आई वॉज रियली इग्नोरेंट ऑफ दिस ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ लाइफ दैट आई कुड हैव हैड। बट एक क्रिसमस इवनिंग 2016 के क्रिसमस इवनिंग पे एक पपी जो हमारे कार के नीचे पास हुआ, बस उसको मेरे हस्बैंड ने जब उठाया एंड उसको घर लेके आए, बाद में हमने बहुत ट्राई किया अगर किसी को चाहिए उसी दिन रात को, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पिक करता है, हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, रेस्क्यू के बारे में, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पेट रेस्क्यू करता है या पपीज को रेस्क्यू करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कुछ नहीं पता था। उसको घर लेके आए एंड 25 दिसंबर से 31st जो 6 दिन वो हमारे घर पे रहा, तभी थोड़ा फासला कम हुआ मेरे और डॉग के बीच में। मेरे हस्बैंड उसको ध्यान रख रहे थे, बहुत छोटा पपी था, 20-25 दिन का। एंड जैसे वो हमें क्रिसमस इवनिंग को मिला था और उसके फोरहेड पे एक अच्छा सा तिलक जैसा बना हुआ था व्हाइट कलर का, सो माय हस्बैंड्स थियरी वाज कृष्णा कम क्राइस्ट, सो उसका नाम क्रिस रखा हमने।
0: वाओ।
1: एंड वो क्रिस जाते जाते जब देखा, एंड आई वाज इन माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी, मदरहुड की इंस्टिंक्ट, पता ही नहीं चला कब वो मेरा पहला बच्चा हो गया। एंड ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। जब क्रिश आया उसके बारे में पता चला, ऐसे कितने सारे पप्पी होते होंगे जिनको घर नहीं मिलता है, जो अपने माँ से बिछड़ गए होंगे, अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते, इतने छोटे कि वो बिजी स्ट्रीट पे रोड पे सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका क्या होता होगा। क्रिश को हम मिले, हमको क्रिश मिला, हमने एक दूसरे को रेस्क्यू किया, अच्छा हुआ। लेकिन इसके ये एक आई ओपनिंग जर्नी था टू बिगिन दिस पार्ट। उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक। जब भी जो पपी मिला माँ से बिछड़ा हुआ, जो एक डेढ़ महीने से छोटा है, सर्वाइव नहीं कर सकता है, अकेले है, बिजी स्ट्रीट में है, एट अ टाइम उसको मैं पिक करने लगी, उसको फॉस्टर करने लगी और एडॉप्शन डालने लगी। जैसे एडॉप्शन डालने लगी तभी एक चीज आता था कि इसको मैं अच्छे से हम लाते पालते वैक्सीनेट करते सेफ्टी प्रोवाइड करते और देते, तब ऐसा लगता है कि दिल का टुकड़ा दे रहे हो। तो ये जिनको देते हैं हम, जो घर पे वो जाता है वो फैमिली का पार्ट बना के रखेंगे, पूरी लाइफ देखेंगे, तभी वो उसके लिए सारे अडॉप्शन गाइडलाइंस जो AWBI के वेबसाइट पे है उसको फॉलो किया, पढ़ा, उसको समझ के उसको फॉलो करके देने लगे। आज अगर मुड़ के देखूं तो ये 500 पेट्स जो भी घर में गए, मुझे वो फैमिली सारे पता है, उन पेट्स उन्होंने पेट्स को कैसे रखा है, वो कैसा हिस्सा है, वो फैमिली हमारे लाइफ के कैसे हिस्से बन गए। इट इज ब्यूटिफुल जर्नी टू बी फ्रैंक। एंड एक ही था कि जो स्ट्रीट पे इतने ठोकर खा के बिना खाना पीना कभी इतने मौसम के उतार चढ़ाव में ऐसे सर्वाइव करते, वही इंडी डॉग को थोड़ा प्यार और सेफ शेल्टर एंड फूड डगल मिलता है, हेल्दी फूड एंड वाटर, देन दे कैन डू ब्यूटिफुल एज अ पेट। सो व्हाई नॉट टू बिगिन दिस, वही एक मोटो था। एंड क्रिस के आने से पहले लाइफ इतना ही था कि ऑफिस गए, फैमिली, हमारा त्योहार, हमारा काम, यू नो नॉर्मल लाइफ व्हाट यू कॉल ऑफ एन ह्यूमन। In fact, I would say I was a pretty selfish cocoon life of myself. ये बोल सकती हूँ मैं। उसके आने के बाद पता चला लाइफ में पर्पस क्या है, he defined a purpose for it. एंड ये भी उसने मुझे सिखाया कि सिर्फ लेना या मांगना या उम्मीद रखना नहीं होता है, देना भी आना चाहिए। ये सोसाइटी को, ये इसमें हम क्या देते हैं, हम किसको देते हैं, हम किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो भी नेसेसरी है। एंड मैंने to do a little bit being a part of this universe

0: मैंने ये रास्ता चुना, नाउ दे आर पार्ट ऑफ माय लाइफ, ऑल दिस पप्स एंड रेस्क्यूड डॉग्स।
1: ब्यूटीफुल मैम, कितनी यूनिक जर्नी थी, कहां आपको पेट्स पसंद नहीं थे, डॉग्स पसंद नहीं थे, एंड देन वन रेस्क्यूड पप चेंज्ड योर एंटायर कोर्स ऑफ लाइफ। और जैसे आपने बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन कही, आपने उसे रेस्क्यू किया और उसने भी आपको रेस्क्यू किया। तो क्रिश, एक तरह से आई थिंक इट वॉज एक्चुअली जस्ट गॉड सेंट, जो आपकी लाइफ में आना ही था, वो डेस्टिन था, ताकि आपको अपनी लाइफ का ये पर्पस मिल सके, विच इज परहैप्स द बिगेस्ट एंड द ट्रूएस्ट पर्पस एनीबडी कैन डू एंड गिव इन दिस लाइफ, टू सर्व दीज एनिमल्स जो बोल नहीं सकते, जो खुद के लिए कर नहीं सकते। और इतने सारे देन यू नो पप्स को घर दिलवाना और इतना बारीकी से इस काम को करना, इतने एहसास के साथ, इतनी सटीकता के साथ। तो जो रूल्स आपने हमें मेंशन किए, वो क्या कहते हैं? अगर अडॉप्शन के कुछ रूल्स हों, वो अगर आप साझा करना चाहें, तो वो क्या कहते हैं, किस तरह से ये, और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू हुई, हैश अडॉप्ट डोंट शॉप, ये किस तरह से इसका बीज डला, इसका नाम आया, अगर आप कुछ बताना चाहें।
0: डेफिनेटली कोई भी प्रोसेस जब हम ज्यादा इसमें करना चाहते हैं, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ प्रोसेस। और ये इसीलिए क्योंकि रेस्क्यू करना एक है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद उनकी पूरी जिंदगी हमारे हाथों में होती है। वो कहाँ सेफली रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके घर में पलते हैं, और कैसी फैमिलीज है जो उनको अच्छे से रखेगी, कहीं अबेंडन नहीं करेगी, आधे से पालने के बाद छोड़ नहीं देंगे रोड पे या फिर किसी और को नहीं दे देंगे। ये सब नेसेसरी था कि उनकी पूरी लाइफ की सेफ्टी हम कवर करें। तब लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, रूल्स सेट हो, और हमारे इंडियन AWBI का इतना ब्यूटीफुली सेट आउट ऑल रूल्स है, वो सब पढ़ के हम उसको फॉलो करके उसके हिसाब से चले। तो
1: अगर इसका फुल फॉर्म हम जान सके मैम थोड़ा सा,
0: एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज
1: AWBI,
0: एंड करेक्ट, ऑनलाइन यू कैन चेक ओवर देयर, वी हैव अ गुड गाइडलाइन सेट एंड टाइमली रिव्यूड। उसको सब नॉर्मल पब्लिक को भी ये पढ़ना चाहिए। मैं अगर आप मुझे पूछो तो बच्चों को ये वाला इवन स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको पता चले एनिमल्स के क्या राइट है, उनके लिए हम कैसे वॉइस रेज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम।
1: एब्सोल्युटली।
0: एंड बस यही प्रोसेस सेट करने के बाद कोविड का टाइम आया। हाँ, कोविड में बहुत सारों को पेट चाहिए था, लेकिन कौन कैसे रखेगा, वो सीरियस है नहीं है, कोविड हटने के बाद, कोविड का डर उठने के बाद, सेफ्टी जोन में आने के बाद, फिर भी वो कंटिन्यू करेंगे ये पेट पेरेंटिंग की जर्नी, ये सब देखना बहुत जरूरी था। इसीलिए हमने तभी वो सेट किया ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई ऑल्सो बिलीव इनको एक जगह पे, ऐसे एक रूम में एक जगह पे जमा करके उनको ऐसे रख दो, और उनका क्या बोलते हैं, ऐसे सिर्फ खाना पीना दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं चलता है। ये छोटे पपीज थे, उनका ऐसे ही देखभाल होता है, उनकी टेम्परेचर मापी जाती है, उनको भी फीडिंग बॉटल फीड की जरूरत होती है, उनका सोना, उनका इनपुट आउटपुट, एवरीथिंग वॉज हेल्थ वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल टू मेक देम सर्वाइव फर्स्ट 1 or 2 months। इसीलिए इंडिविजुअल फैमिलीज को ढूंढना पड़ा हमें, जो पैसों के लिए या इसके लिए नहीं, बट दिल से हेल्प करना चाहे, हमारे साथ जुड़ना चाहे। तो बहुत सारे वॉलंटियर फैमिलीज आए आगे, ऐसे ही 4-5 वॉलंटियर फैमिलीज, वो लेडीज, वो कपल्स आगे आए टू फॉस्टर देम। वो 1-2 महीने रखते हैं इनको, अच्छे से पालते हैं, खाना पीना इनको तंदुरुस्त बनाते हैं, पहला वैक्सीन हम देते हैं, देखते हैं फॉस्टर फैमिली से उनके बारे में पूछते हैं, पपी कैसा है, हाइपर है, खेलता है, दांत आया है, सोता है, उसको और कोई मेडिकल या ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या है, सब पहले से उसको ह्यूमन हैबिटेट में प्रैक्टिस करवा के बाद में हम परमानेंट फैमिली या अडॉप्टिंग फैमिली ढूंढते हैं, सो दैट अडॉप्ट करने वाले का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उनको कोई बीमार
1: शॉकर्स नहीं मिले,
0: शॉक नहीं, एग्जैक्टली शौक ना हो, उनको भी कोई दिल दुखने वाली घटनाएं ना हो, जैसे वो गया सडनली उनको पता नहीं है उसके हेल्थ के बारे में। ये सो हम वैक्सीन देने के बाद जब हमें गारंटी होती है कि उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, दे विल सर्वाइव एंड थ्राइव हेल्दी इन द परमानेंट फैमिली, देन वी स्टार्टेड। सो डिफाइनिंग दिस प्रोसेस वॉज एन एक्सपीरियंस जो हमने सीखा।
1: और ये बहुत सही बात आपने कही कि इसके रूल्स को, इसके गाइडलाइंस को, इसके एसओपीज को एक्चुअली स्कूल के करिकुलम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमें सच में एट दिस एज ऑल्सो मुझे नहीं पता कि एनिमल वेलफेयर के क्या राइट्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं, किनको आप इन्वोक कर सकते हैं अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स को परेशान करता है, उन पे क्रूल्टी करता है, उनको स्टोन थ्रोइंग करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे आसपास, बट हम बिल्कुल अनअवेयर है एज सिटीजन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमें हमारे साथ साझा की कि हम जाएं और पढ़ें ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको एक बार स्क्रोल थ्रू करें और समझें कि एनिमल्स के क्या राइट्स हैं, ताकि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकें और एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट कर सकें स्ट्रेज के लिए। आगे चलते हैं मैम थोड़ी सी मस्ती भरी बातों के बीच। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिश के साथ, क्रिश के आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए और उसके साथ कौन से ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स थे जो आज भी आपकी आंखों में खुशी और आंसू साथ ले आते हैं?
0: क्रिश की लाइफ स्पैन तो कम थी, ही स्टेड विद अस ओनली 6.5 इयर्स।
1: ओके,
0: बट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब my daughter was born, Krish was around 8 months. और उसके लिए वो ऐसा था कि कोई नया खिलौना है या क्या है, ये हाथ पर हिलाती है, क्या करती है बच्ची, क्या कर रही है। एंड लेकिन बस उनका एक डिफरेंट बॉन्ड होता है बच्चों का और डॉग्स का। जब मेरी डॉटर को मैं ऐसे सुला के बेड पे, व्हेन शी वाज फ्यू मंथ्स ओल्ड, 3 to 4 months, क्रिश उसके बाजू में ही बैठा रहता है। वो थोड़ा सा बेड के कॉर्नर में आती तो वो बाक करता, मुझ पे चिल्लाता कि ध्यान दो जल्दी से। उसका थोड़ा सा ऐसे हिलती, वो थोड़े रोने जैसे होती तो वो तुरंत अलर्ट हो जाता क्या हो रहा है। हम बोलते हैं कि बच्चों को नुकसान हो सकता है, काट लेंगे, ये वो, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना सिखाओ और उनको खाना पीना वैक्सीन दो, उनको भी एक सेफ प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करो। बच्चे और डॉग्स जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या बच्चे और कोई भी एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो देखने की खुशी कुछ और होती है। वो आई कैन, माय वर्ड्स विल फेल, आई कैन नॉट पुट प्रॉपरली इन द वर्ड्स आई कैन से, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू लुक एट देम, टू बी पार्ट ऑफ टुगेदर।
1: जी जी, अभी हम एक बहुत खूबसूरत सा गीत सुनेंगे इन प्यारी बातों के बीच, और उसके बाद मैं इसी पे आना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि जब आपके घर में क्रिश आया तब उस टाइम आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो प्रैक्टिकली योर बेबी एंड क्रिश ग्रू टुगेदर। तो मैं ये बहुत कीनली जानना चाहूंगी कि किस तरह से एक न्यूबॉर्न के आसपास एक पेट का रहना कैसा होता है, कैसे वो बड़े होते हैं। बट पहले हम एक गीत सुनेंगे आपकी फरमाइश पे। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मेरा फेवरेट गीत होगा वो चार्ली का, चार्ली 777।
1: गीत का नाम,
0: यू कैन प्ले एनी सॉन्ग ऑफ चार्ली, वो इमोशनल ट्रैक जो है चार्ली का।
1: ओके, तो चलिए सुनते हैं चार्ली 777 का ये ब्यूटीफुल सा गीत।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मेघा मैम। आगे चलते हैं। जैसे मैंने सॉन्ग के ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि किस तरह से एक न्यूबॉर्न बेबी एंड देन एक चाइल्ड के अराउंड एक पेट का होना किस तरह से उसको डिफाइन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं बच्चों के अराउंड पेट्स को, जब यू नो फॉर एग्जाम्पल अ मदर इज एक्सपेक्टिंग, तो बहुत घर में डिस्कशन होता है कि अगर ऑलरेडी एक पेट है तो यू नो शुड वी डू अवे विद द पेट, क्या वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्या वो उसकी ग्रोइंग अप के लिए अच्छा होगा। मैं बहुत पर्सनली एक फ्रेंड को जानती हूँ जिन्होंने ये पूरा यू नो ये डायलेमा सफर किया और अल्टीमेटली उनको अपने पेट से दूर होना पड़ा, उनको अपने पेट को किसी को अडॉप्शन में देना पड़ा जब वो खुद प्रेग्नेंट थे। तो बहुत सैड था वो मोमेंट उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए जिनके साथ वो पेट बड़ा हुआ। तो इस पे अगर आप थोड़ा लाइट थ्रो करें मैम।
1: डेफिनेटली, मैं एक चीज में बहुत लकी थी। माय गायनेकोलॉजिस्ट वाज वेरी वेरी नेचर ओरिएंटेड, एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अलोंग 30-40 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस शी हैड इन हर फील्ड। उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, जो नेचर करेगा वो कोई दवाई नहीं कर सकती है। सो वॉट एवर वी डू मेडिकली इन मॉडर्न मेडिसिन और दिस, अगर आपको याद हो इफ यू गो बियॉन्ड 50-80 इयर्स के पहले, लेडीज गाय भैंस बकरिया बिल्ली कुत्ते इन सब के बीच में तंदुरुस्ती से घर का काम करते हुए उनकी डिलीवरीज काफी हेल्दी एंड पौष्टिक होती थी। हमारे पास अभी मॉडर्न मेडिसिन का एक स्ट्रेंथ है, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक है, मोर नॉलेज शेयर करने वाला सोशल मीडिया है, सर्कल्स है, सपोर्टिव सर्कल्स है, सब है। उसमें एक चीज ये नेचर का भी एक ऐड कर लो और भी ब्यूटीफुल हो जाता है मदरहुड जर्नी। एक चीज इम्पोर्टेंट है, जब आसपास हो वो सिर्फ डॉग्स का नहीं, कोई भी हो, इवन हमारे घर में किसी को खांसी होती है, फैमिली मेंबर्स को खांसी होती है तो बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन थोड़ा दूर रहो क्योंकि नाजुक होता है ये समय। सो हम क्या उनको बाहर भेज देंगे? नहीं। अगर हमारे घर में कोई ऐसा हो जिनको टर्मिनल इलनेस हो, तभी प्रेगनेंसी के टाइम पे हम क्या उनको कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रोन टू एलर्जीज हो, हम क्या उनको दूर कर देंगे? नहीं। पेट्स फैमिली का हिस्सा है, उनको ये खुशी में शामिल करना हमारा ड्यूटी है। और यहीं से फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉरालिटी वो न्यूबॉर्न के लिए स्टार्ट होता है। एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बच्चों को बच्चों के साथ रख के ही पाला जा सकता है, उसको बच्चा समझना पड़ता है घर का और वैसे ही, और उसको भी हेल्दी बनाना पड़ता है, उसको वैक्सीनेट करके रखो, उसको साफ करो। हाँ, बाल दिखते हैं बच्चों के आसपास या प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास बाल है, हेयर फॉल है, ये सब सुनते हैं, उनका ग्रूम कौन करेगा? आज हमारे बच्चों का ग्रूमिंग कौन करता है? हम ही करते हैं ना, उनके बाल तो मैं ही बनाती हूँ, मेरी लड़की के बाल मैं ही बनाती हूँ, उसके बाल ठीक हो वो नहाती है, वो मेरा ड्यूटी है। तो मेरे पेट्स नहाते हैं, वो साफ है, उनके वो भी हेल्दी है, वो भी हाइजीनिक है, उसकी ड्यूटी भी मेरी हुई, हम उनको तो कंप्लेन नहीं कर सकते। सो यस, दिस इज अ बिगिनिंग, इट्स अ लेसन, इट्स अ जर्नी,
0: इट्स अ पर्सपेक्टिव चेंज, आई थिंक इट्स अ पर्सपेक्टिव चेंज। यस यस, ब्यूटिफुल। तो ऐसा कभी हुआ कि आपके यू नो आपका चाइल्ड जब बड़ा हुआ, आपकी डॉटर जब बड़ी हुई, तो उसने कुछ लेसन्स लर्न किए, क्योंकि नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है जब घर में पेट होता है, तो ऐसे कोई मोमेंट्स जहां पे आपको लगा कि आपके बच्चों में बहुत सारी और वैल्यूज एड हुई हैं उस पेट के घर में आने से, तो अगर वो शेयर करना चाहें?
1: हाँ, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। क्रिश के आने के बाद एक बार ऐसा हुआ, 15-20 दिन समझ लो क्रिसमस के बाद, 20 डेज अप्रोक्सीमेटली, 15 जैन को एक कॉल आया मुझे कि किसी ने पटाखे जला के एक सीनियर डॉग 4-5 इयर्स ओल्ड डॉग को उसको हार्म किया है। उसको 3 डिग्रीज पूरे बर्न्स हो गए, चमड़ी निकल गई है ये, एंड तभी कुछ तो लगा। बड़े कुत्तों को छूने की अभी भी मुझे आदत नहीं थी। ऐसे 20 दिन आ गया था, वो मेरे साथ बैठता था, गोदी में बैठता था, एक एक बॉन्डिंग बिगिन हो गई थी. लेकिन बड़े कुत्ते को कैसे रेस्क्यू करते, उतनी हिम्मत होगी मेरे में, वो नहीं पता था. बस और फर्स्ट ट्राइमिस्टर में था, मैं ऐसे ही ऑटो लेके चली गई, वहां पे उठा के उसको ऑटो में डाला एंड उसको वेटनरी के पास ले गई. एंड जब मैं उसको उठा रही थी, थोड़े लोगों ने हेल्प किया और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया, मैडम ध्यान से, ये तो बहुत एग्रेसिव है, ये तो ट्रक्स के पीछे सब भागता है, ये दो चार लोगों को भी उसने काटा है, यहाँ यहीं पे रहता है, सब ध्यान से करो. मंदिर के बैक गेट में वो सोया हुआ था, बनशंकर के मंदिर के, और मैं उठा के उसको ले गई. आप मानो या ना मानो, उसका उसका फेस उसने मेरे तरफ ही रखा था. एक भी बार उसने दांत दिखाया, दांत बताया, कुछ नहीं. उसको पता था कि उसको हेल्प चाहिए और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ. काफी समझदार होते हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं. उस दिन ले गई, उसको रेस्क्यू किया. 20-25 दिन हुए उसको ठीक होते, खाना खाते स्टार्ट करते, ड्रिप्स से बाहर निकलते. उसको स्लो रिकवरी थी बट ही रिकवर्ड. एंड पूरी प्रेगनेंसी आफ्टरनून जब मैं खाना खाती थी, अपना ऑफिस का काम खत्म करके एक घंटे का ब्रेक लेके मैं अपना खाना खाती थी, तो मैं ऑटो पकड़ के जाती, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पे, उसके लिए टिफिन कैरियर ले जाती, उसके साथ बैठती, उसको खिलाती और आती. और ये मैंने तब तक किया जब तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ा गोइंग फॉर अ डिलीवरी. डिलीवरी टाइम पे भी मैं बता के गई थी अपने हस्बैंड को कि 3-4 दिन मैंने आया इन हॉस्पिटल, आप फीड करो उसको, वो ये देखेगा. एंड एक ब्यूटीफुल मेमोरी है, वो बोलते हैं ना 25 दिन या 41 डेज के बाद ही प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे को निकलना चाहिए. सो जब मंदिर जाने का परमिशन मिला बच्चे को, उसको मैं 41st डे पे, After my daughter was 41 days old, when I took her to temple, उस दिन रात को मैंने उसको बोला, आज पहली बार एक स्पेशल लाइफ फ्रेंड्स से मिलवाऊंगी करके. एंड आई टुक हर ऑन दैट डे नाइट टू मीट द डॉग. दैट डॉग इज हैड रेस्क्यूड एंड एवरी डे नाइट माई हस्बैंड यूज टू फीड एंड आफ्टरनून आई यूज टू फीड. तब तक वो काफी हेल्दी हो चुका था, 6-7 मंथ्स हमने उसका केयर किया था. एंड वो इतना खुश हो गया मुझे और पपी को देख के, क्रिश को देख के, आना को देख के, वो ऐसे राउंड राउंड घूम के खुशी अपनी जाहिर कर रहा था. मैंने उसको बच्चा बताया, ही लिक्ड हर लेग. एंड व्हेन माय डॉटर बिगेन टू वॉक, अंडरस्टैंड एंड टॉक, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हम रोज रात को बनशंकरी में खाना खिलाने जाते हैं रोड पे, वो मेन स्ट्रीट जो है टेम्पल वाला रोड वहां पे. सो वो जब बोलना उसने शुरू किया, उसने पहले ही यही चिल्लाना स्टार्ट किया. वो भी हमारे साथ रोज रात को आती थी, हम उसको बेबी सीट में बिठाते, वो देखती कि सारे डॉग्स आते हैं खाना खाते, वो लोग उसको देखते खेलते. कभी कभी कार का डोर में ओपन रखती, वो आके मिलके जाते बच्चे से. एक दिन एक एपिसोड नहीं हुआ उसके साथ, एक काटना, एक दांत लगना, कुछ नहीं हुआ. वो सबको छूती थी, मैं उसका हाथ साफ करती थी पूरा फीडिंग होने के बाद, उसने अगर उनको टच किया उसको क्लीन करती थी. इनको भी बाहर पूरी क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करते थे, बट उनको उनकी बॉन्डिंग बनाने दिया. एंड वो जाके रोड पे जोर से चिल्लाती, उसका नाम हमने राजा रखा था क्योंकि बनशंकरी का राजा जैसा था वो, व्हाट यू से, अल्फा अल्फा नेचर
0: अल्फा डॉग
1: अल्फा डॉग. एंड इसलिए वो राजा अन्ना करके बुलाती, वो जो से चिल्लाती, छोटी बच्ची थी, राजा अन्ना करके जो से. और राजा ऐसे आता कि मेरा मेरे लिए आए, उसको इतना अच्छा लगता, वो भाग के आता कार के पास. यस, तो ये एक ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है जो बच्चे और डॉग्स में हमें देखने के लिए मिलता है. और ये पूरा सब क्रेडिट जाता है क्रिश को, उसी ने मुझे सिखाया एंड उसी ने आरना को सिखाया. आरना इज माय डॉटर, सो यस, उसी ने उसको भी सिखाया.
0: राइट राइट, बिग हेलो एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू आरना, जिनकी पास इतनी खूबसूरत, इतनी रेजिलियंट, इतनी ब्रेव, इतनी करेजस मदर है, जो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग है और इतनी क्लियर है अपने थॉट्स और अपने पर्पस के लिए. सो कंग्रेचुलेशन.

0: Sarna, I hope you also grow up to be as amazing as your mother. And lots of love, lots of blessings to you from entire SN Radio family. And kya Raja abhi bhi hai ma'am? Is he still there?
1: Raja abhi bhi hai.
0: Oh, amazing.
1: और 9 years हम रोज राजा से मिलने जाते थे.
0: What a bond.
1: 3 साल पहले ऐसा हुआ कि उसके उसको हर्ट हुआ था. पूरी रात हम घूमे, 4 बजे तक सुबह ढूंढते रहे. वो बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ, वो नहीं मिला. थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन सुबह पता चला किसी ने उसको नियर बाय वेटरनरी में एडमिट किया था, क्योंकि उसको एक्सीडेंट होके उसको आंखों में लग गया था. आज वो लव फॉर फॉरगॉटन नाम के एक शेल्टर में रहता है. मंथली वी हैव पैसिवली अडॉप्टेड हिम. तो महीने में 2 से 3 बार हम वहां जाते हैं. कोई भी त्यौहार हो, आरना का बर्थडे हो, मेरे दूसरे पेट्स का बर्थडे हो, हमारा वहां जाना होता है. कभी भी मेरा मन थोड़ा भारी लगता है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस होता है रेगुलर लाइफस्टाइल से पूरा, तो जाके बैठना है किसी फ्रेंड के साथ, तो मैं राजा के साथ जाके LFF में बैठती हूँ. मेरी बेटी को अगर आप संडे सैटरडे पूछोगे कि फ्री हो कहीं घूमने जाना क्या, तो वो पहले यही बोलेगी LFF जाना है, राजा से मिलना है, सारे फ्रेंड्स से मिलना है. उसको आदत है शेल्टर विजिट करना, वहां पे जाना, खेलना. तो राजा अभी भी है एंड राजा आज भी वही खुशी से देखता है बच्चे को. वो दोनों बहुत खेलते हैं. वो राजा को इतना प्रेम से ऐसे घुमाती है, खेलती है. आज भी वो उसको राजा अन्ना बुलाती है एंड स्टिल दैट बॉन्डिंग कंटिन्यूज एज इट इज एंड इट्स नाइस टू सी 9 years एंड टचवुड. आई वांट हिम टू बी हेल्दी.
0: या टचवुड. लॉट्स ऑफ लव टू राजा अन्ना एंड लॉट्स ऑफ good times to Raja Anna. May his brave soul, may his brave spirit maintain and he live to be 10 more years. And बहुत ही खूबसूरत आपने anecdote हमारे साथ साझा किया, कैसे आपकी daughter और Raja Anna और Chris सभी साथ में बड़े हुए और बहुत ही beautiful moments उन्होंने share किए. मैम, अगर मैं pet care के लिए, अब बहुत सारे लोग जैसे अडॉप्ट भी करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए होंगे इन 10 सालों में, तो कोई अगर ऐसी टिप्स हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जो हर पेट पेरेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी होंगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी पेट केयर की बातें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं, अगर वो आप शेयर करें.
1: वन थिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल इज कमिटमेंट. कमिटमेंट मीन्स जैसे हम अपने पेरेंट्स को कभी लाइफ टाइम छोड़ नहीं सकते, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हमारे भाई बहनों को नहीं छोड़ सकते, हमारे अच्छे फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते, वही भावना अगर आपको आपके पेट के प्रति है, लाने के बाद आप वही कमिटमेंट मेंटेन करोगे. आप देश बदलते हो, शहर बदलते हो, जॉब बदलते हो, कुछ भी होता है, आप उनके लिए एक ऑल्टरनेट सेफ प्लेस भी रखोगे. कल को हमें कुछ हो गया, बच्चों को कौन देखेगा, जैसे हम पेरेंट्स सोचते हैं वैसे ही वो पेट को कौन देखेगा, उनका फ्यूचर क्या होगा. ऑल ऑल्टरनेटिव, ये कमिटमेंट होना चाहिए. कमिटमेंट इज नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि एक बार पेट होने के बाद वो शेल्टर्स में या फिर स्ट्रीट्स पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. स्ट्रीट पे पलने वाले बच्चे पहले से स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो पैक में पलते हैं, पैक उनको सिखाता है और उनको वो ट्रिक्स एंड ये सब आते हैं. जो पेट होते हैं वो ट्रिक्स नहीं सीखे होते उन्होंने. सडनली ऐसा मत समझो कि हाँ इंडियन डॉग है, हिंदी है, छोड़ दो, गली के कुत्तों के साथ रह लेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो कुत्ते इसको नहीं अपनाते, ये स्ट्रीट को नहीं अपना पाएगा. एक व्हीकल या एक ट्रैफिक से टकरा जाएगा सडनली, उसको पता भी नहीं चलेगा. तो एक ही चीज है, वो आपको पूरी लाइफ कमिट करके वो आपके साथ रह रहा है, वो कमिटमेंट को हमें भी रखना है. सो यस, कमिटमेंट इज नॉन नेगोशिएबल इन दिस केस.
0: एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली आंसर. बहुत विजन के साथ आपने इसका आंसर दिया, सरल सटीक और बिल्कुल विजनरी, कि ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. आज लिया, शौक पूरा किया और कल वापस छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है. तो मैम, चलिए सुनते हैं एक और गीत आपकी फरमाइश पे, इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी बातों के बीच. बताएं.
1: श्योर. ये पूरा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ, दिस वॉज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ माई मदरहुड. सो आई समटाइम वेन आई रिमेम्बर क्रिश, फ्यू सॉन्ग्स आई रिमेम्बर, दे पुल माई मदरहुड स्ट्रिंग्स, यू नो, वेरी स्ट्रांगली. एंड वन इज दैट गगनतू फ्रॉम KGF.
0: ओ वाओ, ब्यूटिफुल सॉन्ग. तो चलिए सुनते हैं गगन 2 फ्रॉम KGF.

0: आगे चलते हैं मैम, क्या कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आता है जब घर में ऐसा लो सा माहौल था और उस समय आपके पेट्स ने, आपके जो अडॉप्टेड पेट्स हैं या जो आपके सेंटर में पेट्स आते हैं उनके साथ उन्होंने कभी सेंस की हो वो एनर्जी कि आप लो हैं या घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, तो कुछ ऐसा मोमेंट जो आज भी आपको याद आता है कि आपके पेट ने कोशिश की हो आपको यू नो टू स्प्रिंग यू बैक इन टू लाइफ एंड टू चीयर यू अप, तो ऐसा कुछ?
1: डेफिनेटली क्रिश के जाने के बाद थोड़ा अजीब सा था. एंड जब क्रिश 2 साल का हो रहा था और आधना 1 साल की हो रही थी क्लोज टू, तभी एक हमारे लाइफ में एक चुलबुली सी एंट्री हुई थी टिकटॉक की.
0: टिकटॉक
1: यस, एंड इंडी फीमेल गर्ल. ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मंडे था, शिवजी के हम दोनों शिवजी के पूजा में बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड. एंड क्विकली हमने 5-10 मिनट्स में पूजा खत्म कर, निकल नहीं पा रहे थे कि कॉल आया कि एक पप्पी रोड पे घुस गया, बड़े डॉग्स उसको घेर के खड़े, क्या करना है करके एक नेबर से कॉल आया. तो नीचे गए, तभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, ऑफिस के लिए निकल रहे थे. उसको उठा के रूम में रखा, हमारे बेडरूम में खाना पानी सब रखा और डोर क्लोज किया एंड हम निकल गए. एंड ऑफिस में शाम को आके देखा, हाँ रूम तो क्लीन करना पड़ा, बट बाद में पता चला फीमेल डॉग है, 2 मंथ्स ओल्ड, फुल कंप्लीट जेड ब्लैक एंड कोट एंड वेरी वेरी प्लेफुल, वेरी वेरी नॉटी. एंड ऑपोजिट एंट्री क्रिश, एक सोफिस्टिकेटेड पूरा ऐसा ह्यूमनाइज बच्चा जैसा पला था, क्योंकि और ये ऑलरेडी शी वॉज इन दबांग गर्ल,
0: राइट.
1: सो एक महीना रखा एंड मैंने उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया एडॉप्शन के लिए. 2-3 बहुत अच्छी फैमिलीज आई. हर बार जब फैमिली आती तब मेरे हस्बैंड बोलते नहीं ये नहीं, नेक्स्ट देखते, ये नहीं कब, थोड़े दिन बाद देखते थोड़े दिन. फाइनली मुझे उनको पूछना पड़ा कि वाई ही इज अवॉइडिंग हर एडॉप्शन व्हेन वी आर गेटिंग अ गुड फैमिलीज. तब उन्होंने बोला एक वी बोथ वांटेड ऑलवेज टू गिव होम टू अ डॉटर, अ फीमेल वी वांटेड टू अडॉप्ट. एंड उन्होंने बोला 2 पैर हुए तो क्या हुआ, 4 पैर हुए तो क्या हुआ, इतनी अच्छी बच्ची है हम क्यों नहीं रख सकते. प्रिपेयर तो हम नहीं थे ऑलरेडी, 2 साल का एक, 1 साल का है और इसमें ये 2 महीने की, तीनों का तो ओ माई गॉड, हाउस ऑन फायर. बट क्रिश वॉज एन प्रोटेक्टिव एल्डर ब्रदर, देन टिकटॉक वॉज दैट फ्रेंडली नोटोरियस सिस्टर कंपनी,
0: द यंगर सिबलिंग.
1: ये दोनों मस्ती करते थे, वो बाग करके ऐसे ऊपर से ऐसे बच के बैठ जाता था. सो हाँ, घर थोड़ा गंदा रहता था, यहाँ वहाँ खिलौने गिरे रहते थे. तीनों जब सोते थे तभी घर आराम
0: शांत होता था,
1: शांत होता था. बट ये अलग है, ये वाली फीलिंग अलग होती है और वो देखना अच्छा लगा. सो टिकटॉक जब पार्ट हुई, हमेशा से वो ऐसे हैप्पी रहती थी, बट जब क्रिश बीमार हुआ वो 1-2 महीना हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था. एंड में उसको खोलने के बाद तो ऐसा लगा था मुझे कि मेरे लाइफ का बहुत मेजर पार्ट गया, बिकॉज उसी ने सब लिखा था, उसी ने सब सिखाया था. उसके बाद तो बहुत एमलेस थी मैं कि अब क्या कैसे. तब टिकटॉक ने हमें संभाला. आप मानो या ना मानो उनको समझ में आ जाता है कौन सी सुख की घड़ी है कौन सी दुख की. वो आके शांत से हमारे बाजू में, शी विल कीप हर फेस ऑन अवर लैप, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ बैठी थी. बहुत सन्नाटा होता था बिकॉज ऑफ द लॉस दैट वी हैड फेस्ड. वो आके बैठती, वो आके अपने खिलौने लेके आके हमें पुश करती कि खेलो मेरे साथ. एंड सडनली हमें ऐसे लगा जो जो क्रिश को अच्छा लगता था वो सब वो उसने अपनाया. क्रिश को ट्रैवल बहुत अच्छा लगता था, जब तक क्रिश था टिकटॉक को ट्रैवलिंग अच्छा नहीं लगता था. वो घर में रहना ज्यादा पसंद करती थी, अकेले भी चलेगा मुझे, ये मुझे घर पे छोड़ दो, मुझे ट्रैवल नहीं करना. लेकिन क्रिश के जाने के बाद अभी वो हमारे साथ सभी जगह पे ट्रैवल करती है, सभी जगह पे, हमारे डे टू डे लाइफ में, आना के क्लासेस में, आना के फ्रेंड्स को मिलने के लिए, कहीं भी हो, फैमिली वेकेशन, शी इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग, शी लव्स ट्रैवलिंग. वो पहले ऐसे खड़ी हो जाती है
0: कि मैं भी चलूंगी,
1: मैं भी. सो वो अपने आप को इतने अच्छे से ढाल लेते हैं. उनको जब पता आता है कि उनको एक रोल प्ले करना है हमारे लाइफ में, दे हैव टू रेस्क्यू, दे हैव टू सपोर्ट, दे डू इट सीमलेसली एंड ब्यूटिफुली.
0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. इसी से हम श्योर आपने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे होंगे, कुछ लाइफ लेसन्स सीखे होंगे इन पेट्स के अराउंड। तो अगर आप कोई दो लेसन्स मुझे बता सकें जो आपने अपने पेट से सीखे।
1: टू लेट गो एंड टू बी टू नॉट कीप ग्रजेस मेनली। अब एक बार उनको डांटोगे, एक एक ऐसे मारोगे कुछ गलती करने पे, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनको कितनी भी चोट लगी हो इसे, आप उनको थोड़ा आवाज दोगे या थोड़ा ऐसे पट करोगे, दे विल फॉरगेट इट, दे विल फॉरगेट द ट्रेन एंड गेट बैक टू।
0: एब्सोल्युटली फॉरगेट, यस यस।
1: हम लोग इतना इतना ये रखते हैं कभी कभी हेट्रेडनेस, वी फील सो मच विथ, दे ब्रिंग द प्योर लव, they don't have any grudges, anything, they don't plan for their future, they leave to their presence like anything,
0: truly
1: complete present mein. And second thing, unme jo inclusion hai hame nahi ho sakta, aap bahut sare pet parents se mil sakte ho, bahut sare people who have animals in farms, you can ask them, they all will vouch. Dogs, cats, pigs, cows, goats, they all can survive together. Why today human is getting so intolerant with surviving with these domestic animals?
0: Absolutely.
1: So they teach you and teach you in very basic inclusion.
0: Inclusion.
1: They have become the part of an global Vasudeva Kutumbakam. When we will be embracing that?
0: Absolutely. Absolutely. So beautifully put. Actually, they are the epitomes of being inclusive and being welcoming and being, you know, not holding grudges against each other and just being in the moment. So beautiful to watch them grow and be. तो बहुत ही खूबसूरत बातें मैम आपसे हो रही हैं। इन्हीं बातों के बीच मैं एक और सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूंगी आपसे।
1: When I meet Rajana, I like and I play this song sometime. हाँ, उनको इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको पता है म्यूजिक क्या होता है। वो सिर्फ he looks at me and we sit silently on a bench, we can say. I like this song, तेरे जैसा यार कहाँ।
0: Wow, lovely, beautiful. तो चलिए सुनते हैं तेरे जैसा यार कहाँ, राजाना के लिए, टिकटॉक के लिए, क्रिश के लिए और मैम के लिए।

0: बहुत ही खूबसूरत और एप्ट गीत है ये बिल्कुल। आखिर में मैम मैं आपसे दो सवाल और पूछूंगी। एक तो जाते जाते जो लोग सिर्फ एक एक अपने आप को सस्टेन करते हैं आसपास एनिमल्स के, आप उन्हें घर नहीं लाते, आपको शायद पसंद नहीं है, आप डरते हैं, बट क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम जैसे आपने कहा को एग्जिस्ट करना और इंक्लूड करना, तो उन लोगों के लिए जिनको ना पेट्स पसंद हैं या वो डरते हैं, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो, बीइंग अ पर्सन हु हैज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर ओन और जो इतना आई एम श्योर काम करते हैं टू रेस्क्यू एनिमल्स एंड स्ट्रेज, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
1: It is absolutely fine to have phobia. It is okay to fear sometimes because I have been there. Lekin ek cheez hum sabne sikhi hai. I'm sure every household has taught across the globe. Koi bhi parents hai, sab palte hue hum sabne sikha hai. Be kind. So achha na lagna ek hai. Nuksan pahunchana, unka bhura karna, वो गलत है। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ इट। नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, आप खाना नहीं दे सकते हो,

0: ठीक है, आप उनको घर नहीं ला सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन. सबकी सबकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे अवेलेबल नहीं होते कि वो कर सके ये सब. ठीक है, उनको पानी नहीं रखते हो, खाना नहीं देते हो, अच्छा नहीं लगता है, घर पे नहीं लाते हो, ठीक है. लेकिन वो जब रोड पे सोते हैं उनके ऊपर गाड़ी चला दो, एक बार हॉर्न ना मारो, थोड़ा देखो, उनको पत्थरों से मारना, लकड़ियों से मारना, गर्म पानी फेंकना, उनको पैरों से लात मारना, अगर वो बारिश में कहीं खड़े हैं, शेल्टर ले रहे हैं, उनको वहां से भगाना, ये सब इनह्यूमैनिटी है. सो वी कैन बी एटलीस्ट एन ह्यूमन, इफ नॉट एन इंक्लूसिव. वी नॉट बी अ डॉग पर्सन, वी नॉट बी एन एनिमल पर्सन, विच इज ओके, बट एटलीस्ट वी कैन बी अ ह्यूमन, राइट. सो ये एक चीज है कि जिनको अच्छा लगता है उनको भी मैं यही बताऊंगी कि जरूरी नहीं है सारे पेट को लाना है. एक टाइम आप ऐसे हाईवे पे जाते हो, हम लोग करते हैं, हाईवे पे जाते हो, एक दो बिस्किट पैकेट रखे, हाईवे डॉग्स को कुछ नहीं मिलता है, जंगल होते हैं, हाईवेज होते हैं, कोई खाना पीना कुछ नहीं होता है, कभी कभी दूर दूर तक कोई घर भी नहीं होता है उनको, कुछ नहीं मिलता है. तो थोड़े बिस्किट है, वो 5-6 बिस्किट एक कॉर्नर पे रखते जाओ, यू विल सी मेनी मेनी व्हाट यू से स्केलेटन डॉग्स विल कम एंड ईट लाइक एनीथिंग एज इफ दे आर नॉट मेट. उनको बहुत दिनों में, हफ्तों में वो एक ही एक खाना होगा जो उनको मिल रहा होगा.
1: बिल्कुल.
0: सो वो कर सकते हो. अगर खाना नहीं रख सकते हो, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, पानी रखो, एक बाउल, कोई भी एक बाउल, एक मटका पानी भर के आप रखो. इतना कभी कभी वेदर ऐसे वैसे होता है, उनको एक पानी मिलता है, काफी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: सो कुछ भी नहीं है, वो अगर आपके पास आते हैं, दे आर वैगिंग द टेल व्हेन यू आर वॉकिंग, डोंट शू देम, जस्ट लुक एट देम. इफ दे आर ओके विथ योर टच, इफ दे कम देमसेल्स नियर यू, पेट देम, दे डोंट नीड, दे आर ओके बींग हंग्री, ओके बींग थर्स्टी, व्हेन यू पेट देम देयर डे इज नीड.
1: That's enough.
0: Welcome them. That is enough. So we have many ways to be kind, and all this has been a part of our culture, of our society, of our upbringings. All of us have been taught this. We just forget this as we grow.
1: Truly. And become so self-centered and self-absorbed.
0: Exactly.
1: Yes.
0: Exactly.
1: Yes. Beautiful, ma'am. जाते जाते ऑफकोर्स हम बहुत डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट एक सरफेस व्यू अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर हाल ही में, उस पर अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और अगर आप उसे साझा करना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा?
0: पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सबको समझ में नहीं आया है. तो बहुत सारे लोग जो एनिमल को हेट करते हैं वो समझते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया उनको उठा के फेंक दो. नहीं, वो नहीं है. इट इज नॉट दैट. ओनली फ्यू प्लेसेस मेंशनड लाइक हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओवर देयर वेयर द क्राउड्स, ह्यूमन क्राउड्स गेट मोर दिस वन एंड मोर ऑफ एन वल्नरेबल पीपल आर देयर लाइक पेशेंट्स और किड्स हु आर नॉट फेमिलियर टू हैंडल, वहां से उनको निकालना है. उसका ये मतलब नहीं है हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, सोसाइटी से निकाल सकते हैं, आरडब्ल्यू में रूल्स बना सकते हैं. नहीं, ये गलत है. पहले रूल्स को समझिए, पहले ये कीजिए. सेकंड थिंग, आज ये चर्चा हो रही है, आप लोग अगर समझ रहे हो, जो जिनको डॉग्स अच्छे नहीं लगते अगर समझ रहे हो कि आप जीत रहे हो, नहीं, इसमें हार हमारी और हमारे सिस्टम की है, एनिमल्स की नहीं है. हमने उनको टाइम पे स्टरलाइज किया होता, हमने उनको अच्छे से वैक्सीनेट किया होता और रखा होता, देन वी वुड हैव बीन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी टुडे. हम फेल हुए यहाँ पे, वो फेल नहीं हुए. वो उनको नहीं पता है क्या करना है, उनको नहीं पता था कि हॉस्पिटल जाना है, खटखटाना है, ऑपरेट करवाना है अपने आप को, या फिर अपने को वैक्सीन लेना है. उनको नहीं पता था. हम फेल हुए यहाँ पे, तो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है इसमें. एंड थर्ड थिंग, ऐसा जब भी मेजर रेवोल्यूशन आता है, हमने बहुत सारे प्रोग्रेसिव कंट्रीज में देखा है कि लोगों के दिल बड़े होते हैं, खोलते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं. जहाँ ये लोग सफर कर रहे हैं, या जहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है कि उनको यहाँ से हटाना है और कहीं, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इनटू अ नॉन एग्जिस्टिंग और नॉट इवन फंक्शनल शेल्टर्स और विच इज नॉट इवन देयर, विच कैन अकोमोडेट द नंबर ऑफ स्ट्रेस टूडे वी हैव, आई वुड रिक्वेस्ट अवर पीपल, माई फ्रेंड्स एंड माई कंट्रीमैन टू ओपन देयर डोर्स लिटिल मोर काइंडर, बिकम लिटिल मोर काइंडर, ओपन. इतने डॉग्स नहीं है जितने हमारे घर है.
1: बिल्कुल
0: एक भी खोलेंगे, एक एक भी एक एक सोसाइटी खोलेगा, एक एक भी एक अपार्टमेंट में एक दो डॉग रखेंगे, वी विल सेव देम ऑल. न्यूटर करो, उनको वैक्सीनेट करो, उनको खाना पीना प्रोवाइड करो, उनकी पॉपुलेशन ह्यूमनली कम होती जाएंगी एंड हमारे बच्चे भी वही काइंडनेस साइंस से, साइंस थ्रू ये काइंडनेस मेंटेन करना सीखेंगे. एंड हम बच्चों के सामने मारपीट करके ये सब अनसिविलाइज्ड सोसाइटी उनको डिपिक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट शो देम दिस. वी नीड टू बिल्ड काइंड ऑफ सोसाइटी. यस,
1: ट्रू. ब्यूटिफुल मैम, थैंक यू सो मच. आपका मैसेज, आपकी बातें, आपकी सोच आई एम श्योर आज SN रेडियो के जरिए हमारे सारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक रिपल इफेक्ट होके जरूर होगा. यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी सोच है. क्रिश की यादें और आपका अडॉप्ट डोंट शॉप का संदेश हम सबके दिल में जरूर पहुंचा है मैम. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्रेरणादायक बातें, इतनी विजन बातें, इतनी खूबसूरत मैसेजेस हमारे साथ साझा करने के लिए.
0: थैंक यू.
1: तो दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर. आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग. याद रखिए, एक छोटा सा प्यार, एक छोटी सी कटोरी पानी, एक वक्त का खाना या अपनेपन की एक जुबान पूरी दुनिया बदल सकती है. अडॉप्ट इफ यू कैन and care always and सबसे ऊपर choose kindness. नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी pet story के साथ.
2: तो दोस्तों, आज के episode में बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी. अगर आपको हमारा program अच्छा लगा तो इसे जरूर share करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है. तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें. नमस्कार.

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
1: हर घर

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित

0: रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, सुभाष दीपक जी द्वारा लिखी हुई, बुआ जी। 4 बेडरूम का प्राइम लोकेशन पर बना हुआ वो एक शानदार मकान था, दूर से ही देखने वालों को आकर्षित करता था। इस मकान में रहती थी इंदिरा बुआ। अब आप पूछ सकते हैं, ये इंदिरा बुआ कौन है? हम बता देते हैं, इंदिरा बुआ वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बताने की यूं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी पहचान है। उनकी चाल ढाल, उनके बात करने का अंदाज, यहां तक कि उनकी मौजूदगी, और मौजूदगी ही क्यों, उनका जिक्र मात्र उनका पूरा इतिहास खोल के रख देता है। इतने बड़े मकान में इंदिरा बुआ अकेले ही रहती थी शुरू से, लेकिन ऐसा नहीं था। भरे पूरे इस मकान की चहल पहल में तमाम मोहल्ले के लोगों की दिलचस्पी होती थी। वहां क्या हो रहा है, कौन आया, कौन गया, सब में लोग नजर गड़ाए रहते थे। कहते हैं ना कि सब दिन एक समान नहीं होते। जाने विधाता की क्या मर्जी थी कि एक एक करके परिवार के सदस्य रुखसत होने लगे और इतने बड़े मकान में केवल इंदिरा बुआ ही रह गईं, और साथ में रह गया उनका सबसे छोटा बेटा। इंदिरा बुआ की बढ़ती हुई उम्र और उनके बेटे की कच्ची वय को देखकर उनके शानदार मकान को हड़पने वालों को चाले चलने के मौके मिल गए। पहले तो उन्होंने घर के बेटे को लपेटने की कोशिश की, लेकिन बुआ के कठोर अनुशासन के चलते वो सफल नहीं हो पाए। बस उसे उन्होंने नशेड़ी जरूर बना डाला। इसमें भी जब उनका मतलब नहीं निकला तो उन्होंने तड़कम लगाकर उसे जाने कहां गायब करवा दिया। बेचारी औरत जात बुआ ने भर कस हाथ पैर चलाए, लेकिन वो उसे ढूंढ निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार उन्होंने हथियार तो डाल दिए, लेकिन हालात को एक चुनौती के रूप में तब्दील कर डाला। अब उनका यह सिद्धांत हो गया कि अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम सबके हो जाओ, तुम्हारे पास कोई नहीं आता तो तुम सबके पास चले जाओ। वाह, यह फार्मूला कामयाब हुआ, और न केवल अपने मोहल्ले वालों के लिए बल्कि आसपास की कॉलोनियों में रहने वालों के लिए भी वो जरूरत बन गई। कोई भी बड़ा काम हो, चाहे शुभ हो चाहे गमी वाला हो, नेतृत्व करती हुई बुआ ही नजर आ दी। उनकी राय सर्वोपरि हो चली। एक बार उनके शहर में एक फिल्म की शूटिंग करने वाली यूनिट ने डेरा डाला। अब उसकी व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बुआ के मोहल्ले में ही रहता था। लोग लगे उसकी मन्नतें करने की उन्हें शूटिंग दिखा दे। बहुत शातिर था वो। उसने मौके का फायदा उठाने की नीयत से कुछ खूबसूरत सी दिखने वाली लड़कियों को बरगला लिया और उन्हें शूटिंग दिखाने के बहाने ले जाने का प्लान सेट कर लिया। बुआ जी को इसकी भनक लगने की देर थी कि वो भूखी शेरनी की मानिंद दहाड़ उठी। अरे अकल के दुश्मनों, क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें बेचकर वो खा जाता और सारी जिंदगी तुम अपनी किस्मत को कोसती रहती। लड़कियां तो संभल गईं, लेकिन बुआ यहीं नहीं रुकी। सीधे पहुंच गई फिल्म निर्माता के पास। उसे जाने क्या समझाया कि वो अगले ही दिन पैकअप का आदेश दे बैठा। कहते हैं बुआ ने उसे एक मंत्र का डर दिखाया था जिससे उसकी फिल्म हमेशा के लिए डब्बे में बंद होकर रह जानी थी। बात सब जगह फैल गई और बुआ के तकदीर के भी दरवाजे खुल गए। अब तो आए दिन बुआ के पास कोई ना कोई व्यापारी, तो कभी कोई साहूकार, तो कभी कोई सटोरिया बैठा ही मिलता। बुआ भी जबरदस्त नाटकबाज निकली। कुछ कौड़ियों को हाथ में घुमा घुमाकर पहले फेंकती और फिर एक रहस्यात्मक तरीके से मंत्र बोलते हुए कुछ गिनती करती और अपना रिजल्ट उनके कान में बोल देती। भगवान ही जैसे सब करवा रहा था समझिए। उसकी गणना सटीक बैठने लगी और लोग निहाल होने लगे। जल्दी ही कारों वाले बुआ जी के दरवाजे पर खड़े इंतजार करते नजर आने लगे। बुआ अब वो बुआ नहीं रह गई थी। लेकिन एक दिन गजब हो गया। बुआ की कौड़ियां ही कोई चुरा कर ले गया। इन्हीं कौड़ियों में ही तो बुआ के प्राण बसते थे। कौड़ियां नहीं रही तो बुआ जी कैसे रहती? लेकिन जाते जाते वे इतना कह गईं कि जिसने भी कौड़ियां चुराई हैं वो खुद कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। शायद ऐसा ही हुआ भी होगा, क्योंकि उनका कहा कभी गलत तो होता नहीं था ना।
3: मैंने

मनुष्यों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक विदेशी मित्र ने जब उनके गुरु से मिलने की इच्छा जताई तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो मित्र उनके पहनावे पर कमेंट करने लगा और कहा कि आप जैसे व्यक्तित्व का चरित्र निर्माण करने वाले ये कैसे गुरु हैं जिन्हें कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं है।

तब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, आपके देश में चरित्र का निर्माण दर्जी करता होगा, लेकिन हमारे भारत में चरित्र का निर्माण आचार विचार से होता है।

क्या आपको पता है बैंगनी रंग किसी भी राष्ट्र के ध्वज में इस्तेमाल नहीं होता। अब यह है ना बड़ी रोचक बात, क्या वजह है? क्या आपको पता है किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग उसकी आन बान शान होता है। देश का हर नागरिक, सेना और उसकी सरकारें झंडे के मान सम्मान के लिए हर कदम उठाती हैं। झंडों पर नजर आने वाले रंग के मायने होते हैं। जैसे भारत के तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता की निशानी है। इसी तरह अलग अलग देशों के झंडों का मतलब भी अलग अलग होता है। मगर क्या आपने कभी किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज में पर्पल कलर, बैंगनी कलर देखा है? शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि झंडों में बैंगनी रंग बेहद दुर्लभ है। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक वजह है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वर्ल्ड मीटर्स वेबसाइट के अनुसार दुनिया में 195 देश हैं। इनमें से सिर्फ 2 देश ही ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय ध्वज पर बैंगनी रंग दिखाई देगा। बाकी दुनिया के किसी भी देश के झंडे पर पर्पल रंग नहीं है। इसके पीछे की वजह भी काफी रोचक है। दरअसल 1800 के वक्त तक बैंगनी रंग को बनाना बहुत ही कठिन और महंगा हुआ करता था। क्वीन एलिजाबेथ ने तो यह घोषणा कर दी थी कि रॉयल फैमिली के अलावा कोई भी बैंगनी रंग नहीं पहनेगा। इस वजह से बैंगनी रंग को हासिल करना आम लोगों की बस की बात नहीं थी। बैंगनी रंग को हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। दरअसल उन दिनों बैंगनी रंग लेबनान के छोटे समुद्री घोंगे में पाया जाता था, जिसे जुटाना बहुत मुश्किल था। 1 ग्राम बैंगनी रंग बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा घोंगे मार दिए जाते थे जिनमें वो रंग निकलता था। इसके बाद डाई बनाने के लिए भी उसमें बहुत मेहनत लगती थी और डाई का खर्च भी बहुत ज्यादा था। उन दिनों 1 पाउंड बैंगनी डाई खरीदने का खर्च 41 लाख रुपए से भी ज्यादा था। इस कारण से देशों ने अपने झंडों में बैंगनी रंग रखना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि 1856 में विलियम हेनरी परकिन सिंथेटिक बैंगनी डाई बनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद इसकी कीमतें कम होने लगी। मगर देशों ने फिर भी बैंगनी रंग को त्याग ही दिया। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो 2 देश कौन हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग है? अब आपको हम उन देशों के बारे में बताते हैं जिनके झंडे में बैंगनी रंग दिखाई देता है। पहला देश है डोमिनिका, जिसके ध्वज को साल 1978 में अपनाया गया था। दूसरा देश है निकारागुआ, जिसके ध्वज को 1908 में अपनाया गया था और इसे आधिकारिक मान्यता 1971 में मिली। स्पेन के राष्ट्रीय ध्वज में भी कुछ वक्त तक बैंगनी रंग देखने को मिला था, उसके बाद हट गया। क्या वजह रही जो नैनो कार फेल हो गई? 2009 में टाटा की नैनो कार के लॉन्च होने से पहले इसको लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। लोग इस कार को लेकर तरह तरह के सपने देख रहे थे, लेकिन लॉन्च के पहले टाटा नैनो को जो शोहरत हासिल हुई थी, मार्केट में आने के बाद उस हिसाब से उसकी बिक्री नहीं हुई, या यूं कहा जाए कि टाटा की नैनो मार्केट में धड़ाम से गिर पड़ी। आखिर टाटा की नैनो का यह दुर्भाग्य क्यों हुआ? इसको समझने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की सबसे पसंदीदा किताब जॉन ब्रुक्स द्वारा लिखी गई इट इज बिजनेस एडवेंचर से मदद मिल सकती है। इस पुस्तक के एक अध्ययन में एडसल कार का जो दुर्भाग्य हुआ था, उसी पर विस्तृत चर्चा की गई है। 1955 में फोर्ड मोटर कंपनी ने $2,400 से $4,000, मतलब 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की कीमत की एक कार मैन्युफैक्चर करने की घोषणा की। इस कार को लेकर भी उस समय बहुत शोर था, जैसा टाटा नैनो को लेकर हुआ। कार का नाम फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के बेटे एडसल फोर्ड के नाम पर एडसल रखने का फैसला लिया गया था। एडसल के हवुए ने लोगों के मन में कार को लेकर कल्पनाओं और सपनों की झड़ियां लगा दी। इसके इर्द गिर्द जो हवुआ खड़ा किया गया, उससे सब सोचने लगे थे कि यह आम कारों से कुछ हटकर होगी। जब 1957 में इसे मार्केट में उतारा गया तो लोगों ने देखा कि यह तो कार आम कारों की ही तरह है, इसमें भी 4 पहिए लगे हैं और 1 इंजन है, तो उनका कार से मोह भंग हो गया।
नतीजा यह हुआ कि कार बाजार में औंधे मुंह गिरी। फोर्ड को इस कार पर 20 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। बस यही कुछ कारण टाटा की नैनो को भी फेल होने पर रहा। 2009 में लॉन्च की गई नैनो की सेल्स 2010-11 में और 12-13 में टाटा मोटर्स की कुल सेल्स का 23-24% थी, लेकिन 2011-12 में 74,527 तक इसकी सेल्स पहुंचने के बाद अचानक इसकी मांग में बहुत जोरदार गिरावट आई। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसकी सेल्स में 70% की गिरावट आई और इसकी सेल्स 2013-14 में 21,129 पर सिमट के रह गई। जबकि टाटा मोटर्स ने गुजरात के सदानंद में 2,50,000 नैनो प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए फैक्ट्री भी बनाई थी। आमतौर पर यह होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा हवा खड़ा कर दिया जाए तो लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं और कुछ अलग होने का सपना देखने लगते हैं। जब हकीकत कुछ और होती है तो वो खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए। सारे घर वालों और मोहल्ले वालों को बड़ा अजीब सा लगा था जब राघव ने अपने जन्मदिन पर घोड़े के बच्चे की मांग रख दी और पिता ने उसे पूरा भी कर दिया। शायद राघव ने अपने पिता से इंद्र के घोड़े उच्चेश्वा की या महाराणा प्रताप के चेतक की कहानियां सुनी होंगी। अब राघव की उम्र उस समय कुल 12 वर्ष ही तो थी। वो अपने अनोखे उपहार को पाकर खुशी से झूम उठा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल वस्तु पा ली थी। अब उसकी सुबह, दोपहर और शाम बस उसी के नाम होती थी। आपस में दोनों इतने घुल मिल गए थे कि उन्हें किसी अन्य दोस्त या दुनिया की परवाह ही नहीं थी। पढ़ाई में भी उसका मन जरा अब कम लगने लगा। वक्त बीत गया। राघव अब 20 साल का होने को आया था। उसका घोड़ा, जिसका नाम उसने बहादुर रखा था, वो भी अब मजबूत कदकाठी का जवान घोड़ा हो गया था। राघव की पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। खर्चा चलाने के लिए उसने निर्णय लिया कि अपने घोड़े बहादुर से तांगा चलवाया जाए। उसने बहुत प्यार से अपने घोड़े को तांगे में जोतने का काम किया और तांगा स्टैंड में लेकर आया। हमेशा की तरह उसका ध्यान यही रहता कि कहीं उसके बहादुर को कोई पीड़ा ना हो। कुछ ही देर में एक दरोगा ने आकर उसे अपने गांव चलने के लिए कहा। सौदा 100 रुपए में तय हुआ। उसने बड़े प्यार से पुचकार कर अपने बहादुर को चलने के लिए तैयार कर लिया। बहादुर भी अपने राघव की हर बात मानने को तैयार ही रहता था। करीब 10 किलोमीटर का लंबा सफर था। दरोगा घोड़े की धीमी चाल से खींच रहा था और बार बार राघव को घोड़ा तेज चलाने के लिए ताकीद कर रहा था। राघव का दिल बैठा जा रहा था। वो पहली बार बहादुर को तांगे में जोत कर जो लाया था, अब ये बात वो 2-3 बार दरोगा से कह भी चुका था, लेकिन दरोगा बात को अनसुनी कर रहा था। राघव समझ नहीं पा रहा था कि बहादुर को तांगे में जोतने का उसका निर्णय सही है या गलत। वो कभी अपनी गरीबी को कोसता तो कभी अपनी सोच को कि क्या कर बैठा मैं। तांगे के धीरे चलने से अचानक दरोगा का गुस्सा तेज हो गया और उसने वहां पर पड़ी हुई चाबुक उठाकर 2-3 वार घोड़े पर कर दिए। राघव एकदम दर्द से कराह उठा। जैसे वो चाबुक

दृष्टि से उसकी तरफ देखे जा रहा है। तुरंत वो जाने क्या सोचकर घोड़े से लिपट गया और बड़ी देर तक बस वैसे ही बना रहा। थोड़ी देर बाद उसकी मां ने जब उसे इस हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया। चलकर वो उसके पास आई और सांत्वना के लिए जैसे ही उसने राघव की पीठ पर हाथ फेरा, वो दर्द से चीख पड़ा। क्या हुआ? उसकी मां ने पूछा। कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। कुछ नहीं कैसे? कहकर उसकी मां ने उसकी पीठ को उघाड़ दिया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी पीठ पर चाबुक मारने के ताजे निशान बने हुए थे और उनमें से खून छलक रहा था।

0: What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
1: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मिल डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़की भी बदलता?
1: ऐसा न कहो मेरे सपनों।

मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: उन्नीस सौ अस्सी के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेश खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं। आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां पिक्चर्स फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है, जब हम कहते हैं चिड़िया हाथी जंगल जानवर इंसान तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना, बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रही। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: शाम की सुर्ख शफक हूँ मैं, शाम की सुर्ख शफक हूँ मैं, तुम सुबह की लाली हो। तुम्हें तो फलक चढ़ना है अभी, तुम्हें तो फलक चढ़ना है अभी, मैं कुछ देर

भी ओझल हो जाऊंगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय, और फिर एक बार दहलीज पर दस्तक दे चुकी हूं उस सिलसिले के साथ जो सीधे आपकी रूह को छू लेता है, यानी आपका पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जज्बातों को बयां करने के लिए कभी कभी रिवायती रास्ते नाकाफी लगते हैं, इसलिए आज की ये महफिल अपने दामन में कुछ अलहदा रंग समेटे हुए है। आज हम किसी दायरे में महदूद नहीं रहेंगे। इस बार हमारे इस सफर में आपको बिल्कुल मुनफरिद योनर के कलाम सुनने को मिलेंगे। आज की फेहरिस्त में जहां एक तरफ कोक स्टूडियो की वो रूहानी और नए ज़माने की सूफियाना मौसिकी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे जज्बाती नगमे हैं जो हाल फिलहाल के सालों में हमारे दिलों की धड़कन बने हैं, यानी आज का कारवां रिवायती शायरी और आज के नए दौर के फ्यूजन का एक बेहद हसीन मिलाप है। तो और वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं जज्बातों के इस नए सफर का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि आज की महफिल में हम कुछ बिल्कुल अलग जॉनर की सैर करेंगे। अब देखिए ना, ये इस तरह की भी सैर होती है, अलग जॉनर की सैर, और फरमाइएगा। तो हमारी आज की पेशकश हमें सीधे ले चलती है कोक स्टूडियो सीजन 8 के उस रूहानी मंच पर जहाँ पुराने ज़माने की एक बेहद मकबूल धुन को नए अंदाज और मखमली वेस्टर्न साजों के साथ पेश किया गया है। इस लाजवाब फ्यूजन को अपनी शानदार और पुरकशिश आवाज़ों से सजाया है अली जफर और सारा हैदर की जोड़ी ने। दोस्तों, ये नगमा दिल की उस कश्मकश को बयां करता है जहां इंसान लाख कोशिशों के बाद भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। इस ट्रैक में जो वेस्टर्न जैज म्यूजिक का तड़का है वो आज की युवा पीढ़ी को भी बेहद पसंद आता है। इसके निहायत ही खूबसूरत मिसरे कुछ इस तरह हैं। ऐ दिल, किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, रहता है रात दिन तुझे, रहता है रात दिन तुझे, किसी का इंतजार क्यों। तो आइए सीधे रुख करते हैं कोक स्टूडियो के इस सहर अंगेज यानी जादुई फ्यूजन की तरफ। सुनिए और खो जाइए अली जफर और सारा हैदर की इस सुरीली जुगलबंदी में। आपकी नजर

दोस्तों, हमारी आज की अगली पेशकश सुफियाना गायकी के बेताज बादशाह हंस राज हंस साहब की आवाज में सजा एक ऐसा शाहकार है जो पिछले कई सालों से हर टूटे हुए दिल की आवाज बना हुआ है। इसे मशहूर सूफी शायर बाबू मान सिंह ने बड़ी शिद्दत के साथ लिखा है। कलाम के बोल हैं, मेंढा तो है रब खो गया। मेंढा का मतलब यहाँ पे है मेरा तो है रब खो गया। मेंढा तो है रब खो गया, कोई ढूंढ के लावे ना। दुनिया तो हंस हंस के वेखे, दुनिया तो हंस हंस के वेखे, कोई नैन मिलावे ना। हंसराज हंस साहब की आवाज में जो तड़प है वो इस बात को सीधे दिल तक पहुंचा देती है। तो चलिए इस लाजवाब अल्फाजों और इस बुलंद सुफियाना गायकी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप गजल मुलाहिजा फरमाएं।

0: दोस्तों आइए अब रुख करते हैं ऐसे दौर की तरफ जहां मोहब्बत के इजहार में एक गजब की पाकीज़गी और ठहराव हुआ करता था। हमारी अगली पेशकश हमें सीधे लेकर चलती है साल 1997 की म्यूजिकल फिल्म सुर की हसीन वादियों में। इस बेहद जज्बाती नगमे को शायर निदा फाजली साहब ने अपने अनमोल लफ्जों से नवाजा है और इसकी सुरीली धुन M.M. कीरवानी साहब ने तैयार की है। कीरवानी जब इस कमाल की बंदिश को गुलुकारा महालक्ष्मी अय्यर अपनी मासूम सी आवाज में गाती है तो वक्त शायरी में तो वक्त मानो ठहर सा जाता है। दोस्तों इस शायरी में महबूब को बड़ी सादगी और शिद्दत के साथ पुकारा गया है। जहां शाम के ढलने के बाद और चांद के खिलने जैसे खूबसूरत लम्हों को सिर्फ और सिर्फ उसकी यादों से जोड़ा गया है। महालक्ष्मी जी की आवाज का जो सूफियाना अंदाज है वो इस नगमे को और भी खास बनाता है। इसका मिसरा कुछ यूं है।
1: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।

दोस्तों, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में उस दिलकश कल शाम के रंग के बाद अल्फाज से एहसास तक के इस मरहले पर आइए रुख करते हैं एक ऐसे नायाब शाहकार की तरफ जिसने साल 2000 में आते ही हर दिल पर हुकूमत करना शुरू कर दिया था। हमारी ये पेशकश एक बेहद मशहूर नॉन फिल्म एल्बम से है जिसे अजीम शायर बशीर बद्र साहब ने अपने अनमोल लफ्जों से नवाजा है और इसकी सुरीली धुन संदेश शंडीले साहब ने तैयार की है। जब इस कमाल की शास्त्रीय बंदिश को अपनी पुरसकून आवाज से KS चित्रा ने सजाया तो ये सीधे दिल तक उतर जाती है। सारंगी की मध्यम तान और KS चित्रा जी की आवाज का जो संगम है वो इस नगमे को अमर बना देता है। ये हमारे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है। इसके मिसरे कुछ यूं हैं।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां एक बार फिर से गवाह हैं कि हमारा आज का ये वाबस्ता वक्त अब खत्म होने को है। सुरों का जो कारवां आज हमने मिलकर शुरू किया था, उसे अब यहीं एक

खूबसूरत मोड़ देने की घड़ी आ गई है। हर मुलाकात का अपना एक वक्त तय होता है, मगर उन मुलाकातों से जो यादें बनती हैं वो वक्त के दायरे से बहुत आगे निकल जाती हैं। आज की इस महफिल के आखिरी लम्हों में मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक नहायत ही खूबसूरत शेर याद आ रहा है, जो आज की गुफ्तगु पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील पर आपके साथ का ये सलीका और ये मोहब्बत ही है जो हर रोज इस महफिल को इतना खास बना देती है। आज के इन तमाम अफसानों और जज्बातों को आपके ख्यालों के हवाले करके अब मैं रुखसत होती हूँ। आप अगली मुलाकात तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ज़िंदगी के हर एक सुर को जी भर कर महसूस कीजिए। अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए अब इजाज़त। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, हमारा यह हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है उसकी आजीविका सशक्त हो, हमारा किसान खेती में नई से नई तकनीकों को सीखे, साथ ही उन्नत कृषि कैसे कर सके आदि जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी यह पहल कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आजीविका को सशक्त बनाने की एक पहल है। किसान साथियों, हमारे पूर्वज पहले से ही कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहां पर कृषि को पुनः एक नवीनतम उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो बदलती जा रही है, प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं और हमारा जो किसान है उन्होंने रासायनिकों का हमने अंधाधुंध प्रयोग के माध्यम से कहीं कहीं पर इसके काफी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर जरूरत है हमें एक बदलाव की और परिवर्तन के साथ प्रकृति के साथ मिलकर हमें कृषि करने की आवश्यकता है। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान साथियों, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो आजीविका के स्रोत हैं, जो हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं और सोचते और देखते हैं कैसे मधुमक्खी पालन के माध्यम से, मछली पालन के माध्यम से, फूलों की खेती करके, वनस्पति की खेती करके और अन्य खेती के माध्यम से भी हम कितने अच्छे मुनाफे ले सकते हैं। जो हमारा पूर्वज था वह सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों की ही खेती करता था, लेकिन आज का किसान औषधीय पौधों की हम खेती करना शुरू कर दिए हैं, साथ ही हमने मत्स्य पालन शुरू किया है, कुक्कुट पालन शुरू किया है और भी अन्य खेती के बहुत सारे ऐसे साधन है जिनके मदद से हमने हमारी खेती में एक नए बदलाव को महसूस किया है। तो किसान साथियों, हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान है वो भिन्न भिन्न और उन्नत कृषि करे और हमारी अपनी कृषि में नए बदलावों को करे, नए बदलावों को देखे, सीखे और अपने साथी किसान साथियों को भी बताए और हम हमारे एक्सपर्ट की राय से भी हमारी कृषि में एक

0: उन्नति ला सके, एक नवीनता ला सके। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन को लेकर और देसी गाय की किस्मों को लेकर। हमें कैसे इनका रखरखाव करना है, क्या इनके लिए कैसा प्रबंधन करना है, साथ ही हमें किन किन बातों में इनका ध्यान रखना है और कैसे हम इसमें इनका ख्याल रख के हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। तो आइए शुरू करते हैं।
1: जैसे बात करते हैं अधिराज जी, अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है?
2: देखिए, ये हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है। इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज्यादा हमें फायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, 2014 से चल रही है, जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताते हैं। उस योजना के तहत देसी नस्ल का संवर्धन किसानों को कैसे पहुंच सके, ये योजना हम चला रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, एक समय था जब हम क्रॉस ब्रीड का काफी हमारे जो किसान थे, पशुपालक थे, डेयरी से जुड़े जो हमारे पशुपालक थे, उनमें क्रेज रहता था। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की ओर हम रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में देसी गायों की भूमिका या फिर कहें उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
0: इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है और उनकी मदद से हम कैसे हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी कृषि को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
3: पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। व्यवसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है।
1: लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन। डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन 2 सालों में कोरोना काल में काफी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को। अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
4: जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है, वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था। सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ी, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेजी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पर भी विचार किया गया और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 3रा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख पे हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की जरूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसे कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
3: अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
0: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी को लिया है कैसे हमें मुर्गी पालन के जो मुर्गी पालन करना चाहता है जो किसान उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा खुले में उन्हें रखना चाहिए, साथ ही उनके लिए जो रात में बल्ब की सुविधा होना चाहिए, उनके लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई और गाय से जुड़ी हुई।
1: अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरह का इससे लाभ भी होगा, ये भी बताएं।
2: देखिए, ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे, अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं, तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस भी ये है, जो कि उनके कम उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जाति हैं या विदेशी नस्ल के हैं। तो उससे क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं, जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है बहुत सारे स्टडीज में,
1: और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए, इसका बाजार भी काफी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है, तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
2: जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाई गई है 2019 से शुरू गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के, जहां पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सीमेन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि हमारे एआई टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम।
1: जी, लेकिन डॉक्टर अधिराज, इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहां से जो देसी बछड़े का हो, तो इसके लिए कहां संपर्क करें? कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं, जो करना चाह रहे हैं वही है?
2: देखिए, सारे राज्यों में ये हमारे जो सीमेन स्टेशंस हैं, सीमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सीमेन बनते हैं, तो वो सीमेन सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहां से संपर्क कीजिए और जो एआई टेक्नीशियन है जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है, जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए, जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है, उस हिसाब से किया गया है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप में से कोई किसान साथी देसी गायों का पालन करना चाहता है कि वो गर्भाशय कराए, तो अपने पास के केवीकी केंद्र में हम संपर्क कर सकते हैं और ये भी अभी हमें मिल सकता है। अभी इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। हमारे देसी गाय का जो दूध हो सकता है कि थोड़ा कम जरूर देती है, लेकिन उसमें जो गुण है वो काफी उच्च गुण है उनमें। तो किसान साथियों, हमारे में से काफी किसान साथी देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, उसकी महत्वता को जानते हैं, समझते हैं और इसे पालते भी है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी देसी गाय का घी तुलनात्मक बाकी घियों की तुलना में काफी महंगा मिलता है और अधिकतर तो ये मिलना अभी दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि अधिकतर लोग जर्सी गाय ही रखते हैं, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है काफी गुणकारी होता है, ये बात हमारा किसान अच्छे से जानता है और ये काफी दुर्लभ है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे देसी मुर्गियों की, तो देसी मुर्गी का अंडा भी काफी गुणकारी माना जाता है और यह भी काफी दुर्लभ होता जा रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर हम आइए लेते हैं एक्सपर्ट से राय कि अगर कोई देसी मुर्गी का पालन करना चाहता है, कोई किसान साथी, तो कैसे कर सकता है? हाँ, हमें हमारे पास के किसान साथियों से ये मिल जाता है, लेकिन क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या अन्य संस्थाओं पर क्या इसकी उपलब्धता है या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
4: मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है, एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो

0: उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है, तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा। और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है, उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की यह सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं। तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहां तक आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है ब्रॉयलर उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं। पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं, और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है। और उसके साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें।
1: जी।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही हमारी देसी गायों की नस्ल है उसके गुणों को। तो किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
1: कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हमारे कोई कुछ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो सूरतगढ़ में हैं, जहां पे थारपारकर ब्रीड आपको अवेलेबल हो सकता है, वहां से आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप निकटतम जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, जहां पे अच्छे किसान होते हैं जो ये फार्म अच्छा खोलते हैं वहां से भी आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत और एक योजना भी चल रहा है जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अभी ये प्रावधान किया गया है कि जो 200 गाय या भैंस रख के, मिनिमम 200 रख के अपना फार्म खोलना चाहते हैं उधर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ की सब्सिडी है, वो भी फार्म्स जहां पे एस्टेब्लिश हो गए हैं वहां से आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो अभी आप समझ चुके हैं कि कहां से आप देसी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं, साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उसको भी, उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: ये गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है उसके जो आहार में प्रोटीन का मात्रा सही है उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये पहली बार आपको इसके लिए कर रहे हैं तो इसके इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कुछ कमियां रहते हैं जैसे ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ होगा उसको दिखाने के लिए एक बार आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए, वो एक बार आपके पशु का जांच करवा लें और जांच करने के बाद वो कुछ उपाय बता सकते हैं जो कि मेडिसिन मिलते हैं जो कि प्रॉपर उसका गर्भधारण करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से कुछ भी चीजें होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं तो वो भी आप एक बार उसका फीकल सैंपल जांच करवा लें और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है भी वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं तो क्या ग्रोथ ज्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी? तो शांत जी मेरा एक आपको मशविरा है कि जो ये पक्षी है जो ब्रॉयलर है वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है, 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है और खासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है, जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाजार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे खासकर जो नए नीति बन रही है जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं ताकि मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं, इस स्तर पर इसको समझना बूझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज्यादा आवश्यक है और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है।
3: जी जी।
2: और दूसरा अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सामान्य तरीके से आप पाल सकते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव जो उसका जर्मप्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और संतुलित हो।
3: जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज की, जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: जरूर उपयुक्त रहेगा। देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं है, ये हमारे एरिया के ही हैं तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और जरूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गई हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो या जो भी आप भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जहां भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आफिस बचना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपने ज्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें, मुख्य बातें कौन कौन सी होती जिसका ध्यान रखना चाहिए।
2: देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पर हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है उसकी भी विपणन व्यवस्था आप बहुत आराम से अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश का जो उत्पादन का स्थिति है वो काफी वृहद स्तर पर हो रहा है और पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा कर ली है कि भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, मुर्गी और मुर्गी के उत्पाद की दृष्टि से वैश्विक स्थान भी बना लिया है और इन सारे उत्पादों का लगभग 20-27% हमारा इस बैकयार्ड से आता है, जो हमारे घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन होता है उससे आता है। और इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती यह होती है कि जब ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान भाई इसको घर के पिछवाड़े पे एक सहयोगी धंधे के रूप में अपनाते हैं, अपने कृषि कार्यों के साथ साथ 50 या 100 मुर्गियों को पीछे रख करके उनसे इस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है उसके जो अंडे प्राप्त होते हैं वो आपके परिवार के लिए, परिवार के इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं, आपको एक संतुलित प्रोटीन और संतुलित आहार की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होती है। उसके साथ साथ कभी जब आवश्यकता पड़े तो ये मुर्गी आपके लिए एक ATM का कार्य भी करती है, आप उसको रूरल मार्केट में 100-200-250 रुपए में बेच भी सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक इन दो उद्देश्यों के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप रखते हैं तो आपको फायदा भी होता है और धीरे धीरे जब आप इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में परिपक्व होते जाते हैं तो इस व्यवसाय को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में विपणन की व्यवस्था बहुत ज्यादा हमें करनी नहीं होती है। पर हाँ, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो वह है मुर्गी के एक विपणन व्यवस्था, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हमारे भारत में नहीं है। यद्यपि अब हम लोग औद्योगिक स्तर पर पहुंच गए हैं और अब बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी हमारी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो विपणन की व्यवस्था है, बहुत ही प्राथमिक टाइप की है।
3: सप्लाई चेन जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तभी और बेहतर हमारे जो मुर्गी पालक है उन्हें लाभ होगा।
2: एग्जैक्टली, और उसके साथ साथ अब तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। सो जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनने भी काम किया है। आपने कोरोना के समय पे देखा कि अगर आपको मुर्गी की या मुर्गी के मांस की या मुर्गी के अंडे की आवश्यकता थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीजें उपलब्ध थी, आप चाहते जिस समय आप चाहें उस समय पे इन उत्पादों को अपने घर पे बैठे हुए प्रोसेस्ड हों या रॉ हों आप बुलवा सकते थे। तो धीरे धीरे इसकी विपणन व्यवस्था ने एक नया आयाम लेना शुरू किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुआ है और और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है। उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी भी शुरू की है, तो जिनको अगर बड़े लार्ज स्केल में मुर्गी के उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे चिकन की आवश्यकता होती है या अंडों की आवश्यकता होती है, तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस अपने डेवलप करते हैं, कुछ फार्म्स और फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनके जितने भी उत्पाद होता है वो डायरेक्ट लेते हैं और अपने अनुरूप उनको पैदा करवाते हैं, जिससे वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, यानी धीरे धीरे जैसा कि आप बता रहे हैं कि और ऑर्गेनाइज होता जा रहा है ये सेक्टर।
4: किसान साथियों, मुर्गी का व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है, यह बात हमारे झाबुआ का किसान बहुत ही अच्छे से जानता है। जब भी हमारा जो किसान है, जब भी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, वे हाट का जो हमारा दिन होता है, हाट बाजार के दिन में आते हैं और जो मुर्गी है वो अभी 300 से 400 रुपए के बीच में बिक रही है। साथ ही अगर हम मुर्गे की बात करें तो मुर्गा 700 से 1000 के बीच में ही बिकता है, और अगर हम देसी मुर्गा और कड़कनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा दाम मिलता है। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। साथ ही जैसे कि हम प्रारंभ में हम चर्चा कर रहे थे कि जो देसी अंडे हैं, देसी अंडे का जो अभी मिलना काफी मुश्किल हो चुका है, हमें बाजार में अंडे जरूर मिल सकते हैं लेकिन जो देसी अंडा है जिसका स्वाद अलग होता है और वो गुणकारी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा किसान भाई इसमें थोड़ा सा और ध्यान लगा दे और जो हमारे घर के पीछे हम पालते हैं, हमारे घर पे ही हमारे पेड़ों पे जो मुर्गियां होती है, उकेड़ा है, उकेड़े में से वो काफी अपने जरूरतमंद जरूरी कीड़ों को वो खाती है, और इस तरीके से हमें इसके लिए कुछ ज्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये कम लागत पर होने वाली कृषि है। तो किसान साथियों, आप इसमें भी अपना रुख कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा और ज्यादा मुनाफा इसके माध्यम से भी हम कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: साहिवाल भी बहुत अच्छा है। थारपारकर, देखिए थारपारकर साहिवाल अगर देखेंगे सिर्फ दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो साहिवाल बहुत ही अच्छा है, और थारपारकर अगर देखेंगे ये डुअल पर्पस है, मतलब इससे दूध का लाभ भी ले सकते हैं और अगर मतलब मेल काफ हो गया तो उसको आप मतलब खेती में भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे हैं आपके राजस्थान के लिए। और हमारा एक जो मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ में एक सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहां पे थारपारकर की उपलब्धि भी हो सकती है, वहां से आप पूछताछ कर सकते हैं और कहां अवेलेबल है बता सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं इसकी फायदा।
3: जी बिल्कुल। साथ ही अधिराज जी बताया कि जैसे कि आपने हमें ई गोपाला ऐप के बारे में भी बताया था कार्यक्रम से पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधा है, तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और किस किस तरह की जानकारी या फिर सर्विसेज इस ऐप पर उपलब्ध हैं?
0: जैसे कि अभी सर ने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब सारी चीजें अवेलेबल हो रहे हैं, तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए और किसानों को सुविधा मिलने के लिए ये ई गोपाला ऐप का भी लॉन्च जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था, तो ये जो हुआ था तो इसमें क्या है, आप अगर कोई अच्छे नस्ल के पशु चाहते हैं, जो गाय है या भैंस है वो भी चाहते हैं, वो वहां पे रजिस्टर्ड है, तो उसको आप खरीदारी कर सकते हैं और उसके जो किसान है उससे बात करके ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सिमेन जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए चाहिए वो भी वहां अवेलेबल है, और कहां से आप ले सकते हैं वो भी सारा, और उसके पर्टिकुलर प्राइस के साथ कितना मूल्य है वो भी अवेलेबल है, किस सांड का है वो भी सारा चीज अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो अगर चाहते हैं, अगर कोई IVF करना चाहता है तो उसके लिए एम्ब्रियो अवेलेबिलिटी भी वहीं दिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ छोटे छोटे चीजें दिए गए हैं कि कोई अगर रोग आ जाता है, मतलब छोटा कंडीशन आ जाता है, उसका कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको लगा के हम, जैसे कोई पत्ता हो या कोई फूल हो उसको लेके हम कोई छोटा सा अगर बुखार आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं, वहां पे इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का भी वीडियोस दिया गए हैं जिसका फायदा कोई किसान ले सकते हैं। उसके अलावा पोषण का भी वहां पे प्रावधान रखा गया, अगर कोई किसान उसमें रजिस्टर करते हैं अपने पशु को दूध दे रहा है, 5 लीटर दूध दे रहा है या 10 लीटर दूध दे रहा है, उसके हिसाब से उसको जितना पोषण चाहिए उसका भी कैलकुलेशन वो करवा के अपने हिसाब से वो ले सकता है।
3: जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं, और खासतौर पर ये ई गोपाला ऐप है जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और इससे बहुत तरह की सुविधाएं आपकी बिल्कुल डोर स्टेप पर भी मिलेगी।
4: किसान साथियों, अभी आपने ई गोपाला ऐप के बारे में सुना। क्या है ई गोपाला ऐप किसान साथियों? ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक मौका है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें वहां पर मिल सकती है। हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी हमें चाहिए हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही पहले हमें इन सारी चीजों को ढूंढने की काफी दिक्कत होती थी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके पास मिलेगा आदि चीजों की हमें दिक्कत होती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसके माध्यम से हम अच्छे से अच्छी किस्म की वीर्य प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को इस ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: देखिए, इसका कारण है ये फैट नहीं आ रही है जिसके वे आप जो दूध बेच रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो रहा होगा। आप जो आहार देते हैं उसको संतुलित आहार दीजिए, जो कॉमर्शियल फीड मिलता है वो कॉमर्शियल फीड बाहर से खरीद के दीजिए, और उसके साथ आप उसको हरा चारा का भी सफिशिएंट हरा चारा दीजिए। मिनिमम उसको ये 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो मिनिमम 25 किलो हरा चारा उसको रेगुलर चाहिए। ये देखिए, दूसरा चीज है आप कॉमर्शियल फीड जो मिल रहा है बाहर गाय के लिए मिल रहा है उसका अवेलेबिलिटी करवाइए। अगर हम देखते हैं कि जो पोषण हम देते हैं तो अगर वो हर 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो कॉमर्शियल फीड हमें उसको देना चाहिए तो इसका एक बार देखिए। दूसरा चीज आपको देखना होगा कि अगर कुछ मिनरल मिक्सचर उसके फीड में डाल सकते हैं वो डालने से भी, अगर डेली 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर जो मिल रहा है बाहर कॉमर्शियली अवेलेबल है, फीड सप्लीमेंट की तरह अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल के उसके आहार में डालिए तो इसके हिसाब से आपका जो गाढ़ापन आ जाएगा दूध में।
3: जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कौन कौन सी नस्लें हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अलग अलग जो उद्देश्य है हमारे मुर्गी पालकों के उसके अनुसार जिसका चुनाव कर सकते हैं।
2: देखिए, नस्लों के मामले में भारत इस समय, मैं अगर कहूं कि सबसे सर्वप्रथम है और सबसे उच्च स्थान पर है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से विभिन्न जो हमारे इको क्लाइमेटिक जोन हैं उनके हिसाब से और उत्पादन की दृष्टि से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास अगर घर के पिछवाड़े पे पाले जाने वाली मुर्गियों की करीब करीब 13 से 17 नस्लें हमारे पास उपलब्ध हैं। अलग अलग इलाकों में ये विकसित की गई हैं और उन इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर विकसित उत्पादन वाली मुर्गियों को अगर हम देखें तो अंडा देने वाली हो या ब्रॉयलर हो, उस पर भी उत्पादन की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और हमारे पास वो सारी नस्लें जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो भारत में मौजूद हैं। और इनकी विपणन व्यवस्था भी देखें, इनकी उपलब्धता भी देखें, तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारी हैचरीज भी हैं, उसमें इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जितना भी आवश्यकता है उस स्तर पर किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि हम थोड़े ही समय में अंडा उत्पादन करने वाले दूसरे देश बन जाएं वैश्विक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें इन बातों पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास चूजों की उपलब्धता है कि नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप चूजे की मांग बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि आपने देखा है कि भारत हमारा जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण के मास में मुर्गी के खपत पे कमी आ जाती है, गर्मी के दिनों में कमी आ जाती है और जाड़ों में ये अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। तो इसकी मांग के अनुरूप इसका उत्पादन हमारे यहाँ किया जा सकता है और जो कंपनियां हैं वो आपके घर तक आपको ये चूजे उपलब्ध करा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: आपकी हो सकती हैं, परंतु इसका चिकित्सीय परीक्षण और इसका शव परीक्षण आवश्यक रूप से करा लें और चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि नॉर्मल आप जो बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं, दो समस्याओं के कारण ये हो सकता है। एक कि आपने मुर्गी को प्रथम दिवस पे जो टीका लगाना होता है, जो हैचरी के स्तर पे टीका लगाना होता है, वो होता है मैरेक्स डिसीज का, जिसके कारण दोनों टांगों में पैरालिसिस होता है। उस कारण में अगर प्राथमिक स्तर पर आप देखें और एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर ये बीमारी हो रही है, तो वो उस कारण से हो सकती है। और अगर 3 से 4 सप्ताह के अंतर पर यह बीमारी हो रही है, तो वो सामान्यतया जो हमारा B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2। तो बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग करें उसके लिए। अगर उससे करेक्ट हो जाता है तो ये मानिए कि वो विटामिन के कारण है। परंतु अगर जब इसमें मृत्यु दर हो रही है या ये पक्षी अपंग हो रहा है, तो इसका चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी के कारण हो रहा है या

0: जाते हैं, उसमें भी एक चीज है गोपाल रत्न अवार्ड जो कि पुरस्कार राशि दी जाती है फर्स्ट को 5 लाख की और सेकंड को 3 लाख की और थर्ड को 2 लाख की राशि दी जाती है। तो ये भारतवर्ष में एक बार वर्ष में एक बार किया जाता है, तो इसमें भी भाग लें और देसी नस्ल के लिए सुधार के लिए जो हमारे पशुपालक
1: है। किसान भाइयों, हमारे किसान साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है, यहाँ अवार्ड रिवॉर्ड के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह खेती करे, उन्नत अच्छी से अच्छी खेती करे, अच्छी पैदावार ले, जिससे हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि हमारा किसान जो है हमारे पूरे देश के सभी लोगों का पेट भरता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार द्वारा प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग लें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भी 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो पिछले 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
7: नमस्कार किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बदलते इस पर्यावरण में बहुत ही जरूरी है हमें अपने पर्यावरण को देखकर, इसे समझकर पर्यावरण के अनुसार खेती करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM छबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, आशा करते हैं कि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का ये खेती बाड़ी कार्यक्रम लाभकारी बनेगा, आपके लिए लाभप्रद हो और आप खेतीबाड़ी के इस कार्यक्रम से, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानें, साथ ही अपनी जो समस्याएं हैं उसे भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम केवीकी के माध्यम से आप तक इन समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही किसान साथियों, खेतीबाड़ी जो हमारा मुख्य व्यवसाय है, छबुआ का जो हमारा किसान है वो मुख्यतः खेती पर आधारित है। उसका आय का जो मुख्य स्रोत है वो एकमात्र खेती ही है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो खेती है, खेती पद्धति में हमें बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो अभी है, हमारी जो मिट्टी है थ्रीली है, कहीं पर पानी की काफ़ी समस्या है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए वातावरण के अनुकूल खेती करने की आवश्यकता है। तो हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, हमारी खेती में कौन से कदम उठाने चाहिए, आदि भिन्न भिन्न जानकारियों के बारे में हम जानेंगे छबुआ के केवीकी के माध्यम से। तो किसान साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः खेतीबाड़ी कार्यक्रम में और आप हमारी आपकी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हम केवीकी के माध्यम से आप तक आपकी समस्याओं का निदान पहुंचा सके, साथ ही जो नवीनतम योजनाएं हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचा सके और खेती में किस तरह हम नए बदलाव करके

0: अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं, इन सब बातों को हम इस खेती बाड़ी कार्यक्रम में करेंगे। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: का मनुष्य के पोषण में बहुत महत्व है। सब्जियों का उपयोग रोजाना के भोजन में किया जाना जरूरी है। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में और विटामिन, खनिज लवण और रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो संतुलित भोजन का आधार है। लेकिन हमें रोजाना के भोजन में सब्जियों की प्रचुर मात्रा मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि सब्जियों की खेती और उनकी पैदावार अच्छी हो। सब्जी फसल की अच्छी पैदावार तभी मिलेगी जब हम फसल में समसमाय कार्य करेंगे और समय एवं मौसम के हिसाब से सब्जी फसल की देखभाल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के तमाम पहलुओं के ऊपर।
0: किसान साथियों, चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
3: देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का बहुमुखी योगदान है, लेकिन पोषण सुरक्षा पर भी जोर दिया जाना जरूरी है। सब्जियों से विभिन्न प्रकार के औषधीय पोषक तत्व और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सब्जियों में आलू वर्गीय, कद्दू वर्गीय, गोभी वर्गीय सब्जियों, दलहनी सब्जियों और पत्ते वर्गीय सब्जियों जैसे पालक और मेथी आदि का काफी औषधीय महत्व है। ऐसे में स्वस्थ जीवन के लिए इन सब्जियों का उपयोग औषधीय खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। सब्जियां सूक्ष्म तत्व जनित कुपोषण को दूर करने में सहायक होती हैं। इस संदर्भ में सब्जियों के उत्पादन और वर्ष भर इनके ताजे और प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में बाजार में उपलब्धता को सुनिश्चित करना काफी जरूरी है, और इसके लिए किसानों को न सिर्फ सब्जी फसलों की अधिक से अधिक खेती करनी होगी, बल्कि फसल की अधिक पैदावार के लिए उनमें समसामयिक कार्य भी करने होंगे। जैसे इस समय बैंगन, मिर्च व भिंडी की फसलों में निराई गुड़ाई व जल निकास एवं रोग व कीटों से रोकथाम की व्यवस्था करें। बैंगन में रोपाई के 30 दिनों बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, मिर्च में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और फूलगोभी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। इस समय बैंगन में कॉक्सिनेला बीटल का प्रकोप होता है, इससे बचाव के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन या 54 किलो यूरिया को दो भागों में बांटकर बुआई के 30 या 45 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाने से पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फल स्वस्थ होंगे। सभी सब्जियों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। पूसा संकर 3 लौकी की बुआई इस महीने की जा सकती है और इस किस्म की तुड़ाई 50 से 55 दिनों में शुरू हो जाती है। वहीं खीरा और अन्य सब्जियों को फल छेदक कीटों के हमले से बचाएं। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई, सिंचाई व जल निकास की उचित व्यवस्था करें। भिंडी की फसल में बुआई के 50 दिनों बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या 87 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें और भिंडी की तुड़ाई सही समय पर करें। आमतौर पर फूल आने के 8 से 10 दिनों के भीतर भिंडी की फली की तुड़ाई जरूरी है। इस तरह अगर सही समय पर सब्जियों की बुआई और उनमें समसामयिक कृषि कार्य किए जाएं, तो सब्जी फसल की अच्छी पैदावार के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।
2: तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर बीएस तोमर का। डॉक्टर तोमर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के बारे में, तो ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है?
4: देखिए ज्योत्सना जी, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में कितना सब्जी उत्पादन हो रहा है और कितनी हमें और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, फसलों में हमारी पैदावार दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है
2: जी।
4: और हमारी जो आबादी है उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये मूल्यांकन करें कि हमें कितनी सब्जियों की आवश्यकता है। अगर हम उत्पादन के आंकड़ों को आबादी के हिसाब से बांट करके देखें तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के लिए तकरीबन 300 ग्राम से अधिक सब्जी की उपलब्धता आती है
2: जी।
4: लेकिन अगर उसमें से हम जो सब्जियां हमारी कटाई के उपरांत खराब हो जाती हैं या उनका प्रसंस्करण हो जाता है या उनका विदेश में निर्यात हो जाता है, उस मात्रा को अगर हम निकाल दें तो हमारी प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है सब्जियों की वो कम होती है। अब हमारी प्रश्न है कि हमारी जो कितनी सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है, इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पोषण आहार संस्थान है हैदराबाद में, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको हम आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। अगर हम ये 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं प्रति व्यक्ति, तो निश्चित रूप से हमारी जो शरीर की पोषण की आवश्यकता है जिसमें हमें प्रतिदिन विटामिन्स, मिनरल्स, रेशा या ऐसे रसायन तत्व जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। और इस प्रकार से हमारी जो आबादी है हम उसको सब्जियों के माध्यम से बेहतर पोषण दे सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य देने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और पिछले 2 सालों में जो कोरोना वैश्विक महामारी
2: जी
4: हमारे पूरी दुनिया ने देखी है, उसमें निश्चित रूप से सब्जी फसलों का या बागवानी फसलों का विशेष महत्व सामने आया है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो ना कि व्यक्तियों को या उनको स्वास्थ्य के साथ साथ
2: जी
4: देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है और हमारे उद्योगों के विकास में मददगार होती है
2: जी।
4: और साथ ही साथ इनके प्रसंस्करण या इनके वैल्यू एडिशन की भी अपार संभावनाएं हमारे देश में हैं, जिससे कि हम अपनी बढ़ती हुई मांग को विशेष करके शहरी क्षेत्रों में जो हमारे दोनों परिवार के सदस्य पति पत्नी जॉब में आते हैं उनके पास सब्जियों को तैयार करने का समय कम होता है, ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके परिवार में भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल हो तो उसमें मूल्य संवर्धित सब्जियों का भी महत्व है, ताकि वो कम समय में उनको तैयार करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए उपलब्ध करा सकें।
2: बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि जो सब्जी उत्पादन है और जो पोषण सुरक्षा है वो आपस में एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, आपसे हम बात करने वाले हैं रोगों के बारे में, तो सबसे पहले हमारे जो किसान हैं उनको आप ये बताएं कि सब्जियों में किसी भी प्रकार का रोग ना लगे उसके लिए बीजोपचार जो है वो बहुत जरूरी होता है, तो किस तरह से बीजोपचार वो कर सकते हैं जिससे कि आगे सब्जियों को किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े।
5: ज्योत्सना जी, सब्जी उत्पादन के उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रति मतलब हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी जितनी संख्या है जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें, जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा कि 300 ग्राम करना है तो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना है, तो इसको पूरा करने के लिए बीज उपचार, क्योंकि कई बीमारियाँ होती हैं जैसे इसमें अल्टरनेरिया का, जिसमें कॉलीफ्लावर आते हैं, फूल गोभी होती है, उसमें बीज के द्वारा आते हैं, तो बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है जिससे कि उसका जो प्राइमरी जो इनाकुलम होता है, जो पैथोजन होता है, जो रोग फैलाता है वो बीज पे होता है, तो उसको हमको वहां से खत्म करना है जिससे कि वो आपके मेन फील्ड में न जा सके या जो आप नर्सरी डाल रहे हैं उसमें वो न जा सके। तो इसके लिए एक बीज उपचार करना दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला बीज उपचार हम कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। कवकनाशी के लिए दवा जैसे कार्बेंडाजिम आती है, उसका 1 ग्राम पर क्रेडिट हिसाब से आप कर सकते हैं, या उसमें हमारे जो थेराम है, थेराम फंजीसाइड्स हैं, उसको हम उपचार कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से, या उसमें होता है जैविक उपचार। जैविक उपचार का मतलब होता है कि जिसमें बायो कंट्रोल, जैसे सीडोमोनास का है, ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा को आप 4 ग्राम या 5 ग्राम पर किलो जो पाउडर बन के आता है, टर्कम पाउडर बेस होता है, उसके लिए उपचारित करना चाहिए पर केजी के हिसाब से। उपचारित करने के लिए होता है कि आप बड़ा सा बर्तन ले लिए, जैसे आप क्वांटिटी आपकी बीज है सब्जियों को, इसे कम मात्रा में बीज लगता है उसी हिसाब से आप एक बर्तन लीजिए और उसमें बीज डालिए 1 किलो, जैसे 1 किलो है या जिसके हिसाब से है उसी हिसाब से आप फंजी साइज उसमें डाल के थोड़ा मॉइस्चर कर लीजिए और फिर उसको मिला दीजिए ठीक से उसको, और फिर थोड़ा सा छाई में सुखा के फिर आप प्रयोग करें। इसी तरह से जैविक नियंत्रक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं
2: जी,
5: जो 4 से 5 ग्राम पाउडर बायो कंट्रोल, चाहे ट्राइकोडर्मा हो या सुडोमनास हो या बेसिलस हो। ये सुडोमनास और बेसिलस मतलब जीवाणु है और ट्राइकोडर्मा कवक होता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि रोग जो बीज के द्वारा फैलता है वो नहीं फैलेगा, तो इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं।
2: तो अभी बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें डॉक्टर दिनेश ने दी, किस तरह से आप जो है वो बीजों उपचार कर सकते हैं जिससे किसी भी तरीके का रोग जो है वो आपकी सब्जी फसल को ना लगे। कीटों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, तो इसके लिए आइए रुख करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने रोगों के बारे में जाना बीजोपचार का, क्या कीटों का प्रबंधन करने के लिए भी बीजोपचार पहले करना जरूरी है, और अगर है तो किस तरह से हमारे किसान कर सकते हैं जिससे कि कीटों का प्रकोप सब्जी फसल पे ना हो पाए और बाजार में जब उनकी सब्जी की फसल जाए तो उनको उससे आर्थिक मुनाफा भी मिले।
6: सब्जी का महत्व बहुत अभी बढ़ गया है जैसे कोरोना के बाद, जैसे अभी सब्जी और एवं फल उसका उत्पादन, और जैसे हम अभी खाना भी लोगों ने ज्यादा शुरू कर दिया है क्योंकि उससे भरपूर मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं, फिर मिनरल्स मिलते हैं
2: जी।
6: और जैसा कि सर ने बताया कि कुछ रोग, जैसे साहब ने बताया विल्ट आता है, ब्लाइट्स आते हैं, तो उसके लिए बीजोपचार किया जाता है। तो मैडम जैसे सब्जियों में जैसे बैंगन है, टमाटर है, उसमें एक सूत्रकृमि नाम का एक रोग लगता है सूत्रकृमि से, तो उससे जड़ों पे गांठें बनती है। तो मैडम अगर हम हमारे पास अगर नर्सरी के टाइम में भी अगर हम सीड डाल रहे हैं तो उसमें हम नर्सरी को भी हम उसको उपचारित कर सकते हैं, जैसे कार्बोप्यूरान नाम की एक दवा आती है, जैसे 3 ग्राम प्रति वर्ग किलो वर्ग मीटर में आपको डालनी है, तो उसके उसको गांठों को मारता है। और अगर नर्सरी अगर आपने ट्रीट नहीं की है उससे, तो आप कार्बोसल्फा नाम की एक दवा आती है, तो उसका ढाई एमएल प्रति 10 लीटर में घोल बना के जो भी आपके ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपके पौधे तैयार है, जैसे टमाटर की है, बैंगन की है, तो उसको आप 20 से 25 मिनट उसमें डुबा के रखिए, फिर आप उसको मेन नर्सरी में लगा सकते हैं। और जैसे सब्जियों के फसल में जैसे अब इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा आती है, उससे हम बुरी उपचारित करते हैं, लेकिन बाकी फसलों में जैसे कपास है या अदर, लेकिन जैसे सब्जियों के फसल में मैडम, जैसे पत्ती वाली सब्जी होगी तो लगाने के 20-25 दिन के बाद ही हम उसको खाने के लिए तोड़ते हैं, तो उसके लिए उसका बीज उपचारित करना अच्छा नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाता है। तो टाइको सूत्रकृमि के लिए आप जरूर बीज उपचारित कर सकते हैं, जैसे आप कुछ मैंने कार्बोसल्फान बताया, तो क्लोरोफॉरिफास नाम की भी दवा आती है, उसका भी आप 2 से 2.5 ml का एक घोल बना के 10 लीटर में आप उसको भी बैंगन या टमाटर है उसके पौधों की जड़ों को आप उपचारित करके लगा सकते हैं
2: जी। बिल्कुल, और काफी अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी, और हम अभी आपसे आगे ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जिनका प्रकोप हो सकता है सब्जियों पर। लेकिन डॉक्टर तोमर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस समय हमारे कौन कौन से क्षेत्र के जो किसान हैं कौन कौन सी सब्जी फसल लगा सकते हैं।
4: देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से निरंतर रुक रुक कर वर्षा होती रही है, इससे सब्जी फसलों की रोपाई एवं बिजाई में देरी हुई है या कई किसान भाइयों की पौध तैयार रही है, विशेष करके जैसे मिर्च है, बैगन है, फूल गोभी की अगेती किस्म है, या प्याज की जो पौध से रोपाई होनी है खरीफ प्याज की, या गांठों से प्याज की रोपाई होनी है, और या सीधे बिजाई होनी है मूली की, पालक की, या पत्तेदार सब्जियों में दलहनी फसलों में लोबिया, सेम आदि की जो रोपाई है उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। हालांकि वर्षा किसानों के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी है, और इससे जो जल की गुणवत्ता हमको मिलती है वो बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि अभी हमारे अगर पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो अभी हमारे किसान भाई दिल्ली उसके आसपास या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पालक की जो आल ग्रीन किस्म है या भारती पूसा भारती इन दोनों किस्मों को बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दलहनी फसलों में लोबिया की तो हमारे किसान भाई पूसा धारणी पूसा कोमल पूसा सुकोमल आदि किस्मों का इस्तेमाल बिजाई के लिए कर सकते हैं। अगर हम सेम की बात करते हैं तो सेम में हमारे किसान भाई पूसा सेम 3 पूसा सेम 2 और भाई हमने पूसा की एक किस्म का और विकास किया है जिसको हम पीली थोड़ा पीलापन लिए हुए फली होती हैं उस किस्म को भी किसान भाई DB10 के नाम से उस किस्म को हमने विकसित किया है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां तक बात है मूली की अगेती साग सरसों की अभी किसान भाई वर्षा के स्वभाव को देखते हुए मूली की अगेती किस्मों की बिजाई की जा सकती है या हमारी जो स्थानीय रूप से मिलने वाली किस्में हैं शलजम की जो लाल रंग की होती हैं उनकी बिजाई भी हमारे किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। और मूली की किस्म के बारे में हम बताना चाहेंगे पूसा चेत की एक किस्म है जिसकी बिजाई अभी किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर हम बात करें लाल रंग की छोटी मूली जिसको हम पूसा मृदुला के नाम से जानते हैं उसकी बिजाई भी किसान भाई मेड़ों के ऊपर कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो हमारी सब्जी फसलें हैं जिसमें फूल गोभी है अगेती उनकी पौध तैयार है उसको खेत की तैयारी करके उसको मेड़ों के ऊपर रोपाई किया जा सकता है। और उसकी जो किस्म अभी जिसकी पौध तैयार है रोपाई के लिए उसमें हम बताना चाहेंगे पूसा मेघना कार्तिक शंकर या अगेहनी जो समूह की फूल गोभी की किस्म है किसान भाई उसकी अभी बिजाई के रोपाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मिर्च की बैगन की अगर पौध तैयार है तो अभी थोड़ा देरी हुई है लेकिन अभी भी हमारे किसान भाई मिर्च की और इसकी बैगन की रोपाई अपने खेतों में कर सकते हैं। तो ये तो रही सब्जी फसलों की बात। और अगेती जो गाजर है उसके लिए खेत की तैयारी की जा सकती है जिसमें पूसा वृष्टि किस्म को किसान भाई लगा सकते हैं। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में किसान भाई अपने खेतों में पूसा साग 1 एक पूसा की किस्म है साग सरसों की उसकी बुआई कर सकते हैं। सफेद रंग की जो सलजम होती है पूसा श्वेती उसकी बिजाई कर सकते हैं। और प्याज जो खरीफ के मौसम में लगाने वाली पौध से तैयार है खेत की उचित तैयारी करके उसकी रोपाई अगस्त के पहले सप्ताह में ही करने की सिफारिश की जाती है ताकि उसके कंद नवंबर के पहले पखवाड़े में बाजार में किसान भाई बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर दिनेश अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि हमें सब्जियों का अच्छा उत्पादन अगर हासिल करना है क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में जब हम बात करते हैं कि सब्जियों की प्रमुखता जो है वो बढ़ गई है अब लोगों के भोजन के अंदर सब्जियों का सेवन ज्यादा होने लगा है यहां तक कि लोग अपने घरों में भी जो है वो सब्जियों को उगाने लगे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें किसानों की तो सब्जी उत्पादन से पहले कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो किसानों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है?
5: किसान भाइयों आप अगर सब्जी उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आप सिलेक्शन आप फील्ड आप कौन से फील्ड में आप उगाना चाहते हैं तो ऐसे भूमि का चुनाव करें जहां जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। दूसरा ये होता है कि आप एक ही फसल सब्जी की बार बार एक ही फील्ड में खेत में आप न लगाएं जिससे क्या होता है कि जो मृदा वाहक जो होते हैं रोग होते हैं वो आपके फसल में लग जाएंगे। तीसरे है कि आप खेत को बदलते रहिए जिसको फसल चक्र बोलते हैं उसको आप अपनाइए। साथ में आप ये ध्यान रखिए कि आप बीज का जो आप चुनाव करते हैं वो बीज सर्टिफाइड हो और उसमें ज़्यादा जो बीमारी बीज के द्वारा फैलती है डिजीज फ्री मतलब रोग रहित होना चाहिए तो इसे ध्यान में रखिए जो आप अगर सब्जी का कभी किसी भी सब्जी को जो आप उगाना चाहते हैं वो सब में ध्यान कॉमन होता है रखना होता है। और दूसरे है कि आप कोशिश करिए कि रेजिस्टेंट वेराइटी जो आती हैं जो उसके रोग रहित मतलब रेजिस्टेंट होती हैं उसके लिए आप उगाएं जिससे कि आपको बीमारियां कम लगे और आपका उत्पादन ज़्यादा हो। इसके साथ ही आपको जैसे बीमारी 3 तरह से फैलती है अगर आप ध्यान रखें तो पहला ये होता है कि मिट्टी के द्वारा होता है तो जिससे कि आप फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे कम कर सकते हैं। बीजोपचार करेंगे बीज के द्वारा जो फैलती हैं। और तीसरी चीज़ होती है

0: परंतु यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। आइए चर्चाओं का जो सिलसिला है उसे जारी रखते हुए जानते हैं कैसे हम कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे सब्जियों में लगने वाले अलग अलग कीटों की हम पहचान कर सकते हैं और इससे इसमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए हमें रासायनिक से हटकर, और रासायनिक का भी अगर हमें प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े तो हमें कितना करना चाहिए। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: हाँ, तो मैंने जैसे भी बताया मैडम, बैंगन वाला प्रोडो छेदक का, तो ये मैडम ये कीट जैसा है कि जैसे अर्ली चूट्स को भी नुकसान देता है, तो फलों को भी मैडम, जैसे छोटे फलों या बड़े फलों उसमें आपको छेद दिखाई देते हैं और उसमें से उसका जो विष्ठा होती है, जैसे हम उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं, वो भी बाहर निकलती है, तो ऐसे फल आपको तोड़ के तुरंत नष्ट कर देनी चाहिए। तो और बैंगन में व्हाइट फ्लाइज, सपोज सफेद मक्खी आती है तो छोटे छोटे छोटे व्हाइट फ्लाइज होती है, और ये जैसे ही आप पत्ती उल्टी करोगे, पत्ती के नीचे बैठते हैं तो जैसे ही आप पत्ती को घुमाओगे तो जल्दी उड़ जाते हैं, तो इसको सफेद मक्खी बोलते हैं। फिर टमाटर में एक ब्लाइट नाम की कीट आती है, जो लाल रंग के छोटे छोटे सूक्ष्म से कीट होते हैं, जो पत्तियों के नीचे बैठकर उसमें से क्लोरोफिल को खाते हैं, तो पत्तियों को सफेद से धब्बे पड़ते हैं। अगर आप ऐसे पत्तियों पे जिसमें माइट का प्रकोप हुआ है, उसके ऐसे पत्तों को आपकी उंगली में अगर आप उसमें खींचोगे तो आपके हाथों को भी लाल रंग दिखाई देता है। तो मैडम, और चेपा नाम का एक एफिड, जिसको हम अंग्रेजी में एफिड बोलते हैं या माऊ बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे हरे कलर के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों पे या नई शाखाओं पे आके रस को चूसते हैं पत्तियों से और टहनियों से। ये बैंगन में भी आता है, और जैसे कद्दू और ये जो सब्जी है उसमें रेड पंपकिन बीटल आता है, जिसके जो बॉडी पे जो विंग्स होते हैं वो लाल कलर की होती है, और उसका जो जो उदर भाग होता है जो एब्डोमेन का, वो थोड़ा सा खुला होता है। और बैंगन में एक इपिलेक्ना बीटल भी आता है, जो जैसे छिल्ली जैसा बना देता है पत्तियों को, पत्तियों का क्लोरोफिल खाता है और उसमें सिर्फ लैमिनार जो वेंस होती है वही वैसी की वैसी रहती है
3: जी।
2: तो ऐसे कई प्रकार के कीट है, जैसे मैंने पहले बताया सफेद कीटा जो जमीन के मीन्स पॉलर रीजन को खाता है, फिर पत्तियों पे आने वाली सुंडी है कई प्रकार की, जैसे और भिंडी पे आती है उसपे धब्बे वाली सुंडी आती है, उसपे वो भी परों को भी छेद करती है, और नए वाले जो जो फल आते हैं उसपे भी उसके वो छेद करती है।
3: बिल्कुल डॉक्टर सचिन। डॉक्टर तोमर, क्योंकि बात हो रही है पोषण सुरक्षा को लेकर और सब्जियों में किस तरह के पोषक तत्व जो है वो मौजूद होते हैं, ये जानना हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बेहद जरूरी है, तो ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी सब्जियां हैं, और अब तो विदेशी सब्जियों की खेती भी हमारे देश में प्रमुख रूप से होने लगी है, तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिनका सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का, तो अगर इसके बारे में जानकारी हासिल करें आपसे तो क्या बताएंगे।
4: देखिए, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था ज्योत्सना जी कि प्रति व्यक्ति 300 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है, इन 300 ग्राम में हमको क्या क्या इस्तेमाल करना ये भी जानना जरूरी है। 300 ग्राम में सबसे पहली बात आती है कि आप अपने खाने में पत्तेदार सब्जियों का समावेश करें और उसकी मात्रा रहेगी 125 ग्राम, और आपको 100 ग्राम सब्जियां लेनी हैं, आपको ये जो अपनी जड़ कंदमूल वाली हैं जिसमें आलू है, प्याज है, लहसुन है, शलजम है, चुकंदर है, इनका इस्तेमाल करना है
3: जी।
4: और 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, इनका इस्तेमाल करना है, और इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने ले लिया और एक अगले दिन नहीं लिया, तो आपको नियमित रूप से जब आप 300 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल करते हैं और इस अनुपात में करते हैं कि 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों को और 100 ग्राम आप कंद मूल वाली सब्जियों को और 75 ग्राम आप फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, रेसे की, एंटीऑक्सीडेंट की, उसकी आपूर्ति इनसे संभव है। अब सब्जियों से क्या मिलता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों की, पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी, विटामिन ए, और इसके साथ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, इनके अंदर इनकी उपलब्धता होती है। और हमने अपने संस्थान संभाग में एक विलायती पालक की किस्म विकसित की है
3: जी,
4: जिसको हम पूसा विलायती पालक के नाम से जानते हैं। उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा 74 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, जबकि सामान्य पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियों में इसकी मात्रा 35 से 40 मिलीग्राम के बीच में होती है
3: जी।
4: तो अगर एक व्यक्ति एक दिन में 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल साग के रूप में, पराठे के रूप में, दाल में डाल के, चटनी के रूप में करता है, तो उसके शरीर की जो आवश्यकता है विटामिन सी की, आयरन की, अगर ये देखें कि जो धनिया पत्ती है वो आयरन का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती है, और अगर हम एक चम्मच प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो प्रतिदिन की आवश्यकता आयरन की है उसकी हम आपूर्ति कर सकते हैं
3: जी।
4: और आपने बात कही थी कि अभी किसानों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में भी हमारे लोग जिनके पास गमलों में खेती करते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, छत पे उगाते हैं, उनके लिए पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मिंट है या धनिया है, बथुआ है, ये बहुत अच्छी उनके लिए पसंद हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि सल्फर हमारे शरीर में वर्षा के मौसम में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है
3: जी,
4: और हमारी आपूर्ति कहाँ से हो सकती है, प्रतिदिन प्याज का इस्तेमाल करना है, हरी प्याज का इस्तेमाल करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है, तो उससे हमारे शरीर की जो आवश्यकता है प्रोटीन इसकी, सल्फर की, उसकी आपूर्ति हो जाती है और हमारी त्वचा में होने वाले बहुत सारे रोगों को हम इनसे बच सकते हैं। और हमारे संभाग ने बंचिंग ऑनियन में किस विकसित की है जिसको हम पूरे वर्ष उगा सकते हैं और बिना कीड़ों के, बिना रोग के, क्योंकि उसमें कोई रोग और कीड़ा लगता नहीं है, और उसको एक बार लगा दिया तो बहुवर्षीय प्रवृत्ति होने के कारण उसको हम निरंतर उगा सकते हैं। तो जो हमारे किचन गार्डन में रुचि रखते हैं लोग शहरी क्षेत्रों में या हमारे छोटे शहर हैं, आजकल तो सब्जी उत्पादन का प्रचलन बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी फैल गया है, क्योंकि बड़े शहरों में तो आजकल धूप की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मल्टी स्टोरी बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो गया, लेकिन जो हमारे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें अभी भी एक फ्लोर वाले मकान बनते हैं जिनमें आगे और छत के ऊपर पर्याप्त स्थान रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी जड़ वाली फसलें जैसे गाजर की हम बात करें, गाजर के अंदर लाइकोपीन होता है और पीली गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आंखों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, या काली गाजर है जिससे हमें बहुत सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उसको हम कांजी के रूप में या वैल्यू एडिशन के रूप में बहुत सारी औषधियों में उसके रंग को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, या टमाटर का जो लाल रंग आप देखते हैं ये भी लाइकोपीन की वजह से, विटामिन सी का स्रोत है। इस प्रकार से अनेकों अनेक सब्जियां हैं, बैगन जो हमारे देश की भारतीय मूल की सब्जी है, या करेला है, इनके अगर गुणों को देखें, करेले के अंदर जो कड़वापन है मेमोरडिसिन या चेरिंटिन की वजह से है, और ये हमारे शरीर में विशेष करके डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है,
3: इसलिए करेले का इस्तेमाल कहा जा सकता है। कि कुल मिलाकर कई सारी सब्जियां हैं जो हम अपने देश में जिनकी फसल ले रहे हैं और उनके अंदर कई तरह के गुण जो है वो मौजूद है, जिनका अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बरसात के इस मौसम को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर रोगों का जो प्रकोप है वो हो सकता है, और किसान किस तरह उनकी पहचान करें।
5: इसमें देखिए, इस बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे आप नर्सरी जब उगाते हैं तो नर्सरी में जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, आप फूल गोभी हो गई, ये सभी जो उगाते हैं नर्सरी में ही जो डंपिंग आपकी बीमारी आती है, और जो उसमें क्या होता है, जैसे नर्सरी आप डालेंगे तो उसमें पैचेज बन जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पे ग्रो नहीं करता है, या तो बीज सड़ जाएगा या तो थोड़ा सा नर्सरी होएगा फिर वो पौधा गिर जाएगा। तो एक डंपिंग आपकी बीमारी होती है जो आज गलन बोलते हैं, वो ज़्यादातर जो नर्सरी वाले पौधे जैसे बताया हमने उसके लिए होता है। तो उसके लिए भी क्या है कि आप बीज उपचार करिए उसको, या और नर्सरी जो आप उगाएंगे उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके रेस नर्सरी होगा, जिससे कि पानी के निकास नहीं होगा, पानी निकास हो जाएगा जिससे कि जो बीमारी डंपिंग आप होती है वो नहीं लगेगी। तो ये सभी को नर्सरी उगाने के आती है। इसके बाद जो बीमारी आती है, जैसे आपके भिंडी है, येलो मजेक की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सभी है बरसात के समय में भिंडी में येलो मजेक का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, या उसमें विल्टिंग आ जाती है, फंगस के द्वारा बीमारियाँ आती हैं। तो जैसे येलो मजेक का आता है तो उसमें वेक्टर का, जैसे व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई को जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि कीटों का कैसे प्रबंधन करेंगे, तो व्हाइट फ्लाई को अगर आप नियंत्रित करते हैं तो उससे आपका जो बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा वो नहीं होगी। और दूसरे में बीमारी जैसे टमाटर अगर आप उगाना पा रहे हैं तो टमाटर में बहुत सी बीमारी लगती है, नर्सरी से स्टार्ट करके फलों तक में लगता है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जैसे अगर आप इस समय पहाड़ पे आप जाइए, पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पर आपको फाइटोथोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी उसमें टमाटर जो आपके यहाँ आ रहा है वहीं से आता है, जो इसमें जो आ रहे हैं, तो फाइटोथोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको आप स्प्रे जैसे करेंगे तो उसको छिड़काव करना है, तो मेटालेक्सी दवा आती है या रिडोमिल की दवा आती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको फाइटोथोरा की, या एक अल्टरनेरिया ब्लाइट टमाटर में आती है वो आती है, दूसरा एक बैक्टीरियल लीफ स्पॉट एक बीमारी आती है। तो ये सभी बहुत सी बीमारियां हैं। एक बहुत ज़्यादा इसमें फल सड़ने लगता है, जो टमाटर में मेजर प्रॉब्लम आती है, जो आई बॉट उसको कहते हैं, आई स्पॉट आती है बीमारी, वो भी फाइटोथोरा के द्वारा होती है। तो उसको जैसे अभी स्टेकिंग करके करते हैं तो रखेंगे, तो जो जमीन के सतह पर जो फल होंगे उसको अगर नई जमीन पर नहीं टच करेंगे तो उससे वो बीमारी से बच सकते हैं, और साथ में मैंको जो दवा आती है उसको स्प्रे करते रहेंगे तो सबसे बचा जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट है, मिर्च में भी जैसे लीफ कर्ल की बीमारी आती है, वो भी व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है
3: जी।
5: तो ये सभी का सभी फसलें करीब करीब सब प्रभावित होती हैं रोगों से, और ये रोग आपके उत्पादन को कम करते हैं, साथ साथ जो न्यूट्रिएंट वैल्यू सब्जी की होती है उसको भी कम करते हैं। तो इससे अगर आप न्यूट्रिएंट को, पोषण को ध्यान में रखते हुए आपको रोगों का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब अगर आप प्रबंधन ठीक से करेंगे तो इससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के उत्पादन मिलेगा, जिससे आपको अधिक पोषण साथ साथ अधिक आपको आमदनी होगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी करना है
3: जी। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कई बार फसलों का अधिकतर उत्पादन हासिल करने के लिए, या कहीं अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए, जल्दी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमारे जो किसान हैं वो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, या फिर कहें कि जैविक तरीका ना अपनाकर अगर कीटों का प्रबंधन करना चाहें तो वो अधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि फसल को भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य को भी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, अगर कीटों का प्रकोप हुआ है तो कीटनाशकों का प्रयोग करें या कोई जैव तरीका भी है उसका प्रबंधन करने का?
2: मैडम, जैसे कि आपने बताया कि जैसे एसिडिटी जो प्रॉब्लम है उससे मानव स्वास्थ्य पे बहुत हानि पहुंचती है, तो सबसे पहले जब कीट लगता है मैडम तो जरूरी नहीं आपको कीटनाशकों का उपयोग करना है, क्योंकि एक आर्थिक दल स्तर एक सीमा हमने तय की है वैज्ञानिकों ने हर क्रॉप में। जैसे बैंगन में अगर प्ररोचेदक लगा है तो उसकी अगर स्तर प्रकोप का स्तर अगर 5% से कम है तो आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे काफी सभी डिसीजेस के लिए या फिर कीटों के लिए ये स्तर निर्धारित की गई, तो उससे ऊपर अगर वो दर स्तर जाती है तभी कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। और सबसे पहले जब हम कीटनाशकों का जब चयन करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो दवाएं वही खरीदें, और सर्टिफाइड और जो ताकि जानी मानी दुकानें वहां से हम दवाइयां खरीदें, और जब भी दवाइयां खरीदते हो तो उसका हम बिल लें, और दवा जैसे दवा जब बनती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो उससे हम 2 साल तक उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी किसान वहां देखिए कि अगर आपके पास 2 साल है कि नहीं। ज्यादातर ये देखा है कि जब किसान खरीदता है दवा तो उसके 3 या 4 महीने बचे हुए होते हैं, तो ऐसी दवा ना ले, और जब भी दवा लेते तो रसीद ले। और जैसा आपने बताया कि बहुत सी जो जैविक कीटनाशी हमारे पास है, जैसे साहब ने भी पहले बताया ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, ये जैसे फफूंद को मारती है तो ये सूत्रकृमि के विरुद्ध भी अच्छा काम करती है। और एजरिरेक्टिन जैसे नीम ऑयल में जैसे पाया जाता है, नीम ऑयल आप मार्केट में 300 ppm का है, 10,000 ppm का है, 50,000 ppm का भी है। नीम ऑयल का आप काफी जो कीट है जैसे व्हाइट फ्लाई है, मावा है, फिर बड़ो छतक है या टमाटर में फल छेदक है, फिर मिर्च में थ्रिप्स है, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर 300 ppm की अगर नीम ऑयल है आपके पास तो आप 2 ml प्रति लीटर का छिड़काव कर सकते हैं। अगर 10,000 ppm है तो आप 5 ml प्रति लीटर। अगर 50,000 ppm वाला नीम ऑयल आपके पास तो 0.5 ml हम छिड़काव कर सकते हैं। और जो बैंगन में और टमाटर में जो फल छेदक है, जैसे उसके लिए मैडम एक न्यूक्लियो पॉलीट्रेटिस वायरस नाम का एक विषाणु है, तो आप उसका 250 लारोन एक्सट्रैक्ट का हम छिड़काव करते हैं तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं
3: जी।
2: और जैसे सफेद गिटार का जो प्रकोप होता है आजकल बरसातों में, तो उसके लिए हमारे पास मेटराइजियम एनिसोप्लिया नाम का एक बहुत से अच्छा फफूंदनाशी है, तो हम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के भी आप जड़ों के पास उसका डाल सकते हैं, फिर उसका आप उसको बीजों को या रोगों को भी आप उपचारित कर सकते।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हमारा सागीय संभाग विज्ञान सब्जियों की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने में कार्य कर रहा है और हमने इस दिशा में काफी प्रगति भी हासिल की है। हमारे संभाग में हमने बैगन की आप आमतौर पे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों में देखते हैं कि आपको नीले रंग का बैगन ही अधिकतर मिलता है
2: जी।
1: हमने सफेद रंग का बैगन हरे रंग का बैगन का विकास किया है जो पोषण दृष्टि से दूसरे अन्य बैगनों से बहुत बेहतर है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट है फ्रैक के माध्यम से या क्यूप्रेक के माध्यम से टोटल एंटीऑक्सीडेंट हमने इनमें देखा है। तो हमारी जो दो किस्में पूसा हरा बैगन पूसा सफेद बैगन इनको हमने पोषणता की दृष्टि से इनका मूल्यांकन करके पाया कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत अधिक है। दूसरा हमने गाजर की किस्म में सुधार किया। जैसे आप देखते हैं गाजर कम लाल होती है तो हमने पूसा रुदिरा एक किस्म है जो अत्यधिक लाल रंग वाली होती है जिसमें अंदर लाइकोपिन की मात्रा अधिक होती है
2: जी।
1: तो कम खाने से भी हमें अधिक पोषण मिलता है। या काले रंग की गाजर असिता हमने विकसित की है
2: जी।
1: हमने बात की कि पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैसे विलायती पालक की बात की ऐसे तो हमारे संस्थान के द्वारा पालक में चार किस्मों का विकास किया गया है पूसा आल ग्रीन भारती और ये पूसा ज्योति और पूसा हरित। तो ये चारों किस्में विटामिन सी विटामिन ए के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि बथुआ एक हमारा खरपतवार होता है और उस खरपतवार को हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई किसान भाई चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी उत्तर भारत की सर्दी के मौसम में प्रमुख पत्तेदार सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती है। इसमें हमने सुधार करके दो किस्मों का विकास किया पूसा बथुआ एक पूसा ग्रीन। ये दोनों जो है ढाई से तीन मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। लंबे समय तक इनके पत्तों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं कटाई करना उपयुक्त है और इनकी पैदावार सामान्य जो हमारा जंगली बथुआ है उसे अधिक होती है। अधिकता के स्थिति में इसका इस्तेमाल चारे के रूप में भी किया जा सकता है और इसका वैल्यू एडिशन करने की भी अपार संभावनाएं हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि बथुआ सर्दी के मौसम में उपलब्ध होता है नवंबर से लेकर के फरवरी तक मिलता है। अगर हमको जुलाई अगस्त में भी बथुआ खाना है तो इसका हम सुखा करके इसका वैल्यू एडिशन करने की संभावना है। या ऐसे ही हमने साग सरसों आमतौर पे आप देखते हैं जो बाजार में साग के लिए साग सरसों मिलती है
2: जी
1: वो किस्में होती हैं जो हम तेल के लिए उगाते हैं और उनको जब छीदा करते हैं या उसी को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पूसा सागवन किस्म का विकास किया जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक है रेशे की मात्रा कम है गलती तैयार जल्दी तैयार होती है। ऐसे ही हमने भिंडी में एक किस्म का विकास किया पूसा भिंडी पांच जिसमें विषाणु रोग नहीं आता है। ऐसी स्थिति में किसान को छिड़काव कम करना पड़ता है उत्पादक बहुत देती है और इस देश में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इसको बड़े पैमाने पर इसका बीज उत्पादन हो रहा है और इसको हम किसानों तक ले जाने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता की किस्में जिसमें विषाणु रोग के प्रति रोक दे तो किसान को कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़े और हमारी ये सोच भी है कि हम इस किस्म के साथ साथ रोग विषाणु रोग क्षमता के साथ साथ कीड़ों के प्रति भी रोग रोधिता का विकास भिंडी में करें ताकि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं ब्राउन प्लांट होपर है या व्हाइट फ्लाई है या जेसिड है माइट्स हैं उनको भी हम कम कर सकें। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि लोबिया एक हमारी किस्म लोबिया आग देखते हैं उसमें पीत वरण रोग बहुत प्रचलित है बहुत नुकसान करता है। हमने किस्म का विकास किया पूसा धारणी जिसकी पोषण गुणवत्ता बहुत अच्छी है 20 से 25 सेंटीमीटर आकार की फली होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा 6.5 से 7% होती है 100 ग्राम के उसपे देखें
2: जी।
1: तो ये उपलब्धि हमारे संभाग की रही है
2: बिल्कुल। तो विज्ञान तरह के जो पोषण सुरक्षा कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश अब आपसे मैं बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन

0: है कि आप उसको चाहे हम उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करें या उसमें मृदा में भी डाल सकते हैं। मृदा में डालने का तरीका ये होता है कि आपको जैसे फार्मुलेशन होता है ट्राइकोडर्मा का, 1 किलोग्राम फार्मुलेशन है, 100 किलोग्राम गोबर की खाद में सड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें मिला करके 1 हफ्ते तक छाए में उसको रखिए और उसको पलटते रहिए जिससे कि उसमें एरिएशन हो और उसमें जो कवक की ग्रोथ है हरी हरी उसमें आ जाएगी। फिर उसको मिक्स करके आप उसमें खेत में डाल सकते हैं
1: जी।
0: तो करीब 3 किलो के लगभग होता है जो 1 हेक्टेयर के लिए काफी होता है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो मृदा के द्वारा बीमारियां फैलती हैं जो आप केमिकल प्रयोग करते हैं उसको बचाने के लिए आप इसका ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास का फार्मुलेशन कर सकते हैं जिससे कि आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से स्प्रे करना है तो सुडोमोनास या बेसिलस का फार्मुलेशन आप 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके और उसको आप स्प्रे करिए, जब आप बीमारी लगने के पहले भी कर सकते हैं, बीमारी लगने के बाद भी कर सकते हैं, तो तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ठीक है, तो अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कीटों का प्रकोप फसल पे ना हो पाए इसके लिए कई सारे विकल्प हैं और उनमें से एक है ट्रैप्स। तो कौन कौन से ट्रैप्स हैं जिनका प्रयोग जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं जिससे कि फसल के ऊपर कीटों का कम से कम जो है वो प्रकोप हो? बहुत संक्षेप में चाहूंगे उत्तर।
2: जैसे हम बैंगन हो, टमाटर हो या फिर मिर्च हो, इसी जब नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी में मैडम एक येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं, ये मार्केट में भी उपलब्ध है या किसान खुद बना भी सकता है। आपके पास अगर किसान के पास अगर कार्डबोर्ड है तो उसको पीला रंग लगा के उस पे वो ग्रीस चिपका के वो नर्सरी में लगा सकता है। तो सफेद मक्की हो या फिर चेपा हो या फिर थ्रिप्स हो, थ्रिप्स के लिए मैडम ब्लू कलर के ट्रैप्स यूज किए जाते हैं जो मिर्च में आती है। तो ये क्या है, जो नर्सरी में जो कीट प्रारंभिक अवस्था में जो आता है वो उसको उसके तरफ आकर्षित होकर उसको चिपक जाता है। तो यही पौध जब आप मेन फील्ड में जाएगी तो उस पर कीट रहित होगी। और जब खेत में जैसे हम पाए जाते हैं तो फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं मैडम, जैसे बैंगन में प्ररोह छेदक के लिए अलग फेरोमोन ट्रैप्स है, फिर टमाटर में जो फल छेदक है हेलिकोबार्पा नाम की जो कीट आती है उसके लिए अलग फेरोमोन ट्रैप है, और जो भिंडी में जो फल छेदक आता है उसके लिए अलग है। तो इसकी मात्रा मैडम 5 से 10 ये ट्रैप आपको पर हेक्टर लगाने हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मादा कीट होती है उसी प्रजाति की तो वो समझ के नर कीट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो ट्रैप में अंदर फंस के वो मर जाते हैं या फिर ट्रैप में आपको अगर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड है तो वो भी वहां मर जाते हैं। तो उसका फिर जनरेशन वही रोक के आपको फिर हानि कम होती है। और बाकी ट्रैप्स है जैसे कद्दू वर्गीय जो सब्जी है उसमें मैडम एक फ्रूट फ्लाई नाम की एक कीट आती है, तो उसके लिए आपको मिथिलीजिनर ट्रैप्स है, जैसे आपके पास अगर खाली बॉटल जो होती है पानी की उससे भी आप बना सकते हैं। तो उसमें मिथिलीजिनर नाम का एक जो रसायन है वो यूज होता है, तो उसकी मात्रा उसको अल्कोहल में मिलाना है और अल्कोहल में ही आपको स्पिनोसेट नाम का एक कीटनाशी उसको डालना है। तो अल्कोहल की मात्रा 6%, 4% उसमें होना चाहिए मिथिलीजिनर और 1% उसमें स्पिनोसेट। तो इसके इसमें आपको जो प्लाईवुड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको आप इसमें डुबो कर रख सकते हैं 3 से 4 दिन। तो ये अगर खाली बॉटल में अगर फील्ड में अगर लगाओगे तो उसमें उसके जो नर होते वो उसके आकर्षित होके उसमें मारे जाते हैं। तो ये मैडम फल मक्खियों के लिए बॉटल ट्रैप्स हो गए, फिर मैंने पहले बताया कि येलो ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स हो गए, ब्लू स्टिकी ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप। तो ये कई प्रकार के ट्रैप्स है आप खेतों में लगा सकते
3: जी। बिल्कुल किसान साथियों, अभी आपने कीटों के प्रबंधन को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो फसल है उसमें अलग अलग प्रकार की जो कीटें हैं, जो मक्खियां हैं, वो हमारी फसलों को खराब कर देती है। तो किसान साथियों, आज के इस प्रोग्राम में आपने जाना कैसे हम अलग अलग जो ट्रैप है उसके माध्यम से कैसे इन कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि जो हमें जो कीट हमें हमारी फसलों को खराब कर रहे हैं उनके लिए हमको एक जाल बिछाने की आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार की सब्जियों में अलग अलग प्रकार की कीट आते हैं और उसके हिसाब से हम जाल बिछाते हैं। जो जाल होता है उसमें अलग अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उस पर हम इससे हमको ये फायदा होगा कि जो रसायन है उसे हमें खेतों में हमारी फसलों पर डालने की आवश्यकता नहीं है। जहां हम लाइट लगाएंगे, लाइट के पास में जो ट्रैप लगाएंगे उसी ट्रैप में वो सारे किया है ताकि उसमें चिपक जाएंगे और जिससे वो सारा ध्यान जो ट्रैप की तरफ आकर्षित होगा और वहीं हम इन ट्रैप का यूज करके हमारी जो कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार का मंच है नए टैलेंट्स के लिए, नए गायकों के लिए, नई गायिकाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का बहुत बहुत लुत्फ उठा रहे हैं और आज हमें मौका मिल रहा है उनके गीत सुनने का, उनके संगीत को हमें भी मजे से एंजॉय कर पाए, ये हमें आज मौका मिल रहा है। और आज हमारे साथ जो गायिका है वो है रुबीना दास जी। बाकी रुबीना जी अपने बारे में खुद हमें बताएंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके गीत भी सुनेंगे। रुबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी धन्यवाद। नमस्कार समीर जी, और आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रुबीना, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैं बैंगलोर में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हूँ। और मैं अपने बारे में ये बता सकती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ या होममेकर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मैं खुद भी योगा करती हूँ और दूसरों को भी योगा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ।
0: बहुत खूब,
1: मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब रुबीना जी। हम सभी जानते हैं दोस्तों, योगा हमारे देश से ही पैदा हुआ और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा प्रभावशाली है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हमारे दोस्तों में से ज्यादातर लोग योगा को प्रैक्टिस करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करना चाहिए, और अब चाहें तो रुबीना जी से संपर्क कर सकते हैं। रुबीना जी हमारे बीच में एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे फ्रेंड और अब हमारी फैमिली मेंबर भी हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को रुबीना जी की ही आवाज में गाए हुए इस बहुत खूबसूरत गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया रूबीनाथ जी, बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हुए आपसे एक इंपॉर्टेंट, एक मजेदार और बहुत सिग्निफिकेंट सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझे अपने जीवन के कुछ 3 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो? 3 लोग?
1: 3 लोग
0: जी।
1: ओके, एक सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आई है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और दूसरे हैं मेरे माताजी, उनको भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ।
0: जी।
1: वो भी नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर है। और तीसरे हैं बहुत, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस अभी अभी हुई हूँ, अभी मतलब कुछ दिनों से, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी।
0: क्या बात है,
1: उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ।
0: तो ऐसी क्या बात है प्रधानमंत्री मोदी साहब में जिससे आपको लगा कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं?
1: उन पॉजिटिविटी आती है, वो हमारे देश को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत पीछे थे हम। वो पॉजिटिविटी आती है उनको देखने से, उनकी सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे लीडर ऐसे ही होने चाहिए।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने जी।
1: एज अ पर्सन मैं उनको बहुत मान देती हूँ।
0: जी, मैं भी वही कह रहा हूं मैम कि एज अ पर्सनैलिटी, ऐसे एक व्यक्तित्व, जितना पावरफुल इंसान वो दिखाई देता है, बस उसको देख के मजा आ जाता है। इतनी बड़ी उम्र में भी कितनी पावर उनमें रहती है, कितना काम वो करते हैं,
1: बहुत ऊर्जा
0: रहती है उनके पास। वो तमाम जगहों पर जाकर वो काम करते हैं जो इतनी उम्र पर पहुंचकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर आदमी नहीं करना चाहता या नहीं झुकना
1: नहीं
0: चाहता, लेकिन वो बहुत प्यारे ढंग से हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत खूब कहा आपने।
1: जी। उनसे मुझे योगा के लिए भी इंस्पिरेशन उनसे भी ज्यादा मिली है।
0: क्या बात,
1: इसीलिए मैं ज्यादा उनको पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही आपने। वो हमारे देश की पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रूबीना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। रुबीना जी, आपके जीवन के कुछ सबसे सुखद, बहुत ही प्लेजेंट कुछ पल रहे होंगे, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सुखद पल, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था
0: जी,
1: मेरा बेटा जब आया था मेरी गोद में, वो तो सबसे अच्छा सुखद पल होता ही है माँ के लिए।
0: जी जी जी।
1: और जबकि मैं एक बेटी चाहती थी, पहला बच्चा
0: ओके
1: लेकिन भगवान ने ये मुराद भी मेरी पूरी कर दी, तो मेरी सेकेंड चाइल्ड जब भी मेरी बेटी हुई है, उस टाइम भी मुझे बहुत ही खुशी मिली।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और दोनों बच्चे मेरे काफी बड़े हो गए हैं, दो में एक माँ के लिए वो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हाँ वो आज बहुत अच्छा ऑनेस्ट हैं अपने जिंदगी में और बहुत आगे भी आ चुके हैं। दोनों ही जॉब करते हैं, बैंगलोर में ही रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: और एंड दे आर वेरी नाइस एंड बहुत मान रखते हैं पेरेंट्स का, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है।
0: बहुत खूब,
1: दोनों को पाके मैं बहुत खुश हूँ।
0: अमेजिंग, बहुत खूब रुबीना जी। दोस्तों आपने सुना, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कहीं पढ़ी थी मैंने, फिर उसको लेकिन मैंने अपनाने की कोशिश की। देखिए हम लोग सब एक दूसरे से सीख के ही सीखते हैं, कोई ऊपर से ज्ञान हमारे पास नहीं आ जाता। तो हुआ यूं कि एक मित्र ने मेरे से पूछा कि आपकी माँ कहाँ रहती हैं, तो मैंने उनको बताया वहां रहती हैं, जहां भी रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो माँ मतलब आपके पास रहती हैं। मैंने कहा जी नहीं, माँ मेरे पास नहीं रहती हैं, मैं माँ के पास रहता हूं।
1: पास रहता हूँ
0: मैं, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं माँ से दूर जा सकूं या माँ को रख सकूं, मेरी माँ मुझे अभी भी रखती है।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने, और ये बात मेरे दोनों बच्चे भी यही बोलते हैं, हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं।
0: क्या बात है, सो क्यूट, सो क्यूट, दैट इज सो ब्यूटिफुल। दोस्तों सुनिए कितनी प्यारी बात है ये। चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रवीना जी की आवाज में, जो मैं उनके दोनों बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुन।

0: रुबीना जी, आपके जीवन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सबक आपने सीखा और आप हमें बताना चाहेंगी कि वो सबक सब लोग सीखें, ऐसा कौन सा सबक होगा?
1: सबक तो जिंदगी तो बहुत सारा सबक हम लोगों को सिखाती है
0: जी।
1: हाँ, जब भी मैं छोटी थी तो मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हमेशा मेरे मन में था कि मैं कुछ करूं, लेकिन शादी थोड़ी जल्दी हो गई तो उसके बाद मैं हाउसवाइफ बन के रह गई। फिर बच्चों को बड़ा किया तो, लेकिन मन में था कि मैं कुछ करूं, मेरे अंदर वो वुमेन एम्पावरमेंट का भाव था, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी। और योगा, उस टाइम मैं थोड़ी लेटर एज में योगा में योगा को सीखी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी और मैं उसी में आगे बढ़ती गई। योगा का ट्रेनिंग लिया, इंस्ट्रक्टर बनी और अभी मैं वही चाहती हूँ। सारे लेडीज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होना सीख लीजिए। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम कितना भी, हम घर भी संभाल सकते हैं और बाहर भी संभाल सकते हैं। तो ये सबक मैं अपनी जिंदगी से सीखी कि हाँ, हम लेटर एज में भी हम चाहें तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बिल्कुल ठीक कहा रुबीना मैम आपने, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी किताब अभी पीछे कुछ दिनों काफी पॉपुलर हुई थी जिसका नाम है इकीगाई, जैपनीज कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। उसमें बात यह है कि अगर हमारी जिंदगी का कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है और उसकी तरफ हम चलते रहते हैं, कुछ स्किल डेवलप करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, जैसे रुबीना जी ने योगा सीखा, उसी तरीके से अगर हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो गाना गाना ही क्यों ना हो, हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य मिल जाता है और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और जाहिर सी बात है,
1: खूबसूरत हो जाती है। सही में, ये आपने सही बोला, वो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।
0: और जाहिर
1: सी लाइन मुझे बहुत पसंद है।
0: जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है मैम, आपने एम्पावरमेंट की बात की। जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो हम अपने अंदर से एम्पावर्ड होते हैं, अपने अंदर से इतने ताकतवर बन जाते हैं कि दूसरे लोग फिर हमारी तरफ सहायता के लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए देखते हैं। और बस यही तो उद्देश्य है एक मानव जीवन का। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने मैम। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत रुबीना जी की इस प्रतिभा की तरफ।

0: बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर। चलिए मैम, कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। आपकी कोई पुरानी सी याद है जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हो, आपको अक्सर याद आ जाती हो, क्या वो हमें आप बताना चाहेंगे?
1: पुरानी सी यादें, पुरानी यादें तो किसको पसंद नहीं है, है तो बहुत सारी, खजाने ही हैं।
0: जी
1: हाँ, लेकिन कॉलेज के टाइम के जो दोस्तों के साथ जो हम लोग जो टाइम बिताते हैं वो बहुत ही ज्यादा यादगार बनी रहती है। और ये भी मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे गाना सिखाने के लिए लेके जाती थी और मैं थोड़ा पीछे भागती थी। मुझे और मम्मी को मुझे पता था, वो चाहती थी कि मैं गाना सीखूं, जबकि मैं थोड़ा पीछे भागती थी और मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी गाना सीखने के लिए। जब मैं छुपती थी तो मम्मी क्या करती थी, मेरे टीचर को घर पे बुला लेती थी। तो और क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी तो सारे टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे, वो खुशी खुशी आ भी जाते थे और मैं छुप नहीं पाती थी फिर।
0: वाओ,
1: इस तरह से मम्मी ने मुझे थोड़ा, ये बचपन का कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो अभी मुझे याद आती हैं, तब भी मैं मम्मी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि तभी मुझे गाना थोड़ा बहुत जो सिखाई थी और मैं छुप छुप के ना सीखने की कोशिश करते हुए भी कुछ सीख ली थी, आज इस मुकाम पर हूँ कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: क्या बात है।
1: और ये मेरी हॉबी की तरह भी है, मैं गाना सुनती भी हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। दोस्तों आपने सुना, तो अगला गीत मैं रुबीना जी की माता जी को डेडिकेट करना चाहूंगा, जिन्होंने रुबीना जी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको गाना सिखाया, उनके लिए हमेशा मोटिवेशनल बनी रही। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अच्छा रुबीना मैम, ये बताइए आपके सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार जी हैं।
0: ओके
1: मैं उनके गाने को बहुत एंजॉय करती हूँ, वो जो दिल से गाते हैं। वैसे तो मुझे मुकेश जी, मोहम्मद रफी जी और सारे सिंगर्स पसंद है, लेकिन किशोर कुमार जी का जो अल्हड़पन है गाने में वो मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं तो हमेशा लता दी को दिल से बहुत बहुत ज्यादा चाहती हूँ, और लेकिन मैं आशा जी के ज्यादा फैन हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। आशा जी की क्यों फैन है आप?
1: आशा जी की भी वही अल्हड़पन
0: बिल्कुल ठीक
1: उनकी
0: कहा मैम आपने,
1: मुझ में भी वही अल्हड़पन है, इसीलिए।
0: बहुत खूब।
1: वैसे तो मैं सबको पसंद करती हूँ, गाना तो सबका गाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उनकी जो जॉयफुलनेस है गाने के लिए, जो जिस जॉयफुलनेस से वो लोग गाते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है।
0: बहुत खूब कहा मैम आपने, बहुत ही प्यारा टर्म यूज किया, जॉयफुलनेस। आशा जी के गानों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आवाज की लरज में जो जॉयफुलनेस सुनाई देती है वो बहुत अमेजिंग है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक प्यारा प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया। रुबीना जी, बचपन की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स आपके रहे होंगे, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर्स थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे मैथ्स टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे, और उनकी वजह से मेरा मैथ्स बहुत सुधर गया था और मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आती थी, और मेरे मैथ्स टीचर भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। फिर जब भी मैं कॉलेज में गई तो मेरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मुझे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत पसंद किया क्योंकि मेरा अच्छा होता था इकोनॉमिक्स में।
0: ओके।
1: और फिर मैं ये भी जानती हूँ और ये भी मेरा जीवन का फंडा है कि हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, सबसे बहुत कुछ सीखते हैं, सभी टीचर हैं एक दूसरे के। तो मैं अपने बच्चों को भी अपना टीचर मानती हूँ, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत बात तो, कही आपने।
1: हाँ, लेकिन हाँ, ये दो टीचर स्कूल के, एक मेरे मैथ्स टीचर और कॉलेज के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, ये मेरे अभी भी मुझे बहुत पसंद है। दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ दोनों को, और उनके वजह से आज मैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उनको मैं सोचती हूँ उनके वजह से ही हुआ है।
0: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात है। दोस्तों, चलिए अगला गीत रुबीना जी के ही इन दो टीचर्स को डेडिकेट करते हुए सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी गायकी। तो रुबीना जी, मुझे बताएं ना कि कौन से ऐसे तीन शब्द हैं, कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं?
1: जी जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
0: ऑलराइट।
1: मैं लाइफ के हर डिसीजन को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ। दूसरी चीज है, मैं बहुत, आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं ऑनेस्टी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
0: ओके।
1: और तीसरी है, मैं बहुत डिटर्मिंड हूँ। जो चीज मैं सोचती हूँ उसको मैं करके ही रहती हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगी तो पहले से बता देती हूँ,
0: क्या बात,
1: लेकिन
0: है?
1: हाँ, कोशिश करती हूँ कि वो करके ही रहूं।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात कही है। मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई मैम, जो आप डिटर्मिनेशन की कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन वैसे भी किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत ही पावरफुल स्किल होता है। हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट भी होता है। बहुत खूब
1: जी, थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं रुबीना जी के डिटर्मिनेशन के ऊपर एक प्यारा सा गीत।

0: और रुबीना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और नए जो गायक आ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी जी, जरूर देना चाहूंगी। और प्रोग्राम सुनने वालों को तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आपने मेरा गाना सुना और सराहा, इसके लिए भी दिल से बहुत शुक्रिया है। और जैसे मैं बोली, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा मोटो है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप अपने शरीर को, शरीर के प्रति सजग रहिए एंड आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा अगर आप योगा, प्राणायाम या कोई किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करते रहें। वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर और मन को बैलेंस करता है योगा। तो मैं तो हमेशा बोलूंगी योगा, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो योगा के लिए ही बोलूंगी। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। गाना गाते रहे जो मन के लिए बहुत ही अच्छा है, और गाते रहे जो आपको शांति भी देती है, मन को शांति भी देती है। लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहिए।
0: बड़ी ही प्यारी बात रुबीना जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्थ जो होती है वो पहली वेल्थ होती है। अगर हमने उसे संभाला तो बाकी की सारी वेल्थ फिर अपने आप पीछे आ ही जाती है। बड़ी ही खूबसूरत बात कही रुबीना जी आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। ये लीजिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा सौंधा सौंधा सा सुगंधित बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेकर आज के कलाकार का मैं हाजिर हूं आपके पास। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो प्रतिभा हमारे साथ हैं, उन्होंने किसी और फील्ड में अपनी एक्सपर्टाइज हासिल की, लेकिन प्यार हुआ संगीत से, मोहब्बत हुई म्यूजिक से, तो बस उसमें भी निकल पड़े। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर धनंजय साहब का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर धनंजय से कि आप सभी के मुखातिब होइए और अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कहाँ हैं वो, क्या करते हैं वो, क्या करते हैं वो। तो डॉक्टर धनंजय सर, वेलकम टू अवर प्रोग्राम एंड प्लीज टॉक टू अवर लिसनर्स, बात कीजिए उनसे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन रेडियो एसएन। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो पेशे से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जो अभी शिरडी के पास है, वहाँ मैं पिछले 30 साल से एज अ हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत आज खुशी का पल है, क्योंकि गायक के रूप में जब आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती है, और जैसे आज मुझे रेडियो एसएन ने आमंत्रित किया है, जो यो ये किसी सम्मान से कम नहीं, तो मैं बहुत उत्साहित हूं और फिर एक बार सभी श्रोताओं का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं।
0: बहुत खूब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने जाना कि डॉक्टर धनंजय एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट हैं। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन दिल से संगीतमय है, म्यूजिक के साथ ओतप्रोत। चलिए शुरू करें, तो उनके गानों का भी जरा लुत्फ उठाएं। पेश करता हूं ये गीत, और उसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास वापस आएंगे।

0: बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। चलिए पहला ऐसा करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में जानते हैं, आप एज अ पर्सन। जी
1: जरूर जरूर। तो मैं अभी यहाँ संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोपरगांव में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, वहां से मैंने पढ़ाई की, जैसे बीटेक और एमटेक की डिग्री।
0: जी।
1: उसके बाद जैसे मैंने काम करना शुरू किया तो काम करते करते मैंने बाद में पीएचडी डिग्री भी हासिल की। तो यहाँ और एक महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज है एसजीजीएस नांदेड़, वहां से मैंने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में मैंने पीएचडी भी पूरा किया। और पिछले मोर देन 30 ईयर्स मैं टीचिंग एंजॉय कर रहा हूँ, रिसर्च एंजॉय कर रहा हूँ। और हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसे बहुत सारे क्लब्स हमने शुरू किए हैं समीर जी।
0: जी।
1: उसमें एक जो हमारा क्लब है उसका नाम है सास ग्रुप। तो पिछले 15 साल से मैं वो क्लब एक्चुअली देख रहा हूँ। तो जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा आते हैं जिनमें जो सिंगिंग पोटेंशियल जिन बच्चों में है उनको थोड़ा हम ग्रूम करते हैं। और बहुत सारे इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर होते हैं, तो बच्चे जैसे शुरू में आते हैं तो बहुत नर्वस रहते हैं, उनको माइक्रोफोन पकड़ना भी नहीं आता, वहां से उनका जर्नी शुरू होता है। एंड वी कुड सी अगेन लॉट ऑफ वंडर्स, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बहुत अच्छे करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हॉबी क्लब्स हमने कॉलेज में शुरू किए हैं। अबाउट माई फैमिली, एक्चुअली मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा और एक बेटी।
0: जी।
1: बड़ी बेटी है वो डॉक्टर है, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और जो बेटा है वो भी आईटी इंजीनियर है। तो दोनों ही अभी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। मेरी बेटी क्लिनिक में काम कर रही है, बेटा इंडस्ट्री में काम कर रहा है। दोनों अभी वो पुणे में है और हम यहाँ अभी मैं विथ माय वाइफ हम यहाँ कोपरगांव में हैं।
0: जी बहुत खूब। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें आपके बारे में मिली। तो किस तरीके का पारिवारिक आपका स्ट्रक्चर है, किस तरीके की पढ़ाई लिखाई, किस तरीके का सांस्कृतिक धरोहर आप लेके चल रहे हैं, इस चीज को जानकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, और फिर वो जो आपने इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपके कॉलेज में आपने हॉबी क्लब्स या उन चीजों को भी आप प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को उस तरफ भी ले जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि हार्ड स्किल तो हो गई, हमें नई जनरेशन को सॉफ्ट स्किल भी देनी है, तभी
1: बराबर
0: उनका भविष्य सही बनेगा।
1: यस यस, एक्चुअली एकेडमिकली हमारा कॉलेज बहुत स्ट्रांग है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन पुणे यूनिवर्सिटी।
0: जी।
1: और एकेडमिक्स के अलावा हम ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ भी देखते हैं। एंड दीज हॉबी क्लब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट रिक्रिएशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। तो जैसे दिन भर हम एक्चुअली लैब में रहते हैं और उसके बाद 6 बजे के बाद फिर हमारा म्यूजिक डांस या सब शुरू होता है। तो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली हमने संजीवनी में शुरू किए हैं।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए पहले हम संगीत में संगीत का मजा लें। डॉक्टर धनंजय साहब ने इतनी मेहनत से हमारे लिए इन गीतों को तैयार किया, उन्हें सुने, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब धनंजय सर, मुझे ये बताइए।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। ऐसा कोई सपना है आपका बचपन से लेकर आपने आज तक देखा हो जो आपने अभी तक किसी को बताया ना हो, तो आज मौका है अपने उस सपने को उजागर करने का, और हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि वो सपना सच हो जाए।
1: एक्चुअली आई एम अ पैशनेट फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर, एज इसीलिए तो मैंने एकेडमिक्स ज्वाइन किया
0: जी,
1: एंड बिसाइड दैट आई एम अ पैशनेट सिंगर। तो बचपन से मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, और जिस तरह से मैं गाने सुनता था तो मुझे कुछ वो अलग सा महसूस होता था कि हर तरह के गाने जैसे दिमाग में ऐसा फिट उसके मॉडल्स बैठते थे। तो उसी एक्चुअली परहैप्स फेस से मैंने थोड़ा सा शुरू किया गाने वाना, सब गाने गाना शुरू किया और इस लेवल तक आ गए। तो कुछ बाहर प्रोग्राम अभी हम करने शुरू किया हमने, लेकिन जो सपना मेरा है वो एक सपना ऐसा है कि कभी कभी लगता है कि मैं कुछ इस तरह मेरी गायकी को निखार लूं कि मुझे जो भी आजकल के जो भी कुछ हमारे जो स्टार सिंगर्स है या जो कुछ प्लेबैक सिंगर्स है उनके साथ मुझे गाने का मौका मिले। तो मे भी वो श्रेया घोषाल है या सुनिधि जी है या सोनू निगम है या अरिजीत जी है, और बस किशोरदा के तो सपने रोज देखता हूँ और किशोरदा को तो गुरु मानता हूँ
0: जी।
1: तो ये एक मेरा सपना है कि कहीं ना कहीं तो कुछ लोग मिल जाए और समवेयर आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी, मुझे वो एक्चुअली मौका मिले
0: जी।
1: और एटलीस्ट उनके साथ कुछ मुझे गाने का मौका मिले या चांस मिले।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप इस बात, डॉक्टर धनंजय सर आप इस बात के लिए तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको बहुत बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत सिंगर्स से मुलाकात होगी, उनके गीत सुनने को मिलेंगे, और हम सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, और उम्मीद हमेशा रहती है कि हम कभी ना कभी किसी सेलिब्रिटी सिंगर के साथ गाएंगे, और जब हम ये मानते हैं तो ये सपना पूरा तो होगा, ये तो मुझे विश्वास है। बहुत खूब, चलिए दोस्तों।
1: यस यस डेफिनेटली,
0: चलिए दोस्तों,
1: इट विल बी रियली ग्रेट प्लेजर, और इस तरह के मौके हर एक को मिले एज अ पार्ट ऑफ रेडियो एसएन, और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहे।
0: बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब के ही गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं और फिर डॉक्टर साहब के पास वापस आए।
2: आहा कितने सपने।

0: बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। चलिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी।
0: थोड़ा सा आपने संगीत के बारे में भी हमें बता दीजिए। आपके बारे में हमने काफी जाना, आपके सपने के बारे में भी जाना जो कि बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है। अब आप अपने संगीत के बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। वैसे तो आपने थोड़ा सा जिक्र कर दिया, आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है? मेरे कहने का मतलब है क्लासिकल, फोक, गजल या फिर बॉलीवुड सिंपल, और या फिर कोई महाराष्ट्रियन या कोई कर्नाटका संगीत, और आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जिनसे आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो।
1: डेफिनेटली वैसे तो एज मैंने कहा कि म्यूजिक मेरा पैशन है, बचपन से मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। तो मुझे याद है कि जब मैं बचपन में मैं बहुत सारे गीत रफी साहब और किशोरदास से काफी इंस्पायर्ड था, लता दीदी से भी काफी इंस्पायर्ड था, और स्पेशली मैं बॉलीवुड म्यूजिक सुनता था। जैसे आगे हम आ गए तो कॉलेज लाइफ में एक्चुअली मेरे पास इतना स्टेज डेयरिंग नहीं था, तो आपको एक्चुअली ये विश्वास नहीं होगा कि कॉलेज लाइफ में मैं कभी भी गा नहीं सका।
0: ओके,
1: बिकॉज ऑफ ओनली स्टेज फियर एंड कॉन्फिडेंस। तो मैं एक्चुअली ऑडिशन के लिए जाता था, लेकिन ऑडिशन में भी मैं थोड़ा सा गाने के लिए घबराता था
0: जी।
1: लेकिन मेरा एक्चुअली संगीत या म्यूजिक जर्नी शुरू हो गया जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, म्यूजिकल नाइट या कुछ सेंड ऑफ होते थे फंक्शन, तो उसमें हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स कैसे कि फैकल्टी को फोर्स करते थे कि आपको जाना है और गाना है
0: जी।
1: तो वैसे धीरे धीरे फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, और जैसे सबको पता चला कि अच्छा अरे ये बंदा तो अच्छा गाता है, गा सकता है, तो एक इंस्पिरेशन मिली, वो ऊर्जा मिली मुझे अपने स्टूडेंट से, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं तो बचपन से ही बॉलीवुड म्यूजिक से ही ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ, और मुझे सॉफ्ट रोमांटिक मेलोडियस या जो पेपी सॉन्ग है या जो एनर्जेटिक सॉन्ग है वो मुझे काफी पसंद है। किशोरदास से मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ, और लता दीदी से मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ, और किशोरदा के बहुत सारे गाने फिर मैंने बाद में गाए, कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस भी हो गए। उसके बाद कोविड में मुझे स्टार मेकर मिला, तो कोविड में तो हम सब लोग अपने घर में थे, तो कुछ नहीं था, तो ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, तो स्टार मेकर ज्वाइन किया मैंने, बहुत सारे दोस्त जुड़ गए, बहुत सारे म्यूजिक लवर्स जुड़ गए, तो सिलसिला बहुत अच्छी तरह से शुरू हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे गाने जो ओल्ड सॉन्ग्स है कि जिसमें बहुत नटखट या शरारतपन है या जो एनर्जी है, इस तरह के गाने मैंने बहुत सारे ट्राई किए, और ज्यादा से ज्यादा किशोरदा के गाने मैं बहुत मैंने लाइक प्रेजेंट किए। उसके अलावा मुझे है उनकी जो एक्चुअली गोल्डन वॉइस है या उनकी आवाज की जो सरलता और जो डिवाइन फील है वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो उनसे भी मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। और मुझे लगता है कि समहाउ मेरी जो गायकी है या जो मेरी आवाज है उसमें एक अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन है और मेलोडी है, जिससे मैं मुझे लगता है कि मैं किशोरदा भी गा सकता हूँ और रफी साहब भी गा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं बॉलीवुड म्यूजिक जो हिंदी म्यूजिक है उससे काफी प्रभावित हूँ। मेरी मदर टंग मराठी है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्रियन मराठी गीत भी मैं गाता हूँ। पहले मुझे डिक्शन का प्रॉब्लम आता था समीर जी, जब मैं मराठी गाता था तो डिक्शन का प्रॉब्लम आता था, च ज ऐसा कुछ तो होता था, तो पहले मैं बहुत थोड़ा सा स्केयर्ड रहता था या डरता था मराठी गाने गाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसमें भी मैंने काफी थोड़ा सा सुधार लाया, तो अभी मैं मराठी गाने भी अच्छी तरह से गा सकता हूँ। तो इस तरह से अभी ये संगीत या म्यूजिक का सिलसिला शुरू है।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है, यही तो बात है। तो किस तरीके से धनंजय साहब ने अपनी प्रतिभा को अपने करियर के काफी आगे जाकर किसी मोड़ पर पहचाना, इस बात को हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए कि दोस्तों ये कभी मत सोचिए कि वक्त गुजर गया अब हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों,
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ते हुए इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं और फिर डॉक्टर साहब के पास वापस आएं।
2: मेरे जीवन साथी प्यार किए जा

0: झूठा कहीं का,
1: झूठा कहीं का। हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जॉनी मेरा नाम, चोरी मेरा काम, जॉनी मेरा नाम, ओ चोरी मेरा काम, राम और श्याम।
1: बंडल बाज
0: लड़के मेरा गीत गाता चल,
1: बेशरम
0: प्यार का मौसम,
1: बेशरम

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, है माई और मैनो, अरे मंगन भाई छगन भाई सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघो बा ओ ढोंडी बा, ऐका हो ऐका, ओ कर्नल सिंह ओ जनरल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे

0: कुड़ी फंस गई।
1: ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आग जिसे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है।

0: जवळ एला जुनको, ये जवळ एला जुनको।
1: बहुत सुंदर गीत, बहुत ही प्यारी गायकी।
2: थैंक यू वेरी मच
1: डॉक्टर साहब। बस हम अपने प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए जहां पर सारे परिवार ने आपको एक्सेप्ट किया खुले हाथों से। अब आप उनसे कुछ बात कर लीजिए, कुछ मैसेज दे दीजिए, अपनी बात दिल की जो भी है कह दीजिए।
2: सबसे पहले मैं रेडियो एसएन का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये एक नोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया है और हम जैसे जो कई सारे कलाकार है, सिंगर्स है, उनपे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जिस तरह से अभी हम लोग सारे एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और रोज हम बातचीत करते हैं या कुछ मैसेज शेयरिंग करते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा नेटवर्क हुआ है और हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि संगीत एक चीज ऐसी है जो भगवान ने दी है कि वी पीपल आर डेफिनेटली ब्लेस्ड। जो लोग गा सकते हैं तो मुझे लगता है कि ऑल वी आर ब्लेस्ड पीपल। तो ये जो है उसको और निखारना हमारे हाथ में है। तो बस गाते रहिए, रियाज करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी, बी म्यूजिकल, एंड आई फील दैट म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन इन आवर लाइफ। और हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। और ये सिलसिला मैं दुआ करूंगा कि सब लोगों का हमेशा शुरू रहे, हमेशा हम रेडियो एसएन के साथ जुड़े रहे, हमेशा हम समीर जी और नितिन जी के साथ जुड़े रहे और ये कारवा ऐसे ही खूबसूरती से आगे चले।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा और गाते रहिएगा।
2: थैंक यू वेरी मच।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।